नमस्कार, सुप्रभात। शिक्षक दिवस के आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। FM 103 MHz पर हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। आज है शनिवार, शक संवत 1948 के भाद्रपद मास की 14वीं तिथि, तदनुसार 5 सितंबर सन 2026। स्टूडियो की घड़ी में बजे हैं इस समय 5:58 और 37 सेकंड। इसी के साथ ही आरंभ होती है हमारी आज की पहली सभा।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षकों से अपने ज्ञान को लगातार बढ़ाने, नई तकनीक अपनाने और पढ़ाने के नए तरीकों का इस्तेमाल करने का आह्वान किया है। राष्ट्रपति ने कहा कि शिक्षक विद्यार्थियों की प्रतिभा को निखारने और उनके चरित्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने शिक्षकों से विद्यार्थियों में स्वतंत्र सोच और जिज्ञासा की भावना विकसित करने का आग्रह किया। राष्ट्रपति ने सभी समर्पित शिक्षकों के योगदान के लिए आभार व्यक्त किया और कहा कि वो ऐसी पीढ़ियों का निर्माण करते रहे जो देश को नई ऊंचाइयों तक ले जाएं। उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति और शिक्षाविद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को श्रद्धांजलि देते हुए उन्हें महान शिक्षक बताया। शिक्षक दिवस पर हर वर्ष 5 सितंबर को डॉक्टर राधाकृष्णन की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। इस अवसर पर राष्ट्रपति आज नई दिल्ली में 48 स्कूली शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगी। ये शिक्षक 27 राज्य, 7 केंद्र शासित प्रदेश और 6 केंद्रीय संस्थानों से चुने गए हैं। इसके अलावा उच्च शिक्षा संस्थानों और पॉलिटेक्निक के 21 शिक्षकों और प्राध्यापकों को भी राष्ट्रीय पुरस्कार दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय का ये कॉलेज देश के प्रमुख उच्च शिक्षण संस्थानों में से एक है। कॉलेज की स्थापना वर्ष 1926 में उद्योगपति और समाजसेवी सर श्रीराम ने की थी। पिछले 100 वर्ष में इस संस्थान ने कई विद्वान, पेशेवर और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने वाली प्रतिभाओं को तैयार किया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज चेन्नई के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो इंडिया वॉल्स में शामिल होंगे। ये हृदय से जुड़ी बीमारियों के इलाज को बेहतर बनाने पर केंद्रित एक राष्ट्रीय शैक्षणिक सम्मेलन है। ब्रिक्स देशों के मुख्य न्यायाधीशों का 3 दिन का सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया कि सम्मेलन में ब्रिक्स सदस्य और सहयोगी देशों के मुख्य न्यायाधीश और वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी भाग ले रहे हैं।
1: भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने रूस, चीन, संयुक्त अरब अमीरात, दक्षिण अफ्रीका, ईरान और उज्बेकिस्तान सहित कई देशों के न्यायिक प्रतिनिधि मंडल के प्रमुखों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। इन बैठकों में देशों के बीच न्यायिक सहयोग को मजबूत करने, न्यायपालिका की कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को एकीकृत करने, तेजी सैनिक प्रक्रियाएं पूरी करके लोगों के बीच संबंध बेहतर करने और अलग अलग देशों के बेहतरीन कानूनी तौर तरीकों पर चर्चा की गई। अनुपम मिश्र के साथ ऋषु जायसवाल, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: विदेश मंत्रालय ने बताया है कि नेपाल के बाढ़ग्रस्त त्रिशूली बाजार इलाके से 3 और भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकाला गया है। इनमें 5 साल का एक बच्चा भी शामिल है।

0: सुरक्षित निकाले गए भारतीयों की संख्या 169 हो गई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि 275 भारतीय अब भी लापता हैं, वहीं चीन से 1907 भारतीय सुरक्षित नेपाल पहुंच चुके हैं। उन्होंने बताया कि भारत ने नेपाल में बाढ़ के बाद अब तक लगभग 95 टन राहत सामग्री भेजी है। भारत आगे भी नेपाल की जरूरत के अनुसार मदद जारी रखेगा।
1: We have extended our solidarity and support to the government and people of Nepal.
2: हमने नेपाल सरकार और वहाँ की जनता के प्रति अपनी एकजुटता और समर्थन व्यक्त किया है। एक करीबी मित्र और साझेदार के रूप में भारत ने तुरंत सहायता पहुँचाई और हम नेपाल के पुनर्निर्माण और राहत के प्रयासों में लगातार सहयोग करते रहेंगे।
1: And recovery efforts in the country.
0: महिला क्रिकेट में T20 एशिया कप के ग्रुप ए के अंतिम मुकाबले में आज भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। ये मैच दुबई में रात 8 बजे से शुरू होगा। भारत ने थाईलैंड और हांगकांग को हराकर पहले ही सेमीफाइनल में जगह बना ली है। उधर विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला का तीसरा चरण आज गुजरात के अहमदाबाद में शुरू होगा। इसमें 19 देशों के 105 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। भारत पहली बार इस प्रतियोगिता की मेजबानी कर रहा है। बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय पुरुष डबल्स की जोड़ी आज चाइना मास्टर्स के सेमीफाइनल में मलेशिया की जोड़ी के साथ खेलेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: आकाशवाणी का ये डाल्टनगंज केंद्र है। कृषि संबंधी जानकारी खेती की बातें कार्यक्रम के तहत आइए जानते हैं आज दलहनी खेती से मृदा उर्वरकता में वृद्धि। संकलन और वाचन स्वर है प्रतिमा वर्मा का, पूर्व प्रसारित जानकारी है।
4: नमस्कार किसान भाइयों, कार्यक्रम में आज बातें दलहनी फसलों से मृदा में सुधार की। जी हां किसान भाइयों, दलहनी फसलों का खाद्य सुरक्षा के साथ साथ पर्यावरण और मृदा के स्वास्थ्य सुधार में भी महत्वपूर्ण योगदान है। इन दिनों हमारी कृषि प्रणाली अनेक समस्याओं जैसे मृदा स्वास्थ्य, जल की कमी, वैश्विक तपन, जैव विविधता, नाइट्रोजन की कमी से जूझ रही है। इनके परिणाम स्वरूप कृषि उत्पादन और गुणवत्ता में दिनों दिन कमी आ रही है। इन सभी समस्याओं के समाधान में दलहनी फसलें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इसलिए दलहन उत्पादन को बदलते परिवेश में मानव पोषण, पशुधन आहार, पर्यावरण और मृदा उर्वरता का टिकाऊ स्रोत कहा जा सकता है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए दलहन उत्पादन को बढ़ावा देना चाहिए। किसान भाइयों, दलहनी फसलें दुनिया के अधिकांश क्षेत्रों में उगाई जाती हैं। विश्व में इनके क्षेत्रफल और उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है। ये अपेक्षाकृत कम लागत की खाद्य फसलें हैं। मूंग, उड़द, अरहर, चना, लोबिया और मटर मुख्य रूप से उगाई जाने वाली दलहनी फसलें हैं। ये फसलें किसानों और उपभोक्ताओं में बेहद लोकप्रिय हैं। दलहनी फसलों की जड़ ग्रंथियों में राइजोबियम बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जो इन फसलों की जड़ों में सहजीवी संबंध बनाकर वायुमंडलीय नाइट्रोजन का मृदा में स्थिरीकरण करते हैं। इससे मृदा में नाइट्रोजन की मात्रा में वृद्धि होती है। इसलिए इन फसलों को कम नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। इन फसलों की कटाई के बाद इनके अवशेष मृदा में नाइट्रोजन की मात्रा बनाए रखने में सहायक होते हैं। ये अग्रिम फसल के उत्पादन में नाइट्रोजन उर्वरकों की मात्रा के प्रयोग को कम भी कर देते हैं। इन फसलों को हरी खाद के विकल्प के तौर पर भी उगाया जा सकता है। दलहनी फसलों में मूसला जड़ तंत्र होने के कारण इनकी जड़ें लगभग 6 से 8 फीट गहराई तक चली जाती हैं। इन फसलों के अवशेष में नाइट्रोजन अधिक मात्रा में होने के कारण ये केंचुओं की संख्या में वृद्धि करती है। दलहनी फसलों की जड़ों में ग्लोमेलिन प्रोटीन पाई जाती है, जो कि गोंद की तरह मृदा कणों में स्थिरता प्रदान करती है। इससे मृदा संरचना में सुधार होता है और मृदा जल संचयन में वृद्धि और मृदा अपरदन में कमी होती है। इसके परिणाम स्वरूप मृदा का पीएच मान कम हो जाता है। किसान भाइयों, खाद्यान्न फसलें जैसे गेहूं, धान, मक्का और ज्वार के अवशेषों की तुलना में दलहनी फसलों के अवशेषों में कार्बन नाइट्रोजन अनुपात कम होने के कारण ये सूक्ष्म जीवों द्वारा खनिजीकरण के लिए अधिक उपयुक्त होती हैं। इसलिए दलहनी फसलों के अवशेषों वाली मृदा में सूक्ष्म जीवों की संख्या अपेक्षाकृत अधिक पाई जाती है। लगातार अनाज वाली फसलों को उगाने से उनमें लगने वाले कीट और रोगों का प्रकोप अधिक होने लगता है। सामान्यतः अनाज वाली फसलों पर लगने वाले कीट और रोगों का प्रकोप दलहनी फसलों पर नहीं होता है। कीट और

0: रोगों के रोग जनकों को जीवन चक्र पूरा करने के लिए उचित माध्यम नहीं मिल पाता है। इसलिए इन फसलों को फसल चक्र में शामिल करने से कीट और रोगों के निवारण में सहायता मिलती है। किसान भाइयों, सामान्यतः दलहनी फसलों को कम पानी की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त ये फसलें अपनी पत्तियों से भूमि की ऊपरी सतह को ढक लेती है, जिससे भूमि की सतह से पानी का वाष्पीकरण कम होता है। प्राकृतिक रूप से मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने के लिए दलहनी फसलों को लगाया जाता है। खाद्यान्न फसल लगाने के बाद दलहन फसल लगाने से उत्पादन तो होता ही है, साथ ही साथ पोषण मान भी मिट्टी को प्राप्त हो जाता है। दलहनी फसलें मिट्टी में नाइट्रेट की आपूर्ति करके मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ा देती है। जी हाँ किसान भाइयों, इस प्रकार दलहनी फसलें की खेती से मृदा की उर्वरता में वृद्धि की जा सकती है। इसी के साथ कार्यक्रम से अब हमें दीजिए अनुमति।
1: अभी आप सुन रहे थे कृषि संबंधी जानकारी खेती की बातें कार्यक्रम के तहत। आकाशवाणी का ये डाल्टनगंज केंद्र है। रामचरितमानस गान का पाठ आइए आपको सुनवाते हैं संत गोस्वामी तुलसीदास कृत।

अरण्य में सीता की खोज में भटकते श्रीराम और लक्ष्मण की गिद्धराज जटायु से भेंट होती है। मरते समय जिनके नाम के उच्चारण मात्र से अधम को भी सदगति प्राप्त हो जाती है, उन्हीं प्रभु के दर्शन और हाथों का स्पर्श प्राप्त कर जटायु का जीवन धन्य हो गया। महाप्रयाण के लिए तत्पर गिद्धराज से श्रीराम अपने उद्गार प्रकट करते हैं। हे तात, आपको मैं क्या दे सकता हूं, आप तो स्वयं पूर्ण काम हैं। आप परमधाम जाइए, किंतु आप पिताजी से सीता हरण का दुखद समाचार न कहिएगा। यदि मैं राम हूं तो रावण अपने पूरे कुटुंब सहित स्वयं जाकर उन्हें सारी कथा सुना देगा।

गोस्वामी तुलसीदास के रामचरित मानस गान का पाठ अभी आप सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है आज का चिंतन।

प्रथमे गुरु जी को वंदना, द्वितीय आदि गणेश, तृतीय त्रिपुरा शारदा, निज कारज करो हमेश। कोई भी राही अपने राह पर ही चलता है, लक्ष्य की ओर हमेशा अग्रसर होता है। लक्ष्य जीवन में दिशा और दशा दोनों बदलते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है, यदि लक्ष्य ही न हो आपके पास तो मंजिल कहाँ होगी आपकी? इंसान दरअसल अपनी चाहत की डोर को इतनी ढील दे देता है कि माझा कहीं और होता है और पतंग कहीं और इसका पता तो शायद उसे भी नहीं होता। लेकिन ज्ञान का पिटारा भी खुलता जाता है और बातें भी ज्ञान की होती रहती हैं, लेकिन फिर भी स्थायित्व की धरातल नजर नहीं आती है। ऐसे में मार्गदर्शन की आवश्यकता जीवन में बहुत होती है, जो राह को सुगम कर सके और हर पथिक को अपने राह की उस दिशा पर ले जाए जहां दिशा और दशा दोनों बदल सके। आज ही के दिन डॉक्टर

केवल निर्मल मन वाला व्यक्ति ही जीवन के आध्यात्मिक अर्थ को समझ सकता है। स्वयं के साथ ईमानदारी आध्यात्मिक अखंडता की अनिवार्यता है। इन्होंने ऐसा भी कहा कि उम्र या युवावस्था का काल क्रम से लेना देना कुछ भी नहीं होता है। हम उतने ही नौजवान या बूढ़े हैं जितना हम महसूस करते हैं। हम अपने बारे में क्या सोचते हैं ये ज़्यादा मायने रखता है। और साथ ही पुस्तकें वो साधन है जिसके माध्यम से हम विभिन्न संस्कृतियों के बीच पुल का निर्माण कर सकते हैं। जब हम शिक्षक दिवस की बात करते हैं, गुरु की बात करते हैं, तो गुरु हमें सिर्फ इतना कहते हैं कि हमें अपने राह पर चलते हुए शिक्षा का एक परिणाम एक मुक्त रचनात्मक व्यक्ति का होना चाहिए, जो कि ऐतिहासिक परिस्थितियों और प्राकृतिक आपदाओं के विरुद्ध भी जा सके। ऐसा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने कहा था। उन्होंने ये भी कहा था, किताब पढ़ना हमें एकांत में विचार करने की आदत और सच्ची खुशी देता है। यही तो मार्गदर्शन है, यही तो जीवन को एक निश्चित दिशा की ओर ले जाता है। और इसी राह पर चलकर हम अपने आप को, या फिर यूं कहें समाज को, परिवार को एक नई दिशा के साथ ऊंचाइयां दे सकते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने ये भी कहा था, यदि मानव दानव बन जाता है तो ये उसकी हार है, यदि मानव महामानव बन जाता है तो ये उसका चमत्कार है, और यदि मानव मानव बन जाता है तो ये उसकी जीत है। इसलिए हमेशा अपने मन के अंदर का दीपक जलाए रखिए और फिर राष्ट्र के लिए, अपने लिए और देश समाज के लिए भी एक मिसाल कायम कीजिए। आत्मज्ञान से हमें आत्मबल मिलता है और आत्मबल से ही शक्ति मिलती है। शक्ति जब मिलती है तो जीवन में हम अच्छाइयों को देखते हैं, बुराइयों को देखना छोड़ देते हैं और फिर जीवन में कभी पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं होती है। तभी तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी कहते हैं, ज्ञान हमें शक्ति देता है, प्रेम हमें परिपूर्णता देता है और इसी परिपूर्णता के साथ हम

सच्चा गुरु वही है जो खुद अपने बारे में सोचने से पहले दूसरों के लिए सोचे। हम जो सोचते हैं बन जाते हैं। हम जानते हैं हमारा सीखना कभी रुकना नहीं चाहिए, और फिर जब हम धीरे धीरे अपने आप को बदलते चले जाएंगे तो निश्चित रूप से एक नई कहानी लिख जाएंगे, एक नई कहानी लिख जाएंगे।

शिक्षक हमारे मार्गदर्शक। अभी आप सुन रहे थे आज का चिंतन, संकलन और वाचन स्वर था स्मृतिलाल का। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। भक्ति संगीत के कार्यक्रम आराधना के तहत आइए अब सुनते हैं कुछ भजन। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं हरिओम शरण और साथियों से श्री हनुमान जी के भजन के साथ, श्री हनुमान अष्टक।

0: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत के कार्यक्रम आराधना के तहत कुछ भक्ति रचनाएं। हमने आपको सुनवाया हरिओम शरण और साथियों से श्री हनुमान अष्टक। उसके बाद आपने मन्ना डे, मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर के गाए हुए भजन सुने। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में आइए दांतों की देखभाल पर डॉक्टर विनीत कुमार सिंह, दंत चिकित्सक पलामू से ले गई भेंटवार्ता सुनवाते हैं। पूर्व प्रसारित भेंटवार्ता है, बातचीत कर रहे हैं संजय कुमार मिश्रा।
1: कल्याणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को संजय मिश्रा का नमस्कार। श्रोताओं, आज दांत पे पूरी जानकारी आपको दिलवाएंगे। आपने सुना होगा मोती जैसे चमकते दांत, फला के दांत मोती जैसे चमकते हैं, मोती जैसे दांत चमकने चाहिए, बच्चों के दांत मोती जैसे चमकते हैं। ये मोती जैसे दांत वाली बात क्या सिर्फ किताबों में पढ़ने को मिलते हैं, फिल्मों में देखने को मिलते हैं, या सचमुच में मोती जैसे दांत बनाए जा सकते हैं, संभाल कर रखे जा सकते हैं? ये बात हर आदमी चाहता है कि हमारे दांत, हमारे बच्चों के दांत, परिवार के सब लोगों के दांत स्वस्थ रहें और मोती जैसे चमकें। लेकिन मोती जैसे चमकते हुए दांत देखने के लिए, रखने के लिए क्या करने की ज़रूरत पड़ती है, ये तो हमारे दंत चिकित्सक ही बताएंगे। और इन तमाम सवालों के जवाब के लिए आज हमारे कार्यक्रम में आमंत्रित हैं हमारे पलामू ज़िला के दंत चिकित्सक सर्जन डॉक्टर विनीत कुमार सिंह। डॉक्टर साहब, हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार।
2: नमस्कार मिश्रा जी, और सारे सुनने वाले श्रोताओं को भी मेरा नमस्कार।
1: डॉक्टर साहब, सबसे मुख्य बात है कि मोती जैसे चमकते दांत अगर सचमुच अगर हो सकते हैं आम लोगों के भी, तो हमको बताएं कि मोती जैसे चमकते दांत क्या आसानी से रखे जा सकते हैं या इसके

0: के लिए कुछ खास तौर तरीके हैं और इसको रखने के लिए, संभाल के रखने के लिए, स्वस्थ बनाए रखने के लिए कुछ अलग से हटकर लोगों को व्यवस्था करनी पड़ती है, तैयारी करनी पड़ती है, उपाय करने पड़ते हैं।
1: मोती जैसे चमकते दांत, जैसे हम लोग अपने बचपन में सुना करते थे, राजू तुम्हारे दांत मोतियों के जैसे चमक रहे हैं, तो वो जो वाइट टीथ है मोती की तरह तो नहीं चमक सकते हैं, लेकिन सफ़ेद जो उनका नेचुरल कलर है, जो प्राकृतिक कलर उनका नेचुरल है, उसको हम लोग मेंटेन कर सकते हैं दांतों की सफाई से, खान पान से, चीज़ों को बेहतर रखा जा सकता है। कुछ लोग जैसे गुटखा खाते हैं तो उनके दांत रेडिस हो जाते हैं, तो वो गुटखा खाना छोड़ दें, दांतों की सफाई करवा लें, जो गंदगी उनके दांतों पर जमी हुई है वो हट जाएगी, तो उनका जो नेचुरल कलर है, अगर वाइट है तो वाइट, या थोड़ा डार्कर सेड है तो डार्कर सेड वो मेंटेन कर सकते हैं। दूध के दांत जो होते हैं वो जनरली वाइट ही आते हैं, लेकिन जब परमानेंट टीथ उसके बाद वो टूटते हैं और फिर परमानेंट टीथ आते हैं, तो आपका जो चेहरे का टेक्सचर है उसके हिसाब से, ऊपर वाले ने हमें दांत जो दिए हैं वो उस टेक्सचर के हिसाब से मैच करने के लिए या तो थोड़ा डार्कर सेड में रहेंगे या लाइटर सेड में रहेंगे। जैसे निग्रोज जो होते हैं या साउथ इंडियन जो हैं उनके दांत ज़्यादा वाइट होते हैं, और जो इंग्लैंड के रहने वाले हैं या जो ज़रूरत से ज़्यादा गोरे लोग हैं उनके दांत थोड़े हल्के पीले होते हैं।
0: तो अगर आम तौर पे हम देखें तो आप दंत चिकित्सक हमेशा ये बताते हैं कि दांतों ख़राब होने की एक वजह ये होती है कि आपका खान पान कुछ वो ऐसी बुरी आदतें, नशे की लत, पान गुटखा वगैरह वगैरह खा करके दांतों के रंग ख़राब हो जाते हैं। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो गुटखा भी नहीं खाते, पान भी नहीं खाते, कोई नशा किसी चीज़ मुंह में नहीं डालते जो दांतों को ख़राब कर सके, उसके बाद भी दांतों में चमक का नहीं आना, या इस तरह के जो कहते हैं दांत पूरे पूरी तरह स्वस्थ हों, उन बीमारी ना लगे, तो इसकी क्या वजह है?
1: जैसे मैंने पहले वाले जवाब में भी आपको बताया कि जो हमारा नए दांत आ रहे हैं, जैसे हमारे पलामू के एक इलाका है, चियाकी के पास एक गाँव है जहाँ पर फ्लोराइड की मात्रा ज़्यादा है, तो फ्लोराइड की मात्रा ज़्यादा है तो उसकी वजह से दांत में स्टेन आ जाते हैं, वो जो परमानेंट स्टेन होते हैं, फ्लोराइड स्टेन होते हैं, वो किसी भी तरह से आप उसको हटा नहीं सकते हैं, उसके ऊपर रेस्टोरेशन या क्राउन या ब्रिज लगा करके हम उस कलर को छुपा सकते हैं, और वाइट कलर का दांत जो आपके चेहरे को सूट करे उस कलर का दांत हम लोग वहाँ पे लगा के आपकी मुस्कुराहट को अच्छा कर सकते हैं। ये हुआ एक सवाल। दूसरे सवाल का जवाब है कि दांत हमारे कितना भी हम अच्छे से ब्रश कर लें या कितना भी सफाई कर लें या हम कुछ गंदी चीज़ें या बेकार की चीज़ें नहीं खा रहे हैं तो भी हमारे दांत सही नहीं हैं या साफ़ सुथरे नहीं हैं, तो विथ टाइम या विथ एज धीरे धीरे धीरे धीरे हमारे दांत जो हैं गंदे होते हैं। जैसे कोई रूम अगर आप बंद कर दिए हैं या आप घर में भी डेली सफाई कर रहे हैं तो गंदगी फिर भी जमा हो जाती है, तो कोशिश करना है कि अगर हम कुछ भी खा रहे हैं, किसी वक्त भी खा रहे हैं, तो हमें अच्छे से कुल्ला करना है, हो सके तो हल्के हाथ से थोड़ा ब्रश चला लेना है ताकि दांतों में जो खाना फंसा हुआ है वो हट जाए। ज़रूरत से ज़्यादा मसालेदार खाने नहीं खाने हैं, और समय समय पे दांतों के डॉक्टर से मिलना है। एक नेचुरल कलर जो प्रकृति ने दिया है उसको मेंटेन करने की कोशिश करनी है, दांत बहुत ज़्यादा नहीं ब्रश करना है या रगड़ना है कि दांत का ऊपरी सतह घिस जाए।
0: डॉक्टर विनीत जी, एक और बड़ी बात है कि बचपन से ही दांतों की सफाई की आदत तो डाली जाती है बच्चों में कि आप अपने दांतों की सफाई करें, दांतों से करें, ब्रश से करें, या और भी किसी तरह से दांत की सफाई होनी चाहिए, उसमें गंदगी नहीं रहनी चाहिए। लेकिन आप दंत चिकित्सक क्या कहते हैं, कितनी उम्र के बाद से नियमित रूप से दांतों की सफाई ज़रूरी है?
1: हमारे हिसाब से क्या बुक के हिसाब से या जो भी हमारे स्पेशलिस्ट हैं उनके हिसाब से, जैसे ही आपके फर्स्ट दूध के दांत या फर्स्ट डेसिड्यूअस टीथ आते हैं उस समय से हमें अपने दांतों की साफ सफाई रखनी चाहिए। दूध के दांत जो है 6 महीने से आना शुरू करते हैं, तो 6 महीना तो बहुत ही छोटा समय हो जाता है, आप 1 साल या 1.5 साल से जो हमारे दांत आए हुए हैं उस समय से ब्रश करने की या साफ सुथरे कपड़े से दांतों को साफ करने की, जब भी आप बच्चे को दूध पिला रहे हैं या कुछ खिला रहे हैं तो उसके बाद कोशिश करें कि बच्चे से थोड़ा कुल्ला करवा पाएँ ताकि उसके दांत में कुछ फंसा ना रहे, या फिर आप साफ सुथरे कपड़े से उसको साफ कर दें। यहाँ जो हम अपने क्लिनिक में या अभी तक जो भी हम सलाह दिए हैं या देते हैं उसमें गार्जियन को कहीं ना कहीं कॉन्शस होना होगा कि गार्जियन खुद ब्रश कर रहे हैं, अगर वो बच्चों के साथ जाके ब्रश करने की आदत डाले, अगर वो 2 टाइम ब्रश कर रहे हैं साथ में बच्चे को अगर लेके जा रहे हैं तो बच्चा भी उनको देख के ब्रश करने की आदत बनाएगा। गार्जियन का ये कहना होता है कि बच्चे पेस्ट चाट जाते हैं या पेस्ट खा जाते हैं, उससे ब्रश नहीं करते हैं, तो उससे परेशान नहीं होना है, वो मीठी चीज़ है तो बच्चे कोशिश करेंगे कि उसको खाने का, लेकिन आपको देख के मतलब एज ए गार्जियन, गार्जियन को देखते देखते वो समझ जाते हैं कि किस तरह से ब्रश करना है। जो पेस्ट की मात्रा है बच्चों के लिए, उनको पी साइज़, मतलब पहले तो उनका ब्रश जो होता है वो छोटा होता है, छोटे ब्रश में भी पी साइज़ का ही पेस्ट उनको देना है। अगर वो खा भी जा रहे हैं या चाट भी जा रहे हैं तो उससे परेशान नहीं होना, उनको बताना है कि बेटा ऐसे आपको ब्रश करना है या आप खुद से ब्रश उनका करें।
0: विनीत जी एक बात और देखते हैं, ये आम लोग, चिकित्सक के अलावे आम लोग भी इस बात को जानते हैं और चर्चा भी होती है कि पुरुषों के मुकाबले महिलाओं के दांत ज़्यादा सुंदर होते हैं, चमकीले होते हैं, तो इसकी क्या सिर्फ एक वजह यह मान लें कि महिलाओं के पास उस तरह कुछ खाने पीने की आदत नहीं होती दांत की, या फिर महिलाओं के दांत स्वभावतः या प्राकृतिक रूप से अच्छे होते हैं पुरुषों की तुलना में?
1: ऐसा नहीं है कि फीमेल के दांत बहुत अच्छे होते हैं और मेल के दांत खराब होते हैं, सारी चीज़ें आपके रख रखाव पे हैं। लेडीज़ जो हैं, चाहे आपके घर में हो चाहे हमारे घर में हो, वो पूरे घर का ख्याल रखती हैं तो अपने दांतों का भी ख्याल रखती हैं, लेकिन आज के रेट में देखा जाए तो लेडीज़ थोड़ा सा अपने दांतों के प्रति लापरवाह हो गई हैं, चाहे फाइनेंशियली वो वीक हों चाहे फाइनेंशियली वीक ना हो, लेकिन अपने दांतों को लेके वो काफ़ी लापरवाह हो गई हैं कि दर्द होगा दवा मंगा लेंगे, चाहे बेटे से चाहे हस्बैंड से कि आई दवा ला दीजिए जी, दर्द हो रहा है अभी हम दवा खा के ही प्रॉब्लम को खींचेंगे, या दांत गंदे हो गए हैं मसूड़ों से खून आ रहा है तो दवा ला दीजिए पेस्ट ला दीजिए उससे आराम हो जाएगा, लेकिन ये प्रॉब्लम जो है लंबे समय में उनको काफ़ी दिक्कत करता है, जिसकी वजह से आज के रेट में लेडीज़ के दांत भी काफ़ी ख़राब हो रहे हैं।
0: तो क्या हम ये कह सकते हैं कि दांतों को अगर स्वस्थ रखना है तो सिर्फ सफाई से ही काम चल जाएगा, या कुछ और चीज़ें हैं जिन पर खास करके ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है जिसे ध्यान देकर दांतों को स्वस्थ सुंदर चमकीला बनाए रखा जा सकता है?
1: ध्यान देने की ज़रूरत है, जैसे सबसे पहला तो बात यही है जो सारे दांत के डॉक्टर या हम भी सलाह देते हैं कि दो टाइम ब्रश करें, जब भी कुछ खाएं तो ज़रूर कुल्ला करें ताकि कुछ फंसा ना रहे, एक ये तरीका है। बहुत लोग आते हैं जो बोलते हैं कि हम तो दतवन करंज का तो नीम का तो सखुआ का जो भी आप यूज़ कर रहे हैं यूज़ करते हैं तो उससे हमारा प्रॉब्लम ख़त्म हो जाता है। दतवन जो है आपको सिर्फ चबाने के लिए है, दतवन दांत पर रगड़ने के लिए नहीं होता है। आप दतवन चबा लें, जिस पेड़ का भी आप दतवन यूज़ कर रहे हैं उसका जो प्रॉपर्टी है आपके मसूड़े के लिए या दांतों के लिए वो आपको मिल जाएगा, उसके बाद फिर आप ब्रश और पेस्ट जो भी आपको यूज़ करना है, वैसे पेस्ट ना यूज़ करें जिनमें सिलिका की मात्रा बहुत ज़्यादा हो, और वैसे पेस्ट यूज़ ना करें जिनसे आपको एक आदत बनने का खतरा रहे। पेस्ट और ब्रश का जहाँ तक कहानी है कि 3 से 4 महीने में जो भी आप पेस्ट जिस भी कंपनी का यूज़ कर रहे हैं उसको चेंज कर देना चाहिए। ब्रश भी उसी तरह से है, ब्रश आपको मुलायम ब्रश यूज़ करना है, हल्के हाथ से ब्रश करना है, मिनिमम 2 मिनट तो आपको जरूर सुबह में अपने दांतों पर देना है।
2: दांतों की देखभाल, अभी आप सुन रहे थे स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम के तहत डॉक्टर विनीत कुमार सिंह दंत चिकित्सक पलामू से ले गई भेंटवार्ता। आकाशवाणी का ये डाल्टनगंज केंद्र है, कुछ ही पलों में सुनेंगे आप संस्कृत हिंदी अंग्रेजी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षक दिवस पर शिक्षकों से अपने ज्ञान को लगातार बढ़ाने, नई तकनीक अपनाने और पढ़ाने के नए तरीकों का उपयोग करने का आह्वान किया है। राष्ट्रपति ने कहा कि शिक्षक विद्यार्थियों की प्रतिभा निखारने और चरित्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने शिक्षकों से विद्यार्थियों में स्वतंत्र सोच और जिज्ञासा विकसित करने का आग्रह किया। राष्ट्रपति ने सभी समर्पित शिक्षकों से योगदान के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वे ऐसी पीढ़ियों का निर्माण करते रहे हैं जो देश की नई ऊंचाइयों तक ले जाएं। उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति और शिक्षाविद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को श्रद्धांजलि देते हुए महान शिक्षक बताया। शिक्षक दिवस प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को डॉक्टर राधाकृष्णन की जयंती पर मनाया जाता है। इस अवसर पर राष्ट्रपति आज नई दिल्ली में 48 स्कूली शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगी। ये शिक्षक 27 राज्य, 7 केंद्र शासित प्रदेश और 6 केंद्रीय संस्थानों से चुने गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय का ये

0: कॉलेज देश के प्रमुख उच्च शिक्षण संस्थानों में से एक है। इसकी स्थापना वर्ष 1926 में उद्योगपति और समाजसेवी सर श्रीराम ने की थी। पिछले 100 वर्ष में इस संस्थान ने कई विद्वान, पेशेवर और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने वाली प्रतिभाओं को तैयार किया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज चेन्नई में इंडिया वॉल्व सम्मेलन में शामिल होंगे। यह हृदय से जुड़ी बीमारियों का उपचार बेहतर बनाने पर केंद्रित एक राष्ट्रीय शैक्षणिक सम्मेलन है। उपराष्ट्रपति गिंडी में इंडिया वॉल्व पंजिका का विमोचन भी करेंगे। उपराष्ट्रपति वेल्लूर कोट्टम में दिनामलर समाचार पत्र के प्रकाशन के 75 वर्ष पूरे होने पर स्मारक डाक टिकट भी जारी करेंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि नेपाल के बाढ़ग्रस्त त्रिशूली बाजार इलाके से 3 और भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकाला गया है। इनमें 5 साल का बच्चा भी शामिल है। सुरक्षित निकाले गए भारतीयों की संख्या 169 हो गई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि 275 भारतीय अब भी लापता हैं। चीन से 1907 भारतीय सुरक्षित नेपाल पहुंच चुके हैं। उन्होंने बताया कि भारत ने नेपाल में बाढ़ के बाद अब तक लगभग 95 टन राहत सामग्री भेजी है।
1: We have extended our solidarity and support to the government and people of Nepal.
2: हमने नेपाल सरकार और वहाँ की जनता के प्रति अपनी एकजुटता और समर्थन व्यक्त किया है। एक करीबी मित्र और साझेदार के रूप में भारत ने तुरंत सहायता पहुँचाई और हम नेपाल के पुनर्निर्माण और राहत के प्रयासों में लगातार सहयोग करते रहेंगे।
1: And recovery efforts in the country.
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत, रूस और यूक्रेन दोनों के साथ लगातार संपर्क में है। भारत ऐसे सुझावों पर विचार कर रहा है जिनसे युद्ध कम करने या समाप्त करने में सहायता मिल सके। वॉर्सो में पोलैंड के विदेश मंत्री रादोस्लाव सिकोरस्की के साथ बातचीत के बाद उन्होंने कहा कि युद्ध का कोई विजेता नहीं होता। युद्ध से केवल जान माल का नुकसान होता है और दुनिया पर आर्थिक बोझ पड़ता है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि युद्ध समाप्त करने के लिए बातचीत और कूटनीति पर जोर दिया जाना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अफ्रीका का वास्तविक आकार बेहतर ढंग से दिखाने वाले नए विश्व मानचित्र के पक्ष में मतदान किया है। 164 देशों ने प्रस्ताव का समर्थन किया जबकि अमरीका ने इसके विरुद्ध मतदान किया। यह देश 6 देश मतदान से अलग रहे। मर्केटर मानचित्र में अफ्रीका का आकार वास्तविकता से बहुत छोटा दिखाई देता है जबकि अफ्रीका ग्रीनलैंड से लगभग 14 गुना बड़ा है। एशिया कप महिला टी20 क्रिकेट के ग्रुप ए के अंतिम मुकाबले में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। ये मैच दुबई में रात 8 बजे शुरू होगा। भारत ने थाईलैंड और हांगकांग को हराकर पहले ही सेमीफाइनल में जगह बना ली है। वहीं पाकिस्तान ने अब तक केवल 1 मैच खेला है और उसमें थाईलैंड को हराया है। पाकिस्तान को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए 1 और अंक की आवश्यकता है। विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला का तीसरा चरण आज गुजरात के अहमदाबाद में शुरू होगा। इसमें 19 देशों के 105 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। भारत पहली बार इस प्रतियोगिता की मेजबानी कर रहा है। प्रतियोगिता 9 सितंबर तक चलेगी। सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज नूर मोहम्मद अजरीन अयूब और टेन वी क्योंग से खेलेगी। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेणु कटारिया। President Draupadi Murmu has called upon teachers and educators to continually update their knowledge, embrace technology and adopt innovative teaching methods. In her message on the occasion of Teachers Day today, the President said teachers and educators play a vital role in nurturing talent and strengthening character through the guidance and mentorship. Teachers Day is observed every year on 5th of September to mark the birth anniversary of Dr. Radhakrishnan, a renowned educationist, author, philosopher and former president. The occasion honors the vital role of teachers and educators in nation building. On the occasion, President Murmu will confer the National Teachers Awards on 48 school teachers in New Delhi this morning. The 48 selected teachers are from 27 states, 7 union territories and 6 central government organizations. She will also present national awards to 21 teachers and faculty members from higher education institutions and polytechnics. Prime Minister Narendra Modi will participate in the centenary celebrations of Shriram College of Commerce in New Delhi today.

अभी से थोड़ी देर बाद यानी कि 7:15 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रंग के तहत आप सुनेंगे बांसुरी वादन। कलाकार होंगे KS गोपाल कृष्णन, राग रूपकम आदि। कानून की बात आकाशवाणी के रांची केंद्र से 7:45 पर। सुबह 8 बजे शामिल होंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र में हिंदी अंग्रेजी समाचारों के लिए। 8:30 बजे सुनेंगे आप प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से। 8:45 पर हम अपने स्टूडियो से सुनवाएंगे आपको कुछ फिल्मी गाने गीत गुंजन कार्यक्रम के तहत। जोहार पलामू, हमारा यह कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा 9 बजे। प्रस्तुति स्वर निर्मला तिवारी का होगा, संयोजनकर्ता होंगे श्री प्रशांत गौरव। फिल्म गीतों का कार्यक्रम फिल्म संगीत सुनेंगे आप सुबह 9:30 बजे। 10 बजे शामिल होंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र में हिंदी अंग्रेजी समाचारों के लिए और 10:10 पर आप सुनेंगे विविध भारती के तहत आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से गीतों भरी कहानी। 11:25 पर आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के अवसर पर विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम के अंतर्गत भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के द्वारा शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित करने का अनुप्रसारण आप सुन पाएंगे। 11:25 पर समय का आप ध्यान रखें।

1 बजे सुनेंगे हिंदी समाचार, 1:05 पर अंग्रेजी समाचार, 1:10 पर प्रादेशिक समाचार। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से प्रसारित होंगे। 1:20 से सुनेंगे आप सुरीला सफ़र विविध भारती के तहत आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। 2 बजे पुनः सुनेंगे आप अंग्रेजी समाचार, हिंदी समाचार 2:15 पर। और सदाबहार नौ में 2:30 सुनेंगे आप विविध भारती के तहत आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। 2:55 पर प्रादेशिक समाचार सुन सकेंगे आप आकाशवाणी के रांची केंद्र से प्रसारित किए जाएंगे प्रादेशिक समाचार। 3 बजे से आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से विविध भारती के तहत सुनेंगे आप मनचाहे गीत और नाट्य तरंग का समय होगा 3:30। विविध भारती के तहत सुनेंगे आप 3:30 नाट्य तरंग।

शाम 5:29 तक आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम, और शाम 5:30 पर हम एक बार फिर से आपको जानकारी देंगे कार्यक्रमों की अपने स्टूडियो से। युवाओं को संबोधित कार्यक्रम युवाणी का समय होगा शाम 5:35। चर्चा की जाएगी इस कार्यक्रम में शिक्षक दिवस पर, अंतर्राष्ट्रीय दान दिवस पर भी चर्चा होगी, और इसी के साथ ओम मेहर मेहता की वार्ता सुनेंगे आप। शिक्षक दिवस का महत्व पूर्व प्रसारित यह वार्ता होगी। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से 6:00 और 6:02 से प्रायोजित कार्यक्रम किसानवाणी। हमारे स्टूडियो से आप सुन पाएंगे ग्रामीण सभा कार्यक्रम शाम 6:30। चर्चा होगी समसामयिक कृषि कार्य पर। आज की बात होगी कीटनाशक के प्रयोग में सावधानियां। गेंदा की व्यावसायिक खेती, इस पर ली गई भेंटवार्ता सुनेंगे आप। भेंटवार्ताकार होंगे दिलीप कुमार पांडे, कृषि विशेषज्ञ, कृषि विज्ञान केंद्र चियांकी पलामू। बातचीत करेंगे प्रतिमा वर्मा। पूर्व प्रसारित यह जानकारी होगी। आज की नसीहत, सब्जियों की खेती आय के साधन पर। मौसम विभाग से प्राप्त मौसम, पलामू की मंडी से प्राप्त आज का बाजार भाव जानेंगे आप इसी कार्यक्रम में। शाम 6:55 पर शामिल होंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र में। प्रादेशिक समाचारों का समय 7:00, जिले में आजकल 7:10 पर। 7:15 पर अपने स्टूडियो से सुनवाएंगे गीत गौसलों के प्रोग्राम स्वरांजलि के तहत चंद गौसलें। फनकार होंगी बेगम अख्तर। विज्ञान जगत सुन पाएंगे आप 7:45 पर, जिसके तहत विज्ञान संबंधी कुछ जानकारियां आपको दी जाएंगी। फिल्म संगीत के कार्यक्रम चित्रपट से के तहत सुनेंगे आप कुछ फिल्मी गाने रात्रि 8:00। 8:45 पर शामिल होंगे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र में हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू समाचारों के लिए। विविध भारती के तहत सुनेंगे आज के फनकार 9:30 पर, और रात्रि 10:00 फिल्म संगीत रजनीगंधा के तहत हम सुनवाएंगे कुछ फिल्मी गाने अपने स्टूडियो से। हिंदी अंग्रेजी समाचारों के लिए एक बार पुनः शामिल होंगे रात्रि के 11:00 आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र में, और 11:10 पर करेंगे हम सभा का समापन। तो यह थी जानकारी कार्यक्रमों से संबंधित, और आइए अब आपको सुनवाते हैं शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रंग के तहत बांसुरी वादन, और कलाकार हैं KS गोपाल कृष्णन।

शास्त्रीय संगीत के तहत आप सुन रहे थे बांसुरी वादन राग रूपकम आदि। के एस गोपाल कृष्णन कलाकार थे। इसी के साथ ही रागरंग कार्यक्रम संपन्न होता है। आइए शामिल होते हैं आकाशवाणी के रांची केंद्र में कानून की बात कार्यक्रम के लिए।

0: जानकारी प्राप्त करेंगे।
1: निर्मल कुमार भारती जी नमस्कार, और हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद, नमस्कार।
1: सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि राष्ट्रीय लोक अदालत क्या है, इसके उद्देश्य क्या है, और सामान्य जो अदालतें होती हैं उनसे ये किस तरह से अलग है।
2: देखिए, राष्ट्रीय लोक अदालत कोई परमानेंट अदालत नहीं है। पहला अंतर तो सामान्य अदालतों से इसका यही है। राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के प्रावधानों के अंतर्गत राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा करती है। आमतौर पर भारत में अभी प्रत्येक तिमाही पर इसका आयोजन किया जाता है, यानी कि साल में कुल 4 बार राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाता है। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है कि राष्ट्रीय लोक अदालत पूरे देश में एक ही दिन

0: एक साथ काम करती है। सामान्य अदालतों से इसकी भिन्नता इस प्रकार से भी है कि सामान्य अदालतों में प्रक्रियात्मक विधि का ख्याल रखते हुए मामले की सुनवाई की जाती है, उनके गुण दोषों के आधार पर उसका फैसला किया जाता है। राष्ट्रीय लोक अदालत में एक न्यायिक पदाधिकारी, दो समाज सेवा से जुड़े हुए व्यक्ति या अधिवक्तागण उसमें बैठते हैं और सामान्य सुलह के आधार पर मामले का, समझौते के आधार पर मामले का निपटारा किया जाता है। इसका नतीजा यह होता है कि इसकी अपील अग्रतर नहीं की जा सकती है, यानी कि सामान्य अदालतों के फैसले चूंकि मेरिट के आधार पर लिए जाते हैं तो हायर कोर्ट्स में उसका अपील और रिवीजन किया जाता है। राष्ट्रीय लोक अदालत में दिए गए फैसलों का ऊपर के किसी अदालत में अपील नहीं किया जा सकता है, यही इसका मुख्य अंतर है।
1: तो क्या ये अंतिम निर्णय होता है इसका?
0: बिल्कुल,
1: मतलब राष्ट्रीय अदालतों का,
0: राष्ट्रीय लोक अदालत के दिए गए निर्णय आम तौर पर अंतिम निर्णय होते हैं। बहुत विशेष परिस्थिति में उच्च न्यायालय या माननीय उच्चतम न्यायालय में रीट ज्यूरिसडिक्शन में इसके अगेंस्ट में जाया जा सकता है। ऐसे आमतौर पर इसके फैसलों को किसी भी अग्रतर अदालतों में नहीं ले के जाया जा सकता है, इसलिए इसका फैसला अंतिम माना जाता है।
1: जी, आपने जैसे शुरू में ही बताया कि राष्ट्रीय अदालतें जो है, लोक अदालतें, वो थोड़ा सा अंतर है जो हमारे सामान्य अदालत हैं कि वो परमानेंट नेचर के हैं और ये अदालतें लगती हैं वो साल में चार बार। तो क्या सारे मामले जो सामान्य अदालत में निपटाए जाते हैं या वहां जाते हैं वो सारे राष्ट्रीय लोक अदालत में भी आ सकते हैं?
0: नहीं, राष्ट्रीय लोक अदालत में उन्हीं मामलों को लेकर जाया जा सकता है जिसकी प्रकृति सुलहनीय हो। कहने का तात्पर्य यह है कि आपराधिक विधि में जो मामले की सुलह से समाप्त हो सकते हैं, जैसे साधारण मारपीट, गाली गलौज, इस तरह के मैटर्स, उनको राष्ट्रीय लोक अदालत में लेके जाया जा सकता है। और इसके अलावा सिविल नेचर के सारे केसेस, जमीन जायदाद संबंधी मुकदमे, पारिवारिक मुकदमे, ये जो है राष्ट्रीय लोक अदालत में लेके जाया जा सकता है। इसके अलावा बिजली, पानी, लोक उपक्रम से संबंधित मामले, जैसे कि टेलीफोन है, बिजली बिल है, तो इन सभी के मामले भी लोक अदालतों में जाए जा सकते हैं। बैंक से संबंधित मामले, रिकवरी ट्रिब्यूनल से संबंधित मामले, इन सब मामलों को सुलह के आधार पर खत्म करवाने के लिए नेशनल लोक अदालत में जाया जा सकता है।
1: तो इससे यह तो स्पष्ट हो गया कि आम जन से जुड़े हुए जितने मामले हैं, प्रायः मतलब अधिकतम मामले राष्ट्रीय लोक अदालत में उसका निपटारा किया जा सकता है।
0: बिल्कुल।
1: अब प्रश्न उठता है प्रक्रिया की, कि राष्ट्रीय लोक अदालत, पता तो है लोगों को राष्ट्रीय लोक अदालत में ये चीजें निपटाई जाएंगी या इसका निपटारा हो सकता है, उसकी क्या प्रक्रिया होगी, कैसे वहां तक लोग पहुंचे?
0: देखिए, राष्ट्रीय लोक अदालत में दो तरह के मामले होते हैं। पहले वे मामले जो कि पहले से किसी कोर्ट में लंबित हैं, अगर वह सुलहनीय प्रकृति का मामला है तो उसे राष्ट्रीय लोक अदालत में लेके जाया जा सकता है। दूसरा, प्री लिटिगेशन के मामले, जैसे कहने का तात्पर्य है कि मुझे ये अंदेशा है कि भविष्य में मेरा किसी के साथ कोई सिविल डिस्प्यूट हो सकता है या क्रिमिनल डिस्प्यूट हो सकता है, और अगर वह सुलहनीय प्रकृति का होगा तो उसे प्री लिटिगेशन मामले के तौर पर राष्ट्रीय लोक अदालत में लेके जाया जा सकता है। अब जैसे कि आपके प्रश्न पर आते हैं कि राष्ट्रीय लोक अदालत में मामले को लेकर कैसे जाया जाए, तो जो मामले की पहले से सिविल कोर्ट में लंबित हैं, वहां पर मात्र एक एप्लीकेशन देकर कि हम दोनों पार्टी मिलकर अपना एक एप्लीकेशन देंगे कि हमें अपने मामले का निपटारा जो है राष्ट्रीय लोक अदालत में करवाना है, आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में, तो वो मामला जो है राष्ट्रीय लोक अदालत में वहां से रेफर कर दिया जाएगा। और जो प्रीलिटिगेशन के मामले हैं, इसे डायरेक्ट डीएलएसए में जो संबंधित फ्रंट ऑफिस के बेंच होते हैं वहां पर एक एप्लीकेशन देकर इसे लेके जाया जा सकता है। श्रोताओं के जानकारी के लिए मैं बता दूं कि आने वाले 13 तारीख को, जो 13 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन झारखंड समेत पूरे देश में किया जाना है।
1: जैसे आम अदालतें होती हैं वहां पर वकील के माध्यम से हम लोग केस दायर करते हैं या लड़ते हैं, राष्ट्रीय लोक अदालत में क्या यह अनिवार्य है कि एक वकील रखा जाए इसके निपटारे के लिए?
0: बहुत अच्छा प्रश्न है। राष्ट्रीय लोक अदालतों में मामले के निपटारे के लिए अधिवक्ताओं का होना बहुत आवश्यक नहीं है। अगर पार्टी चाहे तो अपने विद्वान अधिवक्ता को अपने असिस्टेंट्स के लिए ला सकते हैं। चूंकि वहां प्रक्रियात्मक विधि का पालन बहुत कड़ाई से नहीं किया जाता है, तो इसलिए अधिवक्ताओं का वहां पर वैसा जरूरत नहीं पड़ता है। लेकिन चूंकि विद्वान अधिवक्तागण न्यायालय के कार्य प्रणाली से अवगत होते हैं, इसीलिए पार्टी आमतौर पर उन्हें लेकर आते हैं ताकि उन्हें भी समस्याओं का सामना न करना पड़े।
1: मतलब दोनों ही तरह की सुविधाएं हैं, आप
0: बिल्कुल
1: अगर चाहें तो वकील के माध्यम से अपनी बात रख सकते हैं या
0: खुद भी रख सकते हैं।
1: इसमें खर्च क्या आएगा? मान लिया अगर हम वकील नहीं रखते हैं तो क्या वहां पर जो निपटारा होगा या मामला दायर होगा तो उसमें क्या खर्च वगैरह आता है?
0: राष्ट्रीय लोक अदालत के सारी प्रोसीडिंग मुफ्त है, या यहाँ तक कि राष्ट्रीय लोक अदालत में मामले को ले जाने के लिए कोर्ट फी तक जमा नहीं करना पड़ता है, यानी कि सारी प्रक्रिया जो है न्यायालय के स्तर पर बिल्कुल मुफ्त है और इसमें किसी भी तरह का कोई खर्च नहीं लगता है।
1: एक प्रश्न, जैसे कि हमने शुरू में जो हमारी बात हुई उसमें आपने कहा कि किन किन तरह के मामलों को राष्ट्रीय अदालत में हम ले जा सकते हैं, तो आम जन से जुड़ी प्रायः सभी समस्याएं उसमें शामिल थीं
0: जी।
1: ये बता दें कि कौन स्पेसिफिक उस तरह की कौन सी समस्या या मामले हैं जो राष्ट्रीय लोक अदालत के परव्यू से बाहर हैं।
0: देखिए, क्रिमिनल मैटर्स में वैसे मैटर जो कि सुलहनीय प्रकृति के नहीं है, यानी कि जो बड़े बड़े आपराधिक मामले होते हैं, हत्या है, डकैती, बलात्कार, इस तरह के जो बड़े आपराधिक मामले होते हैं जिसमें कि जो मुख्य रूप से जिसे कह सकते हैं कि क्राइम अगेंस्ट स्टेट जो होता है, यानी कि जो बड़े आपराधिक मामले हैं, ये राष्ट्रीय लोक अदालत के परव्यू से बाहर हैं। तो इसके अलावा सारे क्रिमिनल मामले जो कि सुलहनीय प्रकृति के हैं, और सिविल मामले तो सारे ही सिविल मामले जो हैं वो राष्ट्रीय लोक अदालत के दायरे में आते हैं।
1: एक और प्रश्न है, जैसे कि स्थिति बताता हूँ कि दो पक्षकार हैं और एक पक्षकार को राष्ट्रीय लोक अदालत का जो फैसला है वो मान्य नहीं है, वो उससे इत्तफाक नहीं रखता, ऐसी स्थिति में क्या करना होगा?
0: जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में सुलह के आधार पर मामले का निपटारा किया जाता है। जब दोनों पक्ष आपस में सुलह करने के लिए एग्री हो जाते हैं तभी मामले का निपटारा किया जाता है, इसीलिए यहाँ से अनएग्रीव्ड पर्सन जो है वो बनने का सवाल ही नहीं है। और इसी वजह से राष्ट्रीय लोक अदालत का जो फैसला होता है, चूंकि सुलह के आधार पर दोनों पक्ष अपना काम कंप्लीट कर रहे हैं, तो इसीलिए इसका अपील नहीं होता है।
1: और एक चीज तो तय है कि यहाँ पर जो पक्षकार आते हैं तो एक माइंडसेट तो रहता होगा,
0: एक माइंडसेट के साथ,
1: हाँ, क्योंकि ये तो नहीं है कि दूसरे पक्ष को हम सजा दिलवा देंगे, इस माइंडसेट तो आना नहीं है। यहाँ पर तो है किसी तरह से मामला निबट जाए, सुलझ जाए।
0: राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में एक बात जो बार बार माननीय उच्च न्यायालय ने, माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि इसमें कोई भी पक्ष हारता नहीं है बल्कि दोनों ही पक्ष जीतते हैं, क्योंकि मामला सुलह के आधार पर खत्म हो रहा होता है।
1: जैसे जो सामान्य अदालतें हैं उनमें हम अगर जाते हैं कोई भी बात को लेकर, तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह हम लोग तैयार रखते हैं कि ये मेरा मामला है, तो हम अपने पक्ष में जो बातें हम लोग रखना चाहते हैं उसके पक्ष में जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो तैयार रखते हैं। राष्ट्रीय अदालत में कई बार ऐसे लोग भी होते हैं जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, या फिर ये बता दें कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अनिवार्य हैं वो रखने चाहिए आपको?
0: देखिए, जो मामला की पहले से कोर्ट में लंबित है, अगर उस मामले को लेकर हम राष्ट्रीय लोक अदालत में गए हैं तो वहाँ रिकॉर्ड्स तो है ही, रिकॉर्ड्स में आपके सारे डॉक्यूमेंट लगे हुए हैं। प्रीलिटिगेशन मामले में अगर मान लें कि किसी का, एक उदाहरण के लिए, कि किसी के जमीन का बंटवारा संबंधित मामला है, तो लोग तो तय करके जाते हैं ना कि हमें इस पोर्शन को इस पर्सन को देना है, ये पोर्शन फलाना पर्सन रखेगा, तो ऐसे में किसी भी तरह का डॉक्यूमेंटेशन का जरूरत नहीं पड़ता है। लोग अपना सुलह का जो है पूरा डीड रेडी करके जाते हैं और इसमें अदालत की सिर्फ मुहर लगती है। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन का जरूरत नेशनल लोक अदालत में है ही नहीं
1: जी। अंत में हम ये जानना चाहेंगे कि राष्ट्रीय लोक अदालत में लोग क्यों आए, इसके बारे में आपका संदेश, क्योंकि ये एक बड़ी भ्रामक स्थिति होती है। कई लोगों का ये भी मानना होता है या उनकी समझ है कि अरे कोर्ट में जाएंगे तब मामला सुलझेगा, राष्ट्रीय लोक अदालत तो लग गया है, इसमें जो भी निर्णय होगा शायद उतना उसका प्रभाव ना हो। इस बारे में आप थोड़ा सा खुलासा करें और एक संदेश दें अपील के तौर पे।
0: देखिए, राष्ट्रीय लोक अदालत में चूंकि मामले का निपटारा फॉर एवर हो जाता है, हमेशा के लिए, उसके अगेंस्ट में कोई अपील नहीं होती है, इसीलिए राष्ट्रीय लोक अदालतों में लोगों को इसलिए भी अप्रोच करना चाहिए, जाना चाहिए, क्योंकि मामला हमेशा के लिए खत्म हो जाए। दोनों पक्षों के बीच अगर कोई आगामी कड़वाहट की कोई संभावना भी होती है तो वो भी खत्म हो जाती है, क्योंकि जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि न्यायालय में लोग अपने फैसलों का अंतिम तौर पर निपटारा नहीं कर पाते हैं। सिविल कोर्ट में फैसला हुआ, फिर उसके अगेंस्ट में हाई कोर्ट गए, फिर हम सुप्रीम कोर्ट गए, और इस तरह सामाजिक कड़वाहट भी अपने आप में बनी रहती है। तो अगर नेशनल लोक अदालत के माध्यम से कोई फैसला करवाते हैं तो वहाँ पर अंतिम तौर पर फैसला होता है, लोगों का समय बचता है, लोगों का न्यायालय में खर्च करने वाला पैसा बचता है और सामाजिक संतुलन के साथ साथ सामाजिक शांति बनी रहती है क्योंकि मामला अंतिम तौर पर समाप्त हो जाता है।

0: जाता है। इसलिए मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से यह सलाह देना चाहूंगा कि जहां तक संभव हो सामाजिक समरसता बनाए रखने के लिए, सामाजिक शांति बनाए रखने के लिए लोगों को नेशनल लोक अदालत में आकर अपने मामलों का अधिकतम निपटारा करवाना चाहिए।
1: बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया संदेश था ये, और इसी के साथ हम अपने कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। और श्रोताओं से जो आपने अपील आपने किया है, हम भी कहेंगे अपने श्रोताओं से कि उस पर अमल करें। राष्ट्रीय लोक अदालत न सिर्फ फैसले देती है, ये समाज में सद्भाव और एक दूसरे के प्रति मित्रता का भाव भी पैदा करती है।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कानून की बात, भेंट वार्ता आप सुन रहे थे राष्ट्रीय लोक अदालत प्रक्रिया पात्रता और मामले का निपटारा। भेंट वार्ताकार थे श्री निर्मल कुमार भारती, उप सचिव झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण झालसा के। भेंटकर्ता थे प्रभु शरण और प्रस्तुति प्रभु शरण की थी। ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षक दिवस पर शिक्षकों से प्रौद्योगिकी अपनाने और नवीन शिक्षण पद्धतियों को लागू करने का आग्रह किया। 48 शिक्षकों को आज राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह को संबोधित करेंगे। सरकार ने ISO 10 कंटेनरों में पेट्रोलियम के आयात और परिवहन के लिए 3 साल की अनुमति तथा कड़े सुरक्षा नियमों का प्रस्ताव रखा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, भारत संघर्ष समाप्त करने में यूक्रेन और रूस के साथ निरंतर संपर्क में है। संयुक्त राष्ट्र ने अफ्रीका का सटीक आकार दर्शाने वाले नए विश्व मानचित्र को अपनाने के पक्ष में मतदान किया। विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला का तीसरा चरण अहमदाबाद में आज से शुरू और दुबई में महिला T20 एशिया कप क्रिकेट में आज भारत का सामना पाकिस्तान से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षक दिवस पर शिक्षकों से प्रौद्योगिकी अपनाने और नवीन शिक्षण पद्धतियों को लागू करने का आग्रह किया है। शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि शिक्षक विद्यार्थियों की प्रतिभा निखारने और चरित्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि आज 48 शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा।
1: हर वर्ष 5 सितंबर को पूरे भारत में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। यह दिन देश के पूर्व राष्ट्रपति, प्रसिद्ध शिक्षाविद, लेखक और दार्शनिक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। यह अवसर राष्ट्र निर्माण में शिक्षकों और शिक्षाविदों की महत्वपूर्ण भूमिका का सम्मान करता है। शिक्षक विद्यार्थियों के जीवन को बदलते हैं, पीढ़ियों को दिशा देते हैं और समाज की नींव को मजबूत करते हैं। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सुबह नई दिल्ली में 48 स्कूली शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगी। चयनित 48 शिक्षक 27 राज्यों, 7 केंद्र शासित प्रदेशों और 6 केंद्रीय सरकारी संगठनों से हैं। राष्ट्रपति उच्च शिक्षा संस्थानों और पॉलिटेक्निक के 21 शिक्षकों और संकाय सदस्यों को भी राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करेंगी। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कल शाम राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार विजेताओं से बातचीत की। श्री जोशी ने कहा कि शिक्षकों को बच्चों को 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि विद्यार्थी देश की सबसे बड़ी शक्ति हैं और उन्हें हर क्षेत्र में सक्षम बनाने की दिशा में काम किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय का ये कॉलेज देश के प्रमुख उच्च शिक्षण संस्थानों में से एक है। इसकी स्थापना वर्ष 1926 में उद्योगपति और समाजसेवी सर श्रीराम ने की थी। पिछले 100 वर्ष में इस संस्थान ने कई विद्वान, पेशेवर और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने वाली प्रतिभाओं को तैयार किया है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज चेन्नई इंडिया वॉल्व सम्मेलन में शामिल होंगे। यह हृदय से जुड़ी बीमारियों का उपचार बेहतर बनाने पर केंद्रित एक राष्ट्रीय शैक्षणिक सम्मेलन है। उपराष्ट्रपति गिंडी में इंडिया वॉल्व पंजिका का विमोचन भी करेंगे। सरकार ने ISO 10 कंटेनरों में पेट्रोलियम के आयात और परिवहन के लिए 3 साल तक की अनुमति देने का प्रस्ताव किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने पेट्रोलियम संशोधन नियम 2026 का मसौदा जारी किया है। इसमें आवेदन प्राप्त होने पर 7 कार्य दिवस में मंजूरी देने का प्रस्ताव है। इसके अनुसार पेट्रोलियम से भरे या पेट्रोलियम के लिए इस्तेमाल होने वाले ISO 10 कंटेनरों को बिना अनुमति आयात नहीं किया जा सकेगा। आवेदन पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन के ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से करना होगा और इसके साथ जरूरी तकनीकी और सुरक्षा दस्तावेज जमा कराने होंगे। मंत्रालय ने मसौदे पर 30 दिन के भीतर सुझाव और आपत्तियां मांगी हैं। प्राप्त सुझावों पर विचार करने के बाद नियमों में बदलाव किया जाएगा। ये समाचार हमारे न्यूज़ ऑन AIR

0: countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली के भारत मंडपम में 11 से 13 सितंबर तक ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इस कड़ी में ब्रिक्स देशों के मुख्य न्यायाधीशों का 3 दिन का सम्मेलन कल शुरू हो गया। सम्मेलन के लिए व्यापक स्तर पर सुरक्षा और तैयारियां की जा रही हैं। आज मोटर कारकेड का पूर्वाभ्यास किया जाएगा। दिल्ली यातायात पुलिस के अनुसार पूर्वाभ्यास सवेरे 10 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा। इस दौरान भारत मंडपम और आसपास के क्षेत्रों में 35 से अधिक सड़कों पर यातायात नियंत्रित रहेगा। यातायात पुलिस ने रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डे जाने वाले यात्रियों को अतिरिक्त समय लेकर निकलने और वैकल्पिक मार्ग अपनाने की सलाह दी है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत संघर्ष समाप्त करने के लिए रूस और यूक्रेन के लगातार संपर्क में है। वॉर्सो में पोलैंड के विदेश मंत्री राडोस्लाव सिरोस्की के साथ बातचीत के बाद उन्होंने कहा कि युद्ध का कोई विजेता नहीं होता।
2: भारत का मानना है कि अंतहीन युद्ध समाप्त होना चाहिए और युद्ध का कोई विजेता नहीं होता। हर अतिरिक्त दिन का अर्थ है अधिक मौतें, अधिक तबाही, दोनों देशों के लिए अधिक नुकसान और बाकी दुनिया के लिए अधिक लागत। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने इस चिंता को सार्वजनिक रूप से व्यक्त किया था, इसलिए हमारे प्रयास बातचीत और कूटनीति को बढ़ावा देने पर केंद्रित होने चाहिए।
1: विदेश मंत्री ने कहा कि भारत संघर्ष समाप्त करने में हर संभव मदद करने के लिए तैयार है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उनके विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और उनके दामाद जेरेड कुशनर रूस और यूक्रेन का दौरा करेंगे। दोनों का उद्देश्य रूस यूक्रेन युद्ध समाप्त करने के लिए शांति समझौते की कोशिश करना है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अफ्रीका का वास्तविक आकार बेहतर ढंग से दिखाने वाले नए विश्व मानचित्र के पक्ष में मतदान किया है। 164 देशों ने प्रस्ताव का समर्थन किया जबकि अमेरिका ने इसके विरुद्ध मतदान किया। 6 देश मतदान से अलग रहे। मर्केटर मानचित्र में अफ्रीका का आकार वास्तविकता से बहुत छोटा दिखाई देता है जबकि अफ्रीका ग्रीनलैंड से लगभग 14 गुना बड़ा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी @AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
1: मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिन तक पूर्वोत्तर राज्यों बिहार, मध्य प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तराखंड, सिक्किम, बंगाल और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी तेज वर्षा की आशंका है। लखनऊ से हमारे संवाददाता ने बताया है कि उत्तर प्रदेश में भी कई जिले बाढ़ से जूझ रहे हैं।
4: राज्य में अयोध्या, वाराणसी, आजमगढ़, बलिया, गोरखपुर, लखीमपुर खीरी, चित्रकूट और बाराबंकी सहित 26 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर बाढ़ग्रस्त इलाकों में राहत और बचाव अभियान लगातार जारी है। बाढ़ राहत आयुक्त के मुताबिक लगभग 3.5 लाख से अधिक आबादी बाढ़ से प्रभावित होने के बावजूद राहत और बचाव तंत्र की सक्रियता से लगभग 72,000 बाढ़ राहत किट और 3.5 लाख से अधिक प्रभावितों को लंच पैकेट वितरित किए जा चुके हैं। इसके अलावा 17,000 से ज्यादा लोगों को शरणालयों सहित सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है। इस बीच मौसम विभाग ने प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: बिहार के 14 जिलों में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं और निचले इलाकों में पानी भरा हुआ है।
5: आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार 8,50,000 से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। पशुपालन विभाग के अनुसार करीब 70,000 पशु भी प्रभावित हुए हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों की सुविधा के लिए 700 नावों का परिचालन किया जा रहा है। वहीं बाढ़ राहत शिविर और सामुदायिक रसोई घर भी संचालित किए जा रहे हैं। जल संसाधन विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों में गंगा और सोन नदियों के जलस्तर में कुछ कमी आने की संभावना है। हालांकि पटना में पुनपुन नदी के बढ़ते जलस्तर के कारण गया पटना रेलखंड पर रेल परिचालन प्रभावित हुआ है। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
1: भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व कल पूरे देश में

0: श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया गया। श्री कृष्ण जन्माष्टमी से जुड़ा दही हांडी उत्सव आज महाराष्ट्र में धूमधाम से मनाया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
1: मुंबई और आसपास के जिलों में दही हांडी भगवान श्री कृष्ण के जन्म से जुड़ा एक पारंपरिक उत्सव है। इसमें गोविंदा मानव पिरामिड बनाकर मिट्टी के हांडी फोड़ते हैं। इस उत्सव के दौरान कुछ गोविंदा कभी कभी चोटिल हो जाते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए बीएमसी ने अस्पतालों को पूरी तरह तैयार रहने और घायल गोविंदाओं को मुफ्त उपचार उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। इस बीच महाराष्ट्र सरकार ने 1,60,000 गोविंदाओं के लिए बीमा कवरेज की घोषणा की है। अस्पताल में भर्ती होने, स्थायी पूर्ण या आंशिक दिव्यांगता की स्थिति में 1,00,000 से 10,00,000 रुपए तक का बीमा लाभ दिया जाएगा। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला का तीसरा चरण आज गुजरात के अहमदाबाद में शुरू होगा। इसमें 19 देशों के 105 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। भारत पहली बार इस प्रतियोगिता की मेजबानी कर रहा है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कल शाम प्रतियोगिता का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि भारत आने वाले वर्षों में खेलों का प्रमुख केंद्र बनेगा।
2: 19 देशों से 108 से ज्यादा पैरा एथलीट्स हिस्सा ले रहे हैं उस वक्त कि अहमदाबाद, गुजरात और भारत आने वाले दिनों में खेल जगत के, चाहे वो ओलंपिक्स से जुड़े हुए खेल हो, सभी प्रकार के खेल का एक बहुत बड़ा सेंटर बनने वाला है।
0: एशिया कप महिला टी20 क्रिकेट के ग्रुप ए के अंतिम मुकाबले में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। ये मैच दुबई में रात 8 बजे से शुरू होगा। भारत ने थाईलैंड और हांगकांग को हराकर पहले ही सेमीफाइनल में जगह बना ली है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
3: धन्यवाद मुकेश। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यूएस उपग्रह के सफल प्रक्षेपण की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान ने लिखा है, इसरो ने अंतरिक्ष में स्थापित किया तीसरा नेत्र। जनसत्ता की सुर्खी है, देश के पहले उपग्रह का प्रक्षेपण, इसरो की एक और कामयाबी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो और उद्योग जगत की साझेदारी को अंतरिक्ष क्षेत्र की बड़ी उपलब्धि बताया। कहा, हमारे देश के लिए गर्व का पल। दैनिक जागरण के अनुसार, प्रधानमंत्री जिस प्रोजेक्ट का करेंगे लोकार्पण, उसकी 6 महीने तक होगी निगरानी। कुछ घटनाओं से सीख लेकर NHAI ने कार्यक्रमों की SOP में जोड़े नए दिशा निर्देश। दैनिक भास्कर ने शिक्षक दिवस पर विशेष सुर्खी से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का विशेष लेख साझा करते हुए लिखा है, विजेता होते हैं शिक्षक, लेकिन शिष्य से पराजित होने की शिक्षा उन्हें महान बनाती है। पंजाब केसरी ने शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी के लेख पर विकसित भारत के सफर में शिक्षकों की भूमिका देते हुए लिखा है, ये दिन सिर्फ सराहना करने का एक दिन से कहीं ज्यादा मायने रखता है। पंजाब केसरी की सुर्खी है, नंद के घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। मथुरा में रात 12 बजते ही हर तरफ उल्लास और हाथी घोड़ा पालकी, जय कन्हैया लाल की का उत्साह देखने को मिला। राजस्थान पत्रिका का शीर्षक है, ब्रज में बाजे बधाई नंद घर आए कन्हाई। नवभारत टाइम्स ने चमत्कार शीर्षक से दिया है, नेपाल में सुरंग से 9 दिन बाद 2 को जिंदा बचाया, जन्माष्टमी पर सुरक्षित निकाले गए। फोरमैन संजय शाह ने कहा, हरे कृष्ण महामंत्र जपता रहा। अमर उजाला की सुर्खी है, सुरंग में गूंजा जिंदगी का मंत्र। राजस्थान पत्रिका ने बदलेगी गैजेट की दुनिया देते हुए लिखा है, बेकार जाने वाली गर्मी से भी बनेगी काम की बिजली।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षक दिवस पर शिक्षकों से प्रौद्योगिकी अपनाने और नवीन शिक्षण पद्धतियों को लागू करने का आग्रह किया। 48 शिक्षकों को आज राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह को संबोधित करेंगे। सरकार ने ISO टैंक कंटेनरों में पेट्रोलियम के आयात और परिवहन के लिए 3 साल की अनुमति तथा कड़े नियमों का प्रस्ताव रखा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, भारत संघर्ष समाप्त करने में यूक्रेन और रूस के साथ निरंतर संपर्क में है। संयुक्त राष्ट्र ने अफ्रीका का सटीक आकार दर्शाने वाले नए विश्व मानचित्र को अपनाने के पक्ष में मतदान किया। और दुबई में महिला टी20 एशिया कप क्रिकेट में आज भारत का सामना पाकिस्तान से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: गुड मॉर्निंग, दिस इज आकाशवाणी।

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की, धनबाद की शिक्षिका मुन्मुन भट्टाचार्य समेत देश की 48 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से करेंगी सम्मानित। राज्यपाल और मुख्यमंत्री जन्माष्टमी के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में हुए शामिल, राज्यवासियों को दी शुभकामनाएं। भाजपा ने झारखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया में नियमों के उल्लंघन का लगाया आरोप, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। जेएसएससी की भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितता के मामले में सीआईडी की विशेष जांच टीम ने की कार्रवाई, आयोग के सचिव के आवास और कार्यालय की ली तलाशी। और मोराबादी चैलेंजर ट्रॉफी फुटबॉल टूर्नामेंट इस वर्ष 13 से 20 सितंबर तक किया जाएगा आयोजित, रांची और आसपास के प्रमुख फुटबॉल क्लब लेंगे हिस्सा। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में 48 स्कूली शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगी। धनबाद के एमएस बरमसिया मध्य विद्यालय की शिक्षिका मुन्मुन भट्टाचार्य को भी राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। वह इस वर्ष झारखंड से राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए चुने जाने वाली एकमात्र शिक्षिका हैं।
1: पाँच सितंबर को पूरे भारत में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। यह दिन देश के पूर्व राष्ट्रपति, प्रसिद्ध शिक्षाविद, लेखक और दार्शनिक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के उपलक्ष में मनाया जाता है। यह अवसर राष्ट्र निर्माण में शिक्षकों और शिक्षाविदों की महत्वपूर्ण भूमिका का सम्मान करता है। शिक्षक विद्यार्थियों के जीवन को बदलते हैं, पीढ़ियों को दिशा देते हैं और समाज की नींव को मजबूत करते हैं। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सुबह नई दिल्ली में 48 स्कूली शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगी। चयनित 48 शिक्षक 27 राज्यों, 7 केंद्र शासित प्रदेशों और 6 केंद्रीय सरकारी संगठनों से हैं। राष्ट्रपति उच्च शिक्षा संस्थानों और पॉलिटेक्निक के 21 शिक्षकों और संकाय सदस्यों को भी राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करेंगी। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के अवसर पर आज राज्य भर में कई कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग द्वारा राज्य की दो शिक्षिका, पूर्वी सिंहभूम की रंजिता गांधी तथा पश्चिमी सिंहभूम की शिल्पा गुप्ता को राज्य शिक्षक पुरस्कार दिया जाएगा। वहीं राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए जिलों से नामांकित 69 शिक्षकों को जिला स्तरीय पुरस्कार तथा 121 को विशेष शिक्षा सम्मान दिया जाएगा। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने रांची के बोड़ैया स्थित श्री मदन मोहन मंदिर में आयोजित श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव में श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी और मंदिर को झारखंड की ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक विरासत का महत्वपूर्ण केंद्र बताया। इस अवसर पर राज्यपाल ने श्री मदन मोहन स्वामी स्तुति का लोकार्पण किया और मंदिर समिति को बधाई दी। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मोरहाबादी में आयोजित श्री कृष्ण जन्मोत्सव एवं दही हांडी प्रतियोगिता में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने भगवान श्री कृष्ण से समस्त झारखंडवासियों के कल्याण की कामना की, साथ ही उन्होंने दही हांडी के युवा प्रतिभागियों का उत्साह वर्धन किया। भाजपा ने झारखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया में नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। पार्टी ने बरहेट में झामुमो की बैठक में वीडियो की कथित मौजूदगी, रांची में बीएलओ द्वारा फॉर्म 7 स्वीकार नहीं किए जाने और एसआईआर के दौरान ऑफलाइन जाति, आय व आवासीय प्रमाण पत्र जारी करने पर सवाल उठाते हुए उच्च स्तरीय जाँच की मांग की है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितता और पेपर लीक से जुड़े मामलों की जांच कर रही है। सीआईडी की विशेष जांच टीम ने कल नामकुम स्थित जेएसएससी कार्यालय में आयोग के सचिव सुधर गुप्ता से पूछताछ की और परीक्षा से जुड़े कई दस्तावेजों की जांच की। इससे पहले सीआईडी की टीम ने मोरहाबादी के हरिहर सिंह रोड स्थित सचिव सुधीर गुप्ता के आवास पर भी तलाशी ली। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। ब्रिक्स देशों के मुख्य न्यायाधीशों का 3 दिन का सम्मेलन नई दिल्ली में शुरू हुआ। हमारी संवाददाता ने बताया कि सम्मेलन में ब्रिक्स सदस्य और सहयोगी देशों के मुख्य न्यायाधीश और वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी भाग ले रहे हैं। एक
2: भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने रूस, चीन, संयुक्त अरब अमीरात, दक्षिण अफ्रीका, ईरान और उज्बेकिस्तान सहित कई देशों के न्यायिक प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। इन बैठकों में देशों के बीच न्यायिक सहयोग को मजबूत करने, न्यायपालिका की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को एकीकृत करने, तेजी सैनिक प्रक्रियाएं पूरी करके लोगों के बीच संबंध बेहतर करने और अलग अलग देशों के बेहतरीन कानूनी तौर तरीकों पर चर्चा की गई। अनुपम मिश्र के साथ ऋषु जायसवाल, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: रांची के बिरला प्रौद्योगिकी संस्थान मेसरा के वार्षिक तकनीकी महोत्सव पैंथियन 2026 का उद्घाटन कल जीपी बिरला ऑडिटोरियम में भव्य समारोह के साथ हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि शहरी प्रशासन नगर विकास विभाग की निदेशक नैन्सी सहाय थी। इस समारोह में संस्थान की एयरोस्पेस क्षेत्र की उपलब्धियों और स्काई रूट एयरोस्पेस के रॉकेट प्रक्षेपण अभियान में पूर्व छात्रों की भूमिका का उल्लेख किया गया। जमशेदपुर में 6 सितंबर को शिक्षा व्यवस्था की कमियों और सुधार के मुद्दों पर फैक्ट फाइंडिंग सेमिनार का आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन स्वर्णरेखा क्षेत्र विकास ट्रस्ट और नेचर फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में होगा। विधायक सरयू राय ने बताया कि इस सेमिनार में

0: प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा तथा छात्र युवा असंतोष जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी।
1: संगोष्ठी का उद्देश्य है कि हमारे शिक्षा के क्षेत्र में या शिक्षा व्यवस्था में कमियां क्या हैं। कमियां हैं विद्यालयों में, इनको दूर करिए। अपने बजट में एक साल शिक्षा के लिए बहुत अधिक प्रावधान कर दीजिए और कुछ ऐसे विभाग हैं जिनमें आप कटौती करिए। शिक्षा को प्राथमिकता देकर काम करिए।
0: धनबाद जिले में केंदुआ के अग्नि प्रभावित इलाके कुर्मीडी पांडे बस्ती के पास अचानक दो बड़े गोफ बनने और गैस का रिसाव होने की बात सामने आई है। इससे इलाके के लोग दहशत में हैं। बीसीसीएल के अधिकारी लव प्रताप सिंह ने बताया कि खाली जगह को भरने का काम शुरू हो गया है।
2: सभी लोग से हम लोग का यही निवेदन है कि सब सुरक्षित स्थान पे चले जाएं, नहीं कभी भी दुर्घटना किसी के साथ हो सकती। हम लोग दूसरा जो गोप है उसको फेंसिंग करा दिए कि कोई व्यक्ति वहाँ न जाए। यही निर्देश है कि किसी के साथ दुर्घटना न। पुनर्वास की प्रक्रिया चल रही है और करीब करीब यहाँ के लोगों को भी बैलगाड़ियाँ शिफ्ट करने के लिए आवाज दी।
0: और अब मौसम का हाल। झारखंड में आज मौसम का मिजाज मिला जुला रहने वाला है। राजधानी रांची समेत कई जिलों में बादल छाए रहेंगे और हल्की बूंदाबांदी के आसार हैं। राजधानी रांची के मोरहाबादी में 31 वर्षों से आयोजित मोरहाबादी चैलेंजर ट्रॉफी फुटबॉल टूर्नामेंट इस वर्ष 13 से 20 सितंबर तक आयोजित किया जाएगा। मोरहाबादी क्रीड़ा केंद्र द्वारा आयोजित इस टूर्नामेंट में रांची और आसपास के प्रमुख फुटबॉल क्लब हिस्सा लेंगे। आयोजकों के अनुसार विजेता टीम को 71,000 रुपए और उपविजेता टीम को 51,000 रुपए की पुरस्कार राशि दी जाएगी। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित अधिकांश अखबारों ने जेएसएससी कार्यालय में सीआईडी के छापे की खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, जेपीएससी की एसीएफ और एफआरओ परीक्षा में भी धांधली का खुलासा। प्रभात खबर ने महिला पर्यवेक्षिका परीक्षा में निजी विश्वविद्यालय के डिग्री पर सवाल उठाए हैं। शीर्षक है, संदिग्ध मिली 33 डिग्रियां, विश्वविद्यालय पर कार्रवाई के लिए सरकार ने यूजीसी को भेजी रिपोर्ट। दैनिक जागरण ने लिखा है, राज्य के प्लस टू स्कूलों में कंप्यूटर साइंस कोडिंग एआई विषयों की पढ़ाई के लिए तैयार होगा सिलेबस। और हिंदुस्तान ने अदालत के हवाले से लिखा है, झारखंड के थानों में सीसीटीवी पर स्पष्ट करें स्थिति। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, धनबाद के शिक्षिका मुनमुन भट्टाचार्य समेत देश के 48 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से करेंगी सम्मानित। राज्यपाल और मुख्यमंत्री जन्माष्टमी के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में हुए शामिल, राज्यवासियों को दी शुभकामनाएं। भाजपा ने झारखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया में नियमों के उल्लंघन का लगाया आरोप, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। जेएसएससी की भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितता मामले में सीआईडी की विशेष जांच टीम ने की कार्रवाई, आयोग के सचिव के आवास और कार्यालय की तलाशी। और मोरहाबादी चैलेंजर ट्रॉफी फुटबॉल टूर्नामेंट इस वर्ष 13 से 20 सितंबर तक किया जाएगा आयोजित, रांची और आसपास के प्रमुख फुटबॉल क्लब लेंगे हिस्सा। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा।

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, आज हर घर में मोबाइल फोन, लैपटॉप, टैबलेट जैसी डिवाइसेस आम हो चली है। देश भर में इनकी संख्या बिलियंस में होगी। आज के लेटेस्ट डिवाइस भविष्य के ई वेस्ट भी होते हैं। अगर ई वेस्ट को ठीक से डिस्पोज नहीं किया गया तो यह हमारे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा।

0: लेकिन अगर सावधानी पूर्वक ऐसा किया जाता है तो रिसाइकल और रीयूज की सर्कुलर इकोनॉमी की बहुत बड़ी ताकत बन सकता है। आप जानकर चौंक जाएंगे कि अलग अलग प्रोसेस के जरिए इस ई वेस्ट से करीब 17 प्रकार के प्रेशियस मेटल्स निकाले जा सकते हैं। इसमें गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और निकल शामिल है। इसलिए ई वेस्ट का सदुपयोग करना कचरे को कंचन बनाने से कम नहीं है। आज ऐसे स्टार्टअप्स की कमी नहीं जो इस दिशा में इनोवेट काम कर रहे हैं। इस सेक्टर ने हजारों लोगों को सीधे तौर पर रोजगार भी दिया है। ये सभी भारत को ग्लोबल रिसाइकलिंग हब बनाने में मदद कर रहे हैं। लेकिन ऐसे इनिशिएटिव की सफलता के लिए एक जरूरी शर्त भी है। वो ये है कि ई वेस्ट के निपटारे से सुरक्षित उपयोगी तरीकों के बारे में लोगों को जागरूक करते रहना होगा।
1: वेक्टर जनित रोग, मलेरिया, फाइलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, कालाजार और जापानीज इंसेफेलाइटिस से बचाव के लिए मच्छरों से अपना बचाव करें। अपने घर के आसपास सफाई रखें, जल जमाव न होने दें, पानी के बर्तनों को ढक कर रखें, पूरे आस्तीन के कपड़े पहनें और हमेशा मच्छरदानी के अंदर सोएं।
2: बुखार होने पर ओझागुनी के पास ना जाएं, अपने गांव की सहिया को बताएं या नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में जाएं, मुफ्त जांच और उपचार कराएं।
1: वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है।
4: ये आकाशवाणी का डाल्टनगंज केंद्र है। आइए अब शुरू करते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत गुंजन। तमाम साथियों का इस कार्यक्रम में स्वागत है और आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, फिल्म संगीत के आज के कार्यक्रम में आज हम लेकर आए हैं महान संगीतकार, कवि, गीतकार सलिल चौधरी जी के संगीतबद्ध कुछ गाने। आइए शुरुआत करते हैं।

0: सच है क्या, सब सच।
1: जागते रहो, अभी आप सुन रहे थे इस फिल्म का गाना, आवाज़ मुकेश की थी, गीत के बोल शैलेंद्र के थे, धुन बनाई थी सलिल चौधरी ने। भारतीय संगीतकार, संगीत निर्देशक, गीतकार, लेखक, कवि, उन्होंने मुख्य रूप से बंगाली, हिंदी और मलयालम फिल्मों के लिए संगीत तैयार किया था और इसके अलावा अन्य भाषाओं में भी कुछ गानों को संगीतबद्ध किया, मराठी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, गुजराती, उड़िया, असमिया। जी हाँ, और वो एक बहुत ही मंझे हुए कलाकार थे। वे कुशल संगीतकार तो थे ही, बांसुरी, पियानो सहित कई वाद्य यंत्रों में भी वो निपुण थे। उनकी प्रेरणादायक और मौलिक कविताओं के लिए भी उन्हें काफ़ी प्रशंसा, सराहना मिलती रहती थी। जी हाँ, चलिए सुनवाती हैं अगला गाना।

आशा भोसले और येसुदास की आवाज़ों में आप सुन रहे थे छोटी सी बात फिल्म का गाना। गीत के बोल योगेश के थे, धुन बनाई थी सलिल चौधरी ने। और सुनवाते हैं इस कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति।

0: यशोदास की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे योगेश का लिखा हुआ गाना आनंद महल फिल्म से। संगीतबद्ध किया था सलिल चौधरी ने। आज हमने आपको सुनवाए महान संगीतकार सलिल चौधरी के कुछ संगीतबद्ध गाने। सलिल दा की यदि हम बातें करें तो संगीत पूर्वी पश्चिमी संगीत परंपराओं का मिश्रण था। उन्होंने एक बार कहा भी था कि मैं एक ऐसी शैली बनाना चाहता हूँ जो सीमाओं से परे हो, एक ऐसी विधा जो प्रभावशाली और परिष्कृत हो लेकिन कभी भी पूर्वानुमानित नहीं हो। जी हाँ, तो इसी के साथ ही फिल्म संगीत का गीत गुंजन कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। समय हो चला है जोहार पलामू कार्यक्रम का, तो आइए शुरू करते हैं यह कार्यक्रम। प्रस्तुति स्वर है निर्मला तिवारी का, संयोजन करता है श्री प्रशांत गौरव।
1: जोहार पलामू।

जोहार नमस्कार, स्वागत है आप तमाम साथियों का हमारे इस कार्यक्रम में और आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का मानना था दोस्तों कि वास्तविक शिक्षक वही है जो छात्रों को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करे, न कि केवल तथ्य थोप दे। जी हाँ, उनका कहना था कि शिक्षा का उद्देश्य मानव मस्तिष्क का सदुपयोग करना और व्यक्ति को रचनात्मक और आपदाओं से लड़ने में सक्षम बनाना है। उनके अनुसार पुस्तकें हमें एकांत में सोचने की शक्ति और सच्ची खुशी देती हैं, और जब हम मान लेते हैं कि हम सब कुछ जानते हैं तभी हम सीखना बंद कर देते हैं। डॉक्टर राधाकृष्णन देश के पहले उपराष्ट्रपति और देश के दूसरे राष्ट्रपति थे। भारत रत्न, ऑर्डर ऑफ मेरिट, नाइट बैचलर जैसे कई सम्मान से सुशोभित राधाकृष्णन जी ने देश की फिलॉसफी को दुनिया के नक्शे पर जगह दिलाई थी। वो कहते थे कि वो अच्छा टीचर वही है जो ताउम्र सीखता रहता है और अपने छात्रों से भी सीखने में कोई परहेज नहीं करता है। जी हाँ, ऐसे महान व्यक्तित्व को हम वंदन करते हैं, नमन करते हैं। आज उनकी जयंती है, बारंबार नमन। और आइए सुनवाते हैं आपको अब एक

0: 10 लाख की लॉटरी
1: मुझे।
2: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
3: RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: दस लाख की लॉटरी
1: मुझे।
2: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
3: RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: मित्रों, आप सुन रहे हैं जोहार पलामू कार्यक्रम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से, और आज आपके साथ इस सफर में है आपकी दोस्त निर्मला। दोस्तों, नंद के घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जी हाँ, आज कान्हा के जन्मोत्सव का उल्लासपूर्ण वातावरण है। रात्रि 12 बजे जब कन्हैया का प्राकाट्य हुआ, तब श्रद्धालुओं हर्ष और खुशी से झूम उठे, विभोर हो गए। श्रद्धालुओं ने अपने अपने अनुसार व्रत रखा, पूजा अर्चना की और मनमोहना के जन्मदिवस की खुशियां मनाई। जी हाँ, ढोल, शंख, घड़ियाल, बांसुरी जय घोष के साथ वातावरण गुंजायमान हो गया। वृंदावन मथुरा गोकुल की तो बात ही अलग है मित्रों। वहाँ तो हवा में ही कृष्णा, माखन मिश्री, राधा रानी की पायल की और बांसुरी की धुन जैसे रची बसी हुई हो। लोग हरे रामा, हरे कृष्णा, राधा राधा कहते रहते हैं, जपते रहते हैं। मित्रों, यदि हम श्री कृष्ण की बातें करें तो उन्होंने अपने जीवन से बड़ा संदेश दिया आमजनों को। उन्होंने अर्जुन को अपना विराट स्वरूप दिखाया और मानव के कर्तव्य धर्म का संदेश दिया। उन्होंने कर्म करने और कर्मों की फल की चिंता न करने की सलाह दी। इस तरह उनके श्रीमुख से श्रीमद् भगवद गीता के द्वारा जीवन के गूढ़ रहस्य ज्ञान की प्राप्ति मानवों को मिल सकती है। जी, तो इसके साथ ही नटखट लाला के जन्मोत्सव का आनंद तो ले ही रहे हैं लोग। बहुत दिनों तक उनकी छठी तक ये उत्सव चलता रहता है, और आज है शिक्षकों के सम्मान का दिवस, शिक्षक दिवस। तो अपने अपने गुरुजनों के सम्मान में स्कूलों में बच्चे उत्साहपूर्वक विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों में गुरु के प्रति आभार प्रकट कर रहे हैं और उत्साहपूर्वक उसमें शामिल हो रहे हैं। इसके साथ ही हम आपको बता दें कि राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के अवसर पर विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम के अंतर्गत भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, और उसका अनुप्रसारण होगा 11:25 पर। तो आप याद रखेंगे, 11:25 पर आप आँखों देखा वहाँ से प्रसारण आप सुन सकते हैं। दोस्तों, ये तो हुई बातें, और अब आइए आपको लिए चलते हैं गीत संगीत की ओर। लेकिन उसके पहले मौसम की भी बातें कर लेते हैं। मौसम की बातें यदि करें तो अभी झमाझम बारिश जो हो रही थी इतने दिनों से लगातार, उससे तो राहत मिल गई है। लेकिन अभी भी मौसम विभाग का कहना है कि कई ज़िलों में हल्की फुल्की बारिश हो सकती है और कई ज़िलों में भारी बारिश हो सकती है। और बादल छाए रह सकते हैं, यानी कि आते जाते रहेंगे। बूंदाबांदी होने की संभावना बनी हुई है हमारे ज़िले में भी। देखिए कैसा रहता है मौसम। और चलिए अब लिए चलते हैं आपको गीत संगीत की ओर। चूँकि अभी कान्हा के जन्मोत्सव का उल्लास है, उत्साह है, तो आइए सुनवाते हैं आपको एक भजन।

जोहर पलमू कार्यक्रम में आप तमाम साथियों का एक बार फिर से स्वागत है और आइए अब हम सेहत से जुड़ी हुई कुछ चर्चा करें। दोस्तों, हमारे शरीर में विटामिन्स का बहुत अधिक महत्व होता है। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण पोषक तत्व है जो शरीर को सही ढंग से काम करने, बीमारियों से बचाने और ऊर्जा बनाए रखने के लिए आवश्यक होते हैं। हालांकि शरीर को इनकी बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है, लेकिन यदि इनकी कमी हो जाए तो शरीर में कई गंभीर बीमारियां पनप सकती हैं। शरीर कई गंभीर बीमारियों का शिकार हो सकता है। रोगों से सुरक्षा और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए विटामिन्स की ज़रूरत होती है। संक्रमण से बचाव के लिए विटामिन सी, विटामिन डी शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करते हैं, जिससे शरीर कई तरह के संक्रमणों से लड़ सकता है। कोशिकाओं की सुरक्षा। विटामिन ई एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट होता है जो शरीर की कोशिकाओं को नुकसान होने से बचाता है। हड्डियों और दांतों की मजबूती के लिए कैल्शियम का अवशोषण। विटामिन डी शरीर को भोजन से कैल्शियम सोखने में मदद करता है, जो मजबूत हड्डियों और दांतों के लिए आवश्यक हैं। विटामिन के हड्डियों के घनत्व यानी उनकी जो डेंसिटी है उसको बनाए रखने में मदद करता है, हड्डियों का विकास करने में सहायक होता है विटामिन के। आँखों की रोशनी और त्वचा की चमक बनाए रखने के लिए विटामिन ए आँखों की रोशनी को तेज रखता है और रतौंधी नामक बीमारी से वह हमें बचाता है। जी, कई लोगों को ये शिकायत हो जाती है कि रात में उनको दिखाई नहीं देता है, जिसे रतौंधी कहा जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस। तो ऐसे में विटामिन ए की आवश्यकता होती है जो आँखों की रोशनी को तेज़ करता है और रतौंधी से जैसी जो बीमारियाँ होती है उससे बचाता है। विटामिन ई और सी जो होते हैं वो त्वचा हमारी त्वचा को चमकदार, स्वस्थ और झुर्रियों से मुक्त रखने में मदद करते हैं। ऊर्जा निर्माण और खून की कमी से बचाव करने के लिए विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, जिसमें विटामिन ए, विटामिन बी टू, बी थ्री, बी सिक्स, बी ट्वेल्व होता है, हमारे द्वारा जो भोजन हम करते हैं उसको ऊर्जा में बदलने का काम करता है। यानी हमारे द्वारा जो भोजन खाया जाता है उसको ऊर्जा में बदलने का काम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स करता है। खून का निर्माण। खून का निर्माण विटामिन बी ट्वेल्व और फॉलिक एसिड यानी बी नाइन शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं को बनाने में मदद करता है, जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनको बनाने में मदद करते हैं, जिससे खून की कमी, जो एनीमिया नामक जो बीमारी होती है, खून की कमी वो शरीर में नहीं होती है। घाव भरना और रक्त को थक्का बनाना। तो जब चोट लग जाती है हमारे शरीर में कहीं भी और खून बहने लगता है, उस समय खून को बहने से रोकने के लिए विटामिन के सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यह रक्त का थक्का यानी कि ब्लड क्लॉट जमाने में मदद करता है, जिससे रक्तस्राव रुकता है। विटामिन सी चोट या घाव को जल्दी भरने में सहायक होते हैं। तो इस तरह जो ये विटामिन्स होते हैं वो हमारे शरीर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं और हमें ये अपने भोज्य खाद्य पदार्थों से प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन यदि किसी कारणवश ये आपके शरीर में नहीं पहुंच रहे हैं और शरीर इनको नहीं प्राप्त कर पा रहा है, तो ऐसे में आवश्यकता होती है कि सप्लीमेंट लिया जाए, यानी कि चिकित्सक की सलाह के अनुसार दवाइयों का सेवन किया जाए, जिससे शरीर में जिस भी विटामिन की कमी है वह उनके अनुसार दूर करने के लिए दवा देते हैं जो चिकित्सक हैं, डॉक्टर हैं, और उन्हीं की सलाह के अनुसार दवाइयों का सेवन करना चाहिए। जब भी किसी प्रकार की परेशानी हो, कमज़ोरी महसूस हो, या फिर कई लोगों को शिकायत होती है कि उनका ब्लड थक्का नहीं बनता है और कई तरह की शिकायतें हो जाती हैं, रात में दिखाई नहीं देता है, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, त्वचा ढीली पड़ने लगती है, कम उम्र में ही झुर्रियाँ पड़ने लगते हैं, तो इस तरह की जब समस्या हो जाती है तो ये पता चलता है कि शरीर में किसी न किसी तरह की विटामिन की कमी है, और ऐसे में जाँच की आवश्यकता होती है। चिकित्सक की सलाह के अनुसार जाँच कराया जाना चाहिए और जैसा वो सलाह देते हैं
जिस तरह की दवाइयाँ वो लिखते हैं उन दवाइयों का उनके बताए अनुसार सेवन करना चाहिए, इससे आपको समस्याओं से निदान मिल सकता है। तो इस तरह से ये है तो बहुत ही छोटी बात, लेकिन बहुत बड़ी बात भी है, क्योंकि कई गंभीर बीमारियाँ इनकी कमी से

दोस्तों, आज है मदर टेरेसा जी को आज हम याद कर रहे हैं। दया प्रेम की प्रतिमूर्ति थी मदर टेरेसा जी। हाँ, और उन्होंने गरीबों बीमारों की ताउम्र सेवा की। उन्होंने संकल्प लिया था कि अविवाहित रहेंगी और अविवाहित रहकर उन्होंने संतों की तरह कार्य किया, जिससे उन्हें संत की उपाधि दी गई और महान एक संत के रूप में जानी जाती हैं। जी हाँ, रोमन कैथोलिक चर्च के द्वारा कलकत्ता के संत टेरेसा के नाम से उनको नवाजा गया था। उन्होंने ताउम्र, जब तक वो जीवित रहीं, लोगों की मदद करती रहीं। गरीब, असहाय, बीमार, अनाथ, जो मरते हुए लोग थे, जिन्हें सड़क में पड़े रहते थे, कोई पूछता नहीं था, वैसे लोगों को उन्होंने हमेशा सहायता प्रदान की, सेवा शुश्रूषा किया। और इस तरह से उन्होंने लोगों को ये संदेश दिया कि आप मानव हैं तो मानव की सेवा कीजिए, जीवों के प्रति दया रखिए और अपने धर्म को निभाते हुए आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़िए। जी हाँ, और आज है अंतर्राष्ट्रीय दान दिवस, तो इसका उद्देश्य भी यही होता है कि हम

0: लोगों की मदद करें जितना हमसे हो सके, जितना हमारे जो हमें कर सकते हैं हम उतना हमें लोगों के प्रति करना चाहिए। जी हाँ, और ऐसा नहीं है कि आप दान सिर्फ रुपये पैसे से ही करें, आप श्रम का दान कर सकते हैं, लोगों की मदद कर सकते हैं, और इसके साथ ही कई तरह के दान होते हैं जो करके आप अपना जीवन भी धन्य कर सकते हैं और लोगों को जो असहाय हैं, गरीब हैं, जिन्हें मदद की आवश्यकता है उन तक आप मदद भी पहुंचा सकते हैं। तो इस तरह अब घड़ी की टिक टिक करती हुई सुई हमसे कह रही है कि इस कार्यक्रम का समय अब समाप्ति की ओर है, तो दीजिए इस कार्यक्रम से विदा। नमस्कार, जोहार।
1: जोहार पलामू।

अभी आप सुन रहे थे जोहार पलामू कार्यक्रम, प्रस्तुति स्वर निर्मला तिवारी का था, संयोजन करता थे श्री प्रशांत गौरव। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं और समय हो चला है अब फिल्म संगीत के कार्यक्रम का, तो आइए सुनवाते हैं कुछ फिल्मी गाने।

सलील चौधरी का संगीतबद्ध किया हुआ गाना मजरूह का लिखा हुआ लता मंगेशकर ने स्वर दिया था और फिल्म थी माया। आइए सुनवाते हैं अब आपको मजरूह का ही लिखा हुआ गाना, रोशन का संगीतबद्ध और लता मंगेशकर की आवाज़। फिल्म है ममता।

मुड़ के जब भी देखा चंदन का चेहरा नजर नहीं आया। गूंजते हुए माजी से सिर्फ इतना ही सुनाई दिया, नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज़ ही पहचान है गर

लता मंगेशकर का साथ दे रहे थे भूपिंदर सिंह। आप सुन रहे थे किनारा फिल्म का गाना, और इसी फिल्म के गाने के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में हम शामिल होंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र में, और उसके बाद 10:10 पर लिए चलेंगे आप सभी को आकाशवाणी के मुंबई केंद्र। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षकों से अपना ज्ञान लगातार बढ़ाने, नई तकनीक अपनाने और पढ़ाने के नए तरीकों का उपयोग करने का आह्वान किया। राष्ट्रपति ने सभी समर्पित शिक्षकों के योगदान के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वो ऐसी पीढ़ियों का निर्माण करते रहें जो देश को नई ऊंचाइयों तक ले जाएं। उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति और शिक्षाविद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को श्रद्धांजलि देते हुए महान शिक्षक बताया। शिक्षक दिवस हर वर्ष 5 सितंबर को डॉक्टर राधाकृष्णन की जयंती पर मनाया जाता है। राष्ट्रपति आज नई दिल्ली में 48 स्कूली शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगी। ये शिक्षक 27 राज्यों, 7 केंद्र शासित प्रदेशों और 6 केंद्रीय सरकारी संस्थानों से चुने गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय का ये कॉलेज देश के प्रमुख उच्च शिक्षण संस्थानों में से एक है। इसकी स्थापना वर्ष 1926 में उद्योगपति और समाजसेवी सर श्रीराम ने की थी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत संघर्ष समाप्त करने के लिए रूस और यूक्रेन के लगातार संपर्क में है। वार्सा में पोलैंड के विदेश मंत्री राडोस्लाव सिकोरस्की के साथ बातचीत के बाद उन्होंने कहा कि युद्ध का कोई विजेता नहीं होता।
1: इंडिया बिलीव्स दैट एंडलेस वॉर,
2: भारत का मानना है कि अंतहीन युद्ध समाप्त होना चाहिए और युद्ध का कोई विजेता नहीं होता। हर अतिरिक्त दिन का अर्थ है अधिक मौतें, अधिक तबाही, दोनों देशों के लिए अधिक नुकसान और बाकी दुनिया के लिए अधिक लागत। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने इस चिंता को सार्वजनिक रूप से व्यक्त किया था, इसलिए हमारे प्रयास बातचीत और कूटनीति को बढ़ावा देने पर केंद्रित होने चाहिए।
1: प्रमोटिंग डायलॉग एंड डिप्लोमेसी,
0: विदेश मंत्री ने कहा कि भारत संघर्ष समाप्त करने में हर संभव मदद करने के लिए तैयार है। इससे पहले उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की समेत शीर्ष नेताओं से मुलाकात की। दिल्ली के भारत मंडपम में 11 से 13 सितंबर तक ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इस कड़ी में ब्रिक्स देशों के मुख्य न्यायाधीशों का 3 दिन का सम्मेलन कल शुरू हो गया। सम्मेलन के लिए व्यापक स्तर पर तैयारियां और सुरक्षा प्रबंध किए जा रहे हैं। आज मोटर कारकेट का पूर्वाभ्यास किया जा रहा है। दिल्ली यातायात पुलिस के अनुसार पूर्वाभ्यास शाम 4 बजे तक चलेगा। इस दौरान भारत मंडपम और आसपास के क्षेत्रों में 35 से अधिक सड़कों पर यातायात नियंत्रित रहेगा। सरकार ने आईएसओ टैंक कंटेनरों में पेट्रोलियम के आयात और परिवहन के लिए 3 साल तक की अनुमति देने का प्रस्ताव किया है।

नेहा अभी एमए के फाइनल ईयर ही में थी कि बुआ एक रिश्ता ले आई। बड़े अच्छे लोग हैं, लड़का अफसर है, ज्यादा मांग नहीं उनकी, बस देखे भाले घर की लड़की चाहते हैं। मुझसे बरसों का परिचय है। मैंने गुड़िया की बात चलाई तो झट मान गए। पिताजी को लगता था अभी बहुत छोटी है, भैया उसे और आगे पढ़ने देने किसी नौकरी के बाद ही शादी के पक्ष में था। पर बुआ पिताजी से बड़ी थी, माँ की तरह उन्हें पाला था, पिताजी की एक न चली उनके सामने। दीदी की तो शादी होते ही मानो उसके लिए यह घर पराया हो गया। यहाँ के मामलों में वह मुंह नहीं खोलती। नेहा ने जब थोड़ा डरते हुए दीदी को फोन किया, दीदी वहाँ सबसे बड़ी हो जाऊंगी मैं, कैसे संभालूंगी सब? संभालना क्या है, कोई छोटे बच्चे थोड़े ही हैं वे सब। अच्छा साथ रहेगा, खुश रहेगी तू। यहाँ पर मुंबई में देख, तेरे जीजाजी ऑफिस चले जाते हैं तो सारा दिन मैं अकेले पड़ी रहती हूँ, खाना तक खाने का मन नहीं होता। ज्वाइंट फैमिली में समय अच्छा कट जाता है। फिर दीदी अपने ही अकेलेपन

उनके बड़े बेटे को भी। घर में सिर्फ खाने कपड़े से ही मतलब था। दोनों बाप बेटे टीवी पर समाचार देखते और जैसे ही सासू जी के सीरियल देखने का वक्त होता, दोनों उठकर अपने अपने कमरे में चले जाते। वह असमंजस में पड़ जाती, पति के साथ कमरे में बैठे या सासू माँ के साथ सीरियल देखे। पति तो अपने लैपटॉप पर दफ्तर का कोई काम लिए बैठे होते। वह कमरे, ड्राइंग रूम और किचन का चक्कर लगाती रहती।

शादी से पहले इतनी खुश थी स्नेहा। हम उम्र देवर और ननद हैं, उसने सोचा था बढ़िया वक्त कटेगा। ननद की कोई बहन नहीं, वो सारा प्यार उड़ेल देगी। पर ननद कॉलेज से सीधी अपने कमरे में जाती और मोबाइल से चिपक जाती। एक आध बार स्नेहा ने कमरे में जाकर बात करने की कोशिश भी की तो ननद ने बड़े अनमने भाव से उत्तर दिया, और वो पलटकर दरवाजे तक भी नहीं पहुंची थी कि ननद पीठ फेरे किसी को फोन पर कह रही थी, अरे भाभी थी कॉलेज से आओ नहीं कि बहाने से आ जाती हैं कमरे में, इत्मीनान से फोन पर बात भी ना कर सको। स्नेहा ने ननद से दोस्ती बढ़ाने की कोशिश छोड़ ही दी। उसे लगा था देवर हमेशा भाभियों के प्यारे होते हैं। एक दिन देवर अपने दोस्त के साथ सिनेमा देखने गए थे। सास और पति के मना करने के बावजूद वो उसका इंतजार करती रही, ड्राइंग रूम में चैनल बदलकर समय काटती रही। देवर ने अपनी चाबी से दरवाजा खोला और उसे ड्राइंग रूम में देख एक मिनट के लिए हेडफोन निकाला और पूछा, अरे भाभी नींद नहीं आ रही आपको, या भैया से लड़ाई हो गई है? हाँ। और फिर कान में हेडफोन लगाए गाने पर झूमते सर हिलाता अपने कमरे में चला गया। स्नेहा ने ही कमरे के दरवाजे पर जाकर पूछा, खाना गर्म करती हूँ, जल्दी से हाथ मुंह धोकर आ जाइए। ओह क्या भाभी, आप कितनी ओल्ड फैशन है, मुझे खाना होगा तो माइक्रोवेव में गर्म कर लूंगा, वैसे अक्सर मैं खाना खाकर ही आता हूँ। गुड नाइट भाभी एंड थैंक्स फॉर आस्किंग, कहकर वापस हेडफोन लगा झूमना शुरू कर दिया। इस घर का रंग ढंग ही निराला था। सब एक छत के नीचे रहते थे पर सबकी दुनिया अलग थी। स्नेहा सबकी दुनिया में कदम रखने की कोशिश करती पर दरवाजा बंद पाती, और फिर बंद दरवाजे से टकरा बार बार उसका मन लहूलुहान हो जाता। स्नेहा के पति को घूमने फिरने का कोई शौक नहीं था, उनका देखा जाना अपना शहर था, उन्हें कहीं भी जाने का कोई उत्साह नहीं रहता। शुरू शुरू में स्नेहा ही जिद कर बाहर जाने पर मजबूर करती। पति बड़े बेमन से गंभीर चेहरा बनाए साथ हो लेते, पर हर जगह कोई ना कोई परिचित मिल जाता और फिर तो पति की मुखमुद्रा बिल्कुल बदल जाती। इतने गर्मजोशी से मिलते और बातों का वो सिलसिला शुरू होता कि स्नेहा की उपस्थिति ही भूल जाते। वो उपेक्षित सा महसूस करती, स्नेहा को गुस्सा भी आता, इन सब से कैसे इतना घुल मिल कर बातें कर रहे हैं, उससे बातें करते जुबान पर ताले पड़ जाते हैं। धीरे धीरे बाहर घूमने जाने का उसका सारा उत्साह ठंडा पड़ गया।

बस एक सहारा दीदी और सहेलियों के फोन का रहता। फोन पर बात करते वो अपने आसपास का पूरा परिवेश भूल जाती। लगता वही कॉलेज का लॉन है या फिर घर की छत। ऐसे ही एक रविवार की सुबह देर तक बातें की थी दीदी से। दीदी ने उन्हें मुंबई बुलाया था और पतिदेव ने भी हामी भर दी थी। स्नेहा का मन इतना खुश-खुश था कि बाथरूम में देर तक गुनगुनाते हुए नहाती रही। बाहर निकली तब भी गीले बालों को झटकते गाना जारी रहा। कुछ देर बाद जब लंबे बाल पीछे की तरफ फेंक सामने देखा तो पाया दरवाजे पर खड़े पति उसे गौर से देख रहे थे। एक सल्लज मुस्कान फैल गई उसके चेहरे पर। ये ध्यान भी आया यहाँ आकर तो वह गाना ही भूल गई है। पति ने पहली बार उसका गाना सुना है। शायद अभी आकर बाहों में भर लेंगे और कहेंगे कितनी मीठी आवाज है तुम्हारी, हरदम क्यों नहीं गाती। इंतजार में जैसे उसकी सांसें भी रुक गई थी पर कोई आहट नहीं हुई। नजरें उठाकर देखा तो पति अखबार उठा कुर्सी की तरफ जा रहे थे। उसे अपनी तरफ देखता पाकर बोले, इतनी जोर से गा रही हो, बगल के कमरे में ही माँ पापा हैं, कुछ तो सोचा करो। और अखबार फैला लिया सामने। स्नेहा का मन हुआ वो भी पैर पटकती हुई बाहर चली जाए, पर फिर सोचा आज इतवार है और दिन बस शुरू ही हुआ है, सारा दिन अबोला रह जाएगा। किसी तरह आंसू जज्ब करते हुए स्वर को सामान्य बनाते हुए पूछा, दीदी ने बुलाया है, आपने भी हाँ कहा है, कब चलेंगे मुंबई? छुट्टी कहाँ है, इतना काम है दफ्तर में, कैसे जा सकता हूँ? अब वो हाँ तो कहना ही पड़ता है ना, बाद में कोई बहाना बना देंगे। और ये कहते हुए अखबार में डूब गए। स्नेहा जैसे आसमान से गिरी। कितनी खुश थी वह, कितनी सारी योजनाएं बना डाली, अब अपने आंसू रोकना मुश्किल हो गया। किचन में जाकर ढेर सारे प्याज काट डाले। सास ने आश्चर्य से पूछा, इतने सारे प्याज? आंखें नाक पोछते हुए इतना ही कहा, हाँ आज सोचा आलू दो प्याज।

उसने तय कर लिया, अगर घर वालों की अपनी दुनिया है तो वो भी अपनी अलग दुनिया बसा लेगी और खुश रहेगी उसमें। और खाली वक्त में अखबारों के कॉलम देखने लगी, या तो नौकरी करेगी या फिर कोई बढ़िया सा कोर्स। अभी यह तलाश जारी ही थी कि उसे माँ बनने की खुशखबरी मिली। लगा अब घर का माहौल बदल जाएगा। नन्हे बेटे की किलकारी ने घर में रौनक तो ला दी, पर स्नेहा की दिनचर्या में ज्यादा बदलाव नहीं आया, बल्कि नई जिम्मेवारियां और शुमार हो गईं। बेटे को तो सब खूब खिलाते, सारा दिन घर का कोई न कोई सदस्य बेटे को गोद में उठाए फिरता, पर काम सारा स्नेहा के जिम्मे था। स्नेहा जरा इसके कपड़े बदल दो, दूध का टाइम हो गया है, दूध पिला दो, लगता है नींद आ रही है, सुला दो। वो नींद में ही उसके पास आता। कभी कभी स्नेहा को लगने लगता कहीं बड़ा होकर ये ना सोचे माँ सिर्फ काम के लिए ही होती है और बाकी सब लोग साथ खेलने को। मितभाषी पति भी बेटे के साथ खूब खेलते। एक दिन ट्रैम खरीद कर ले आए, वो बहुत खुश हुई। अब ट्रैम में बेटे को लेटा दोनों पति पत्नी पार्क में उसे घुमाने के लिए ले जाया करेंगे। लेकिन दूसरे दिन ही पति ने ऑफिस से आते ही जल्दी से कपड़े बदले और बोले, इसे तैयार कर दो, जरा मैं घुमा कर ले आता हूँ। वो मन महसूस कर रह गई, हाँ उसे तो किचन देखना है, वो कैसे जा सकती है। जब देवर की भी शादी तय हो गई तो सबसे ज्यादा खुशी स्नेहा को ही। अब उसे एक सहेली मिल जाएगी, वो भी तो दूसरे घर से आएगी, यहाँ के तौर तरीके से अनभिज्ञ। तय कर लिया स्नेहा ने, उसे वो कभी अकेलापन नहीं महसूस होने देगी। पर स्नेहा ने पाया देवरानी ने तो इस घर में घुलने मिलने की कोई कोशिश ही नहीं की। पहले दिन ही इतनी देर तक सोती रही कि सासू जी को उसे जगाने के लिए ननद को भेजना पड़ा। और जब देवरानी से नहा धोकर नाश्ते के लिए बाहर आने के लिए कहा गया तो उसने कह दिया, अभी तो तैयार होने में बहुत समय लगेगा, दोनों जन का नाश्ता कमरे में ही भिजवा दी जाए। ननद पैर पटकती हुई अपने कमरे में चली गई। मेरे हाथों नाश्ता भिजवाने की तो सोचना भी मत। सासू जी ने असहाय हो स्नेहा की तरफ देखा तो वो भागकर कामवाली को बुला लाई। शुक्र है स्नेहा ने उसे अतिरिक्त पैसे का वायदा कर दिन भर के लिए रोक लिया था, वरना स्नेहा को ही देवर देवरानी की सेवा में हाजिर होना पड़ता। देवरानी ने बाद में भी कभी जल्दी उठने की कोशिश नहीं की, बल्कि स्नेहा से ही कहती, आप कैसे इतनी जल्दी उठ जाती हैं, मेरी तो आंख ही नहीं खुलती। क्या बताए स्नेहा, मायके में वो भी तो देर तक सोया करती थी। देवर के ऑफिस जाने के बाद ही देवरानी नहा धोकर बाहर आती, सासू माँ को कुछ टोकने का मौका ही नहीं मिलता, और तब तक किचन का सारा काम सिमट गया होता। थोड़ी देर इधर उधर घूम फिर वो अपने कमरे में चली जाती, अपने कपड़े जेवर चूड़ियां संभालती रहती, कमरे को सजाती रहती। सास नंदे भी तारीफ करती, कितने सुंदर ढंग से सजाकर अपना कमरा रखती है। स्नेहा इशारा समझ जाती पर कह नहीं पाती, मैं तो सारा घर ही संभालती रहती हूँ, अपने कमरे की बारी ही नहीं आती। देवरानी दिन में सो जाती और सोकर उठते ही तैयार होना शुरू कर देती। देवर ऑफिस से आ बमुश्किल चाय पीते और पत्नी श्री को लेकर घूमने निकल जाते। सास भी स्नेह से निहारते हुए कहती, एकदम राम सीता सी जोड़ी है, दोनों के ही एक से शौक, नीले घूमने फिरने का शौकीन, बहू भी वैसी ही मिली है। निशान तो अपने भोले राम है, उसे कभी भी घूमने फिरने का शौक नहीं रहा। उनके लाड़ले के कोई शौक ना होने की वजह से स्नेहा कितनी घुटती रही इस पर किसी का ध्यान नहीं जाता।

देवरानी किसी दिन घूमने नहीं जाती और किचन में आ कभी सब्जी बना देती तो पूरे घर में शोर हो जाता। खाने के टेबल पर सासू जी इंगित करती, आज तो सब्जी छोटी बहू ने बनाई है। और हमेशा मौन रहकर खाना खाने वाले ससुर जी भी बोल पड़ते, अच्छा थोड़ी और तो बहुत बढ़िया बनी है। पतिदेव को लगता उन्हें भी हाँ में हाँ मिलानी चाहिए, वे भी स्वाद लेते हुए बोलते, सचमुच बहुत बढ़िया बनी है। देवर इस प्रशंसा पर ऐसे फूलते जैसे उनकी ही तारीफ हो रही हो। आज सिंहा बेटे को थपकते थपकते खुद भी लेट गई थी, पर नींद आंखों से कोसों दूर थी। शारीरिक थकान से ज्यादा मानसिक थकान थी शायद। वह अपने दिन याद कर रही थी जब नई नई इस घर में आई थी, सबके आसपास मंडराती रहती पर कोई नोटिस भी नहीं लेता, बल्कि अक्सर उपेक्षा ही झेलनी पड़ती। और आज यही देवरानी अपने कमरे में ही बनी रहती है तो पति ससुर सब पूछ लेते हैं, अंकिता नहीं दिख रही, उसकी तबीयत तो ठीक है? स्नेहा से तो किसी ने नहीं पूछा कभी, पर उसने कभी पूछने का मौका भी तो नहीं दिया। बुखार में भी गोलियां लेकर काम में लगी रहती, क्या ये ठीक किया उसने? मायके में किसी ने उसे कभी सामने बिठाकर नहीं समझाया, पर उम्र की सीढ़ियां पार करते हुए कहानियों में, धर्म ग्रंथों में पढ़कर, फिल्मों में देखकर, अपनी दादी नानी बुआ मौसी माँ को देखकर यह एहसास अपने आप मन में घर करता गया कि लड़की को त्याग करना चाहिए, अपनी इच्छा के ऊपर दूसरों की इच्छा सर्वोपरि रखनी चाहिए, सबको खुश रखना चाहिए, सारा दुख हंसते हंसते सह जाना चाहिए, ससुराल के नियम कायदे बिना ना नुकुर के अपना लेने चाहिए। और स्नेहा ने इन सब में कुछ ज्यादा ही बहादुरी दिखाई, खुद आगे बढ़कर सारे काम अपने ऊपर ले लिए। और अब 2 साल में तो ससुर जी की दवाई, सासू जी की धूप अगरबत्ती, देवर की जीन्स, पति की तो कोई भी चीज अगर ना मिले तो सब एक ही पुकार लगाते, और वो भी दौड़ दौड़ कर सबकी जरूरतें पूरी करती रहती। पर इन सब में इसकी स्थिति इस अदृश्य हवा की तरह हो गई जिसके बिना कोई जी नहीं सकता। सबको उसकी जरूरत है पर हवा दिखाई नहीं देती, हवा के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं महसूस होती, उसका ख्याल रखने की जरूरत नहीं पड़ती, ना ही उसकी अहमियत समझ में आती है, क्योंकि वो तो हमेशा अपने आसपास बनी हुई है। खुद को मिटाकर वह उस घर में इस तरह घुल मिल गई है कि उसका कोई अस्तित्व ही नहीं बचा। आज जब अंकिता अलग थलग बनी हुई है तो सब उसका अस्तित्व महसूस तो कर रहे हैं, क्या जबकि यही रीत है? सामने झुके लोगों की ही उपेक्षा की जाती है, और अगर कोई आपकी ही उपेक्षा करने लगे तब जाकर उसका अस्तित्व महसूस होता है।

अचानक घड़ी पर जो नजर गई तो देखा 5 बज गए हैं। एकदम से हड़बड़ा कर उठ बैठी। अभी तो पानी आने वाला होगा, सब जगह उसे पानी स्टोर करना है। घर में आते ही उसने ये काम सासू जी से अपने हाथों में ले लिया था। दौड़ दौड़ कर किचन, बाथरूम सब जगह पानी भरती, और ये जिम्मेवारी पूरी तरह उसी पर आ पड़ी। ननद और सासू दोनों अपने अपने कमरे में आराम करती रहती और पानी आने के समय का ख्याल स्नेहा को ही रखना पड़ता। स्नेहा सोचती, चलो सासू जी ने तो इतने वर्षों तक ये सब किया है, ननद तो छोटी है, कॉलेज से थकी हुई आई है, ये सारे काम स्नेहा को ही करने चाहिए। पर अब तो घर में देवरानी भी है, वो भी कर सकती है। और स्नेहा दोबारा लेट गई। जाने दो, आज देखती है पानी भरने कोई और उठता है या नहीं। अगर कोई पानी नहीं भरता तो होने दो थोड़ी मुश्किल, कह देगी उसकी आंख लग गई, आखिर वो भी इंसान ही है, कोई मशीन नहीं। स्नेहा ने तय कर लिया, आहान को तैयार कर पति के आने से पहले ही पार्क में ले जाएगी, कह देगी रो रहा था, बहलाने को ले गई। जब पति को नहीं महसूस होता कि ऑफिस से आकर कुछ समय पत्नी के साथ बिताएं, तो वो ही क्यों पानी का ग्लास और चाय का कप पकड़ाने का इंतजार करती रहे। खुद से लेकर पानी पी सकते हैं, बहन, माँ, अंकिता कोई भी चाय बनाकर दे सकती है, चाहे तो बाद में पार्क में आ सकते हैं, और ना तो ना सही। अब स्नेहा को थोड़ा समय खुद के लिए भी निकालना ही होगा, वरना उसका वजूद ही मिटता जा रहा है, वो सिर्फ किसी की बेटी, बहू, माँ बनकर ही रह जाएगी। आखिर कब तक, आखिर कब तक वह दूसरों की चाकरी करती रहेगी। उसे अपने लिए जीना भी सीखना होगा। जब किसी को उसकी परवाह नहीं तो उसे ही स्वयं के लिए सोचना होगा। वो यूं अपना वजूद नहीं मिटने दे सकती। आहान थोड़ा बड़ा हो जाए फिर वो किसी स्कूल में टीचर बन जाएगी। यह फैसला करते ही उसका मन एकदम हल्का हो आया और सालों बाद भूला हुआ सा पसंदीदा गीत होठों पर आ गया, गुनगुना उठी।

आखिर कब तक, रश्मि वर्मा उर्फ रश्मि रविजा की लिखी कहानी आप सुन रहे थे। प्रस्तुति सहायक आकांक्षा सिंह, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।

0: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गडले
0: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी हुई थी।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी न कोई संदेह।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम चित्रपट संगीत।

0: सलामे इश्क ये गीत अभी आपने सुना मुकद्दर का सिकंदर फिल्म से। आवाजें थीं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की, अनजान की भूल। संगीत था कल्याण जी आनंद जी का।
1: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्प्रेरी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
2: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
1: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने। उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया।
2: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
1: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा
2: जी।
1: तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
2: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे।
1: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
2: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रपट संगीत। अगला गीत किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में आपको सुनवा रहे हैं अभी तो जीले इस फिल्म से। इंदिवर की बोल है, सपन जगमोहन का संगीत।

0: जगजीत सिंह की आवाज में अभी आपने सुना ये गीत फिल्म अर्थ से कैफी आजमी का लिखा गीत था कुलदीप सिंह का संगीत।
1: टेलीविजन के जाने माने नाम जिनके लिए अभिनय एक काम नहीं समर्पण है।
2: जब मैं तैयारी करना शुरू करता हूँ वहीं से मेरे अंदर एक नया इंसान जन्म लेता है, वो एक एक्टर विनीत रैना है। जैसे ही वो मेकअप अपने ऊपर चढ़ाता है तो वो किरदार बन जाता है जो आज पूरा दिन उसको प्ले करना है। उसका विनीत रैना से कोई लेना देना नहीं।
1: कभी चॉकलेटी हीरो, कभी खूंखार विलेन, तो कभी परम दिव्य साई।
2: साई बाबा तक पहुंचना मेरे ख्याल से किसी के बस में नहीं है।
1: विविध भारती पर आ रहे हैं अपने अभिनय और जीवन की कहानी लेकर जाने माने अभिनेता विनीत रैना। जरूर सुनिए सेल्यूलॉइड के सितारे मंगलवार 8 सितंबर शाम 4 बजे और 9 सितंबर सुबह 10 बजे देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
3: संगीत सरिता कार्यक्रम में नई श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना। हम

0: आमंत्रित कलाकार हैं
1: गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे।
2: किराना अथवा कैराना सहरानपुर उत्तर प्रदेश कुरुक्षेत्र के पास एक छोटा सा गांव है। इस नाम से घराने को ये नाम भी मिल गया ऐसा कहते हैं।
1: अवश्य सुनिए 1 सितंबर से संगीत सरिता में नई श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना सुबह और शाम 6:45 पर
3: सिर्फ विविध भारती पर।
4: विविध भारती पर इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रपट संगीत। अगला गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं स्वयंवर फिल्म से। मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजें, गुलजार के बोल, राजेश रोशन का संगीत।

0: सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गडले
0: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी न कोई संदेह।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
6: नसीब इंसान का।
5: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: विविध भारती पर इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रपट संगीत। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं फिल्म आशा से, लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी और साथियों के स्वरों में। आनंद बख्शी ने इस गीत के बोल लिखे हैं और तर्ज बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: at Vigyan Bhavan, New Delhi. Our commentators are Shoaib Yar Khan in Hindi and Kaushik Roy in English.
1: ये आकाशवाणी है। अब हम आपको सुनवाते हैं नई दिल्ली के विज्ञान भवन से शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की गरिमामय उपस्थिति में आयोजित राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार समारोह का सजीव विवरण। विवरण दे रहे हैं शोएश यार खान हिंदी में और कौशिक रॉय अंग्रेजी में। आइए विज्ञान भवन चलें।
2: सभी श्रोताओं को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं हूं शोएश यार खान और अंग्रेजी में आंखों देखा हाल सुनाने के लिए मेरे साथ हैं कौशिक रॉय। आकाशवाणी के इस सीधे प्रसारण में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम देश की राजधानी नई दिल्ली के विज्ञान भवन के भव्य प्लेनरी हॉल से आपके साथ सीधे जुड़े हुए हैं। अवसर है शिक्षक दिवस का और समारोह है राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 का। ये वो अवसर है जब राष्ट्र उन शिक्षकों को सम्मानित करता है जिन्होंने अपने ज्ञान, समर्पण, नवाचार और सेवाभाव से विद्यार्थियों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाया है। आज भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू देश के 48 उत्कृष्ट स्कूली शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस गरिमापूर्ण समारोह का आयोजन भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय एवं कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। इस समय विज्ञान भवन का प्लेनरी हॉल देश के अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आए शिक्षकों की उपस्थिति से विशेष रूप से गौरवपूर्ण दिखाई दे रहा है। इन शिक्षकों के चेहरों पर उत्साह है, गर्व है, वर्षों की मेहनत के बाद मिले इस राष्ट्रीय सम्मान की खुशी है। आज यहाँ उपस्थित प्रत्येक शिक्षक अपने साथ अपने विद्यालय की एक कहानी लेकर आया है। किसी के साथ ग्रामीण भारत की कहानी है, किसी के साथ दूर दराज के क्षेत्र में शिक्षा की अलख जगाने की कहानी है, किसी ने विद्यार्थियों में वैज्ञानिक सोच विकसित की है तो किसी ने तकनीक और नवाचार के माध्यम से शिक्षा को नई दिशा दी है। आज इन सब प्रयासों को राष्ट्र की ओर से सम्मान मिलने जा रहा है। कौशिक।
3: गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। दिस एंशियंट मंत्र कैप्चर्ड द रिवरेंस दैट इंडिया हैज फॉर इट्स टीचर्स ऑन द ओकेजन ऑफ नेशनल टीचर्स डे। From the family of Akashvani and Prasar Bharati, we convey our best wishes to all the teachers of the country who are the builders of Viksit Bharat 2047. And as my colleague Shoaib Yar Khan mentioned that today we have 48 teachers who excel in their fields and who are building the next generation of India, the leaders of India's tomorrow, who will be guiding us towards Viksit Bharat at 2047. These teachers, as Shwez mentioned, come from far and distant places of India, but every one of them carry a success story. And it is indeed a great moment for all these teachers who will be receiving the National Teachers Award from the Andhra

0: Honorable Rashtrapati ji in just a short while from now, what a pride moment it is indeed for them. And yesterday, the Honorable Prime Minister also interacted with the teachers, and he also took feedback from them about how today's children, especially in schools, are performing. And he also told them to pay attention to those students who spend more time on the screen. So screen time has to be reduced, and this has to be channelized towards sports or other skilling activities. And as we know that Teachers' Day is celebrated on the 5th of September, which happens to be the birth anniversary of India's second president, the philosopher president of India, Dr. Sarvepalli Radhakrishnan, who was the president of India from 1962 to 1967. Dr. Radhakrishnan was an academic of repute, a philosopher, and he was also a statesman. Dr. Radhakrishnan was born on the 5th of September 1888 at Tiruthani of North Arcot district in erstwhile Madras Presidency. His family hailed from Sarvepalli village in Nellore district of Andhra Pradesh, and he spent his early years in Tiruthani and Tirupati. Dr. Radhakrishnan was awarded scholarships throughout his academic life and joined the Voorhees College in Vellore for his high school education. And he graduated from the Madras University at the age of 16. Dr. Radhakrishnan studied philosophy, and he wished to study mathematics also. Dr. Sarvepalli Radhakrishnan wrote his bachelor's degree thesis on the ethics of the Vedanta and its metaphysical presuppositions. Dr. Radhakrishnan became president of India. Some of his erstwhile students and friends requested him to allow them to celebrate his birthday. But he replied, "Instead of celebrating my birthday, it would be my proud privilege if 5th of September is observed as Teachers' Day." Thus, his birthday has since been celebrated as Teachers' Day in India. And the Honorable Rashtrapati ji, Srimati Draupadi Murmu, will arrive at the plenary hall of Vigyan Bhavan in just a short while from now.
1: Mananiya Rashtrapati Srimati Draupadi Murmu, thodi hi der mein Vigyan Bhavan mein 48 iskuli shikshakon ko Rashtriya Shikshak Puraskar pradan karenge. Is karyakram mein pratyek puraskar vijeta ke dwara kiye gaye anukaraniya karyo ko darshane wale लघु वृत्तचित्रों को भी प्रदर्शित किया जाएगा। श्रोताओं, 5 सितंबर भारत के लिए केवल एक तारीख नहीं, ये दिन है देश के महान दार्शनिक, शिक्षाविद और भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती का। इसी कारण भारत में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। डॉक्टर राधाकृष्णन का जीवन इस बात का उदाहरण था कि शिक्षा केवल रोजगार प्राप्त करने का माध्यम नहीं है, शिक्षा व्यक्ति के विचारों को विकसित करती है, उसके चरित्र का निर्माण करती है और उसे समाज और राष्ट्र के प्रति जिम्मेदार नागरिक बनाती है। इसीलिए शिक्षक का स्थान केवल कक्षा तक सीमित नहीं है, शिक्षक भविष्य का निर्माण करता है। श्रोताओं, एक सुंदर विचार है, शिक्षक वो नहीं जो केवल पाठ पढ़ाए, शिक्षक वो है जो जीवन पढ़ना सिखाए। और वास्तव में एक शिक्षक विद्यार्थी को केवल ये नहीं बताता कि क्या पढ़ना है, वो उसे ये भी सिखाता है क्या सोचना है, कैसा सोचना है और सही तथा गलत में अंतर कैसे करना है। यही शिक्षा की वास्तविक शक्ति है। श्रोताओं, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार देश के उत्कृष्ट स्कूली शिक्षकों के योगदान को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान देने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। भारत सरकार के राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार पोर्टल के माध्यम से इन पुरस्कारों का उद्देश्य उन उत्कृष्ट शिक्षकों के योगदान को सम्मानित करना है जिन्होंने अपने समर्पण से विद्यार्थियों के जीवन को समृद्ध किया है और स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार किया है। इस वर्ष 48 शिक्षकों का चयन किया गया है, इनमें 26 पुरुष और 22 महिला शिक्षक हैं। ये शिक्षक 27 राज्यों, 7 केंद्र शासित प्रदेशों और 6 केंद्रीय सरकारी संगठनों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनका चयन राज्य, जिला, राष्ट्रीय स्तर की 3 स्तरीय प्रक्रिया के माध्यम से किया गया।

0: किया है। श्रोताओं, विज्ञान भवन का यह ऐतिहासिक सभागार उत्सुकता से माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की प्रतीक्षा कर रहा है और मैं देख रहा हूँ कि शिक्षा मंत्री श्री प्रहलाद जोशी जी इस वक्त सभागार में पधार चुके हैं। उनके साथ शिक्षा राज्य मंत्री श्री जयंत चौधरी जी भी हैं। माननीय राष्ट्रपति के आगमन की सुगबुगाहट यहाँ पर अब बढ़ गई है, लोगों में उत्साह बढ़ गया है, कौतूहल बढ़ गया है और इस वक्त सबकी निगाहें हैं उस द्वार की तरफ जहाँ से माननीय राष्ट्रपति कुछ ही क्षणों में प्रवेश करेंगी और ये 2026 के राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार प्रदान करेंगी।
1: And on the dais, we can see that the Minister for Education, Shri Prahlad Joshi, the Minister for Skill Development and Entrepreneurship, Independent Charge, and Minister of State for Education, Shri Jayant Chaudhary, Dr. Sukanta Majumdar, Honorable Minister of State for Education, and the Honorable President of India, Srimati Draupadi Murmu, has arrived at the plenary hall of the Vigyan Bhavan. And she is being loudly cheered by all the awardees and the delegates who are present at the plenary hall.
0: यह अत्यंत गर्मी में दृश्य है। भारत के राष्ट्रपति इस वक्त और

0: राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान के साथ ही इस समारोह का विधिवत शुभारंभ हो चुका है। माननीय राष्ट्रपति अपना स्थान ग्रहण करते हुए।
1: महोदय, आपकी अनुमति हो तो समारोह का शुभारंभ किया जाए।
0: और अब माननीय राष्ट्रपति से विधिवत अनुमति लेकर इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया जा रहा है।
2: गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः।
0: देश के अलग अलग हिस्सों से आए शिक्षक राष्ट्रपति के समक्ष उपस्थित हैं और पूरे सभागार में सम्मान और उत्साह का वातावरण दिखाई दे रहा है। सभागार में उपस्थित गणमान्य अतिथि और शिक्षकगण राष्ट्रपति का अभिवादन कर रहे हैं। सबकी निगाहें इस वक्त मंच की तरफ हैं और मंच पर आसीन है माननीय राष्ट्रपति के साथ केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री प्रहलाद जोशी, शिक्षा राज्य मंत्री

0: के सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप में। इसके अलावा मिस दीप्ति गौड़ मुखर्जी जो कि हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की सेक्रेटरी हैं, और श्री टी के अनिल कुमार सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन।
1: एंड नाउ शॉर्ट फिल्म ऑन द फर्स्ट लॉट ऑफ 24 नेशनल टीचर अवार्डी।
2: विज्ञान शिक्षा को नई दिशा दी, उन्होंने वर्चुअल बायोलॉजी लेबोरेटरी, एआई इनेबल्ड बायोलॉजी एजुकेशन और क्यूआर आधारित ट्री टॉक जैसे नवाचारों से उन्नत स्टेम अधिगम को सुलभ बनाया, जिसके लिए डॉक्टर दिव्येंदु सेन को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
3: सुश्री अमुथा जेनी 22 वर्षों की सेवा में फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी FLN समावेशी एवं आनंदमय शिक्षा तथा युवा नेतृत्व के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया। कम लागत वाली शिक्षण सामग्री एवं KVS फोनिक्स वर्कबुक विकसित किए। उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए सुश्री अमुथा जे को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
2: पंजाब के पटियाला स्थित राजकीय विक्टोरिया गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में श्री दिनेश कुमार ने करीब 25 वर्षों से विज्ञान शिक्षा को समृद्ध बनाने में योगदान दिया है। उन्हें पंजाब स्टेट अवार्ड 2020 और टीचर ऑफ द ईयर ऑफ पंजाब अवार्ड 2022 से भी सम्मानित किया गया। विज्ञान शिक्षा में अपने समर्पित योगदान के लिए श्री दिनेश कुमार को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
3: सिक्किम की खूबसूरत पहाड़ियों में पीएम श्री गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल डिकलिंग में सुश्री सुषमा तमांग ने दूर दराज के विद्यार्थियों की प्रतिभा को पहचान कर उन्हें इंस्पायर मानक इंटरनेशनल YRE कंपटीशन और एशियाई सम्मेलनों में सफलता के लिए तैयार किया, जिसके लिए सुश्री सुषमा तमांग को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। झारखंड के बरमसिया स्थित मिडिल स्कूल बरमसिया में सुश्री मुनमुन भट्टाचार्य जी ने कोयला खनन क्षेत्र के वंचित बच्चों के लिए कम लागत वाली फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी सामग्री, आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग और व्यवसायिक कौशल के अवसरों से बच्चों की सीखने की चुनौतियों को कम किया, जिसके लिए सुश्री मुनमुन भट्टाचार्य जी को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। पश्चिम बंगाल के झाड़ग्राम जिले के नया ग्राम स्थित गवर्नमेंट मॉडल स्कूल में श्री शांतनु पात्र ने वंचित आदिवासी विद्यार्थियों के लिए समावेशी, तकनीक सक्षम एवं अनुभवात्मक शिक्षा को नई दिशा दी। उन्होंने ARVR ब्लेंडेड लर्निंग, यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग का प्रभावी उपयोग किया। उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए श्री शांतनु पात्रा को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
2: चंडीगढ़ के मलोया कॉलोनी स्थित राजकीय मॉडल हाई स्कूल में श्री रवि जायसवाल ने विज्ञान शिक्षण को नवाचार, तकनीक और अनुभवात्मक अधिगम से समृद्ध किया। उन्होंने कम लागत में सीवी रमन डोम थिएटर, मोबाइल साइंस लैब तथा पुनर्चक्रित सामग्री से साइंस एंड नॉलेज पार्क विकसित किया। उनके तकनीक सक्षम एवं नवाचारी योगदान के लिए उन्हें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। सरकारी स्कूलों को बेहतर बनाने और बच्चों के लिए सीखने के नए अवसर तैयार करने में सुश्री लालनुन मावी ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मिजोरम के लंगले स्थित गवर्नमेंट इलेक्ट्रिक वेंग हाई स्कूल में उन्होंने इंटरैक्टिव ICT टूल्स और फ्री रेमिडियल कोचिंग के जरिए विद्यार्थियों की सीखने की क्षमता को मजबूत किया। सार्वजनिक शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने और विद्यार्थियों को आगे बढ़ने के अवसर देने के लिए सुश्री लालनुन मावी को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। सुश्री सुनीता यादव ने छत्तीसगढ़ के खिचड़ी स्थित शासकीय माध्यमिक विद्यालय में प्रोजेक्टर, लैपटॉप, टैबलेट और मोबाइल ICT उपकरणों से स्मार्ट क्लासरूम तैयार किया। न्योता भोजन और घर घर पुस्तक वाचन जैसे प्रयासों से सुघर पढ़ैया प्लेटफॉर्म ग्रेड प्राप्त किया। ग्रामीण शिक्षा को नवाचार से सशक्त बनाने के लिए सुश्री सुनीता यादव को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
3: हिमाचल प्रदेश के भालेट स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाचार्य सुश्री मंजरी वी महाजन ने शिक्षण को बढ़ावा देते हुए कचरा प्रबंधन, कंपोस्टिंग, जल संरक्षण और जैव विविधता संरक्षण के क्षेत्र में प्रभावी पहल की। शिक्षा में

0: नवाचार और नेतृत्व के उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए सुश्री मंजरी वी महाजन को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के माया बंदर स्थित पीएम श्री जीएमएसएसएस में श्री जे प्रकाश राव ने बिल्डिंग एज लर्निंग एड अप्रोच के जरिए स्कूल को ही इंटरैक्टिव रिसोर्सेज में बदला। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, डिजिटल रिसोर्सेज, 21st सेंचुरी स्किल्स को मजबूत किया, जिसके लिए श्री जे प्रकाश राव को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
1: सुश्री कुंदा जयवंत बच्छाव ने नगर निगम विद्यालय को ARVR रोबोटिक्स असिस्टिव टेक्नोलॉजी एवं QR आधारित संसाधनों से युक्त आधुनिक शिक्षण केंद्र में परिवर्तित किया। उनके एजुकेशनल पेरेंटिंग अभियान से 150 से अधिक वंचित बालिकाओं को आर्थिक सहयोग मिला। समावेशी नवाचार, बालिका सशक्तिकरण, उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए सुश्री कुंदा जयवंत बच्छाव को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
0: बिहार के विदायदिश स्थित उर्दू प्राइमरी स्कूल में सुश्री खुशबू कुमारी ने एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, कम लागत वाली शिक्षण सामग्री और इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा को सरल, सहज और प्रभावी बनाया। सुश्री खुशबू कुमारी को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
1: मध्य प्रदेश के भोपाल स्थित PHEL के शासकीय महात्मा गांधी सांदीपनी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में डॉक्टर अर्चना शुक्ला ने 15 वर्षों में विज्ञान को प्रयोग, पर्यावरण और खोज से जोड़ा। उन्होंने 1000 से अधिक गौरैया घर, 102 प्रजातियों के पेड़ों का डिजिटल मानचित्रण और प्लांट इमोशन जैसे नवाचार किए, जिसके लिए डॉक्टर अर्चना शुक्ला को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
0: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद स्थित राजकीय बालिका इंटर कॉलेज विजयनगर में डॉक्टर रेणु त्रिपाठी ने 60 गांव के ड्रॉप आउट और स्कूल से बाहर बच्चों को दोबारा शिक्षा से जोड़ते हुए उन्होंने स्टेम, अटल टिंकरिंग लैब और कम लागत वाली शिक्षण सामग्री के माध्यम से समस्या समाधान को बढ़ावा दिया, जिसके लिए डॉक्टर रेणु त्रिपाठी को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। सुश्री भवानी बोमपेली ने नवाचारी शिक्षण के माध्यम से प्री प्राइमरी शिक्षा का विस्तार कर खेल आधारित एवं डिजिटल अधिगम वातावरण विकसित किया तथा कंक्रीट पिक्टोरियल एब्स्ट्रैक्ट पद्धति और कम लागत वाली शिक्षण सामग्री से गणित एवं भाषा सीखने को सरल बनाया। उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए सुश्री भवानी बोमपेली को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
1: सुश्री सुमन गोयल ने दिल्ली के पोर्ट कला स्थित राजकीय सर्वोदय कन्या विद्यालय में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुरूप इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, डिजिटल टूल्स और स्वयं निर्मित कम लागत वाली टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स के माध्यम से सीखने को रोचक और अनुभवात्मक बनाया। बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ा, विद्यालय में स्थिरता और शैक्षणिक प्रगति बढ़ी, जिसके लिए सुश्री सुमन गोयल को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। ओडिशा के अली पिंगल स्थित राजकीय उच्च विद्यालय में श्री पदराज उमाकांत नायक के मार्गदर्शन में 50 से अधिक प्रोटोटाइप विकसित हुए, जिनमें कम लागत वाली ऑटोमेटिक प्लेट वॉशिंग मशीन भी शामिल है, जिसके लिए एक विद्यार्थी को भारत सरकार का पेटेंट मिला। वैज्ञानिक सोच, नवाचार और सामुदायिक भागीदारी से ग्रामीण शिक्षा को सशक्त बनाने के लिए श्री पदराज उमाकांत नायक को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
0: श्री एस गणेशन भौतिकी शिक्षक ने साइंस थिएटर, अनुभवात्मक स्टेम एवं AI सक्षम शिक्षण के माध्यम से विज्ञान शिक्षा में उल्लेखनीय नवाचार किया। उनके साइंस थिएटर इंटीग्रेशन मॉडल ने नाटक, कहानी एवं प्रदर्शन के माध्यम से जटिल वैज्ञानिक अवधारणाओं को सरल और रोचक बनाया, जिसके लिए श्री एस गणेशन को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। गोवा के एक्सएम स्थित गुजराती समाज स्पेशल स्कूल में श्री महादेव हनुमंत शिंदे ने विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए समावेशी शिक्षण को नई दिशा दी। उन्होंने 14 गतिविधि आधारित स्रोत पुस्तिकाएं तथा टैबलेट आधारित डिजिटल संसाधन विकसित किए। उनके प्रशिक्षित खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंधारत का गौरव बढ़ाया है। श्री महादेव हनुमंत शिंदे को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
1: मणिपुर के कोंगबा माखा स्थित लाइको अपर प्राइमरी स्कूल में श्री वांगलिम्बम गोविंद सिंह ने एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, कहानी और फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी के माध्यम से बच्चों की सीखने की क्षमता और भागीदारी को मजबूत किया, जिसके लिए श्री वांगलिम्बम गोविंद सिंह को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
0: महाराष्ट्र के सतारा स्थित सैनिक स्कूल में श्री शिव प्रसाद अरविंद तिंगारे ने हैंड्स ऑन साइंस एजुकेशन, लो कॉस्ट लर्निंग टूल और इंटरैक्टिव डिजिटल लर्निंग को बढ़ावा दिया है। उनके विद्यार्थियों ने CSIR इनोवेशन अवार्ड और DSC साकुरा साइंस जैसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवसर हासिल किए। श्री शिव प्रसाद अरविंद तिंगारे को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। मध्य प्रदेश के ईदगाह स्थित सेंट जोसेफ कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में सुश्री संगीता यादव ने गणितोत्सव, क्वेस्ट फॉर मैथमेटिक्स, मैथ ई माइंड एंड मैथमेटिक्स जैसी पहलों के जरिए गणित को बनाया रचनात्मक और विद्यार्थियों में समस्या समाधान की क्षमता विकसित की, जिसके लिए सुश्री संगीता यादव को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। ओडिशा के मयूरभंज जिले के करंजिया स्थित EMRS में मोहम्मद जफर आलम ने आदिवासी बच्चों की शिक्षा में आधुनिक तकनीक, खेल और अनुभवात्मक शिक्षण के साथ आदिवासी संस्कृति और विरासत को भी शिक्षा का हिस्सा बनाए रखा, जिसके लिए मोहम्मद जफर आलम को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
2: और अब हमारी विनती है माननीय राष्ट्रपति महोदय आपसे कि कृपया ये पुरस्कार अपने कार्यक्रम के द्वारा प्रदान करें। इंडिया
3: श्रीमती द्रौपदी मुर्मू विल कन्फर द नेशनल टीचर्स अवार्ड्स 2026 ऑन 24 ऑफ द टीचर्स ऑन whom a telefilm was played at Vigyan Bhavan, and we can see that the Honorable Rashtrapati ji, the Union Minister for Education, Sri Prahlad Joshi, and the Union Ministers of State for Education, Sri Jayant Chaudhary, and Dr. Sukanta Majumdar, and other dignitaries are on the dais. And now the first teacher to receive the award is Sri Divyendu Sen from Rajasthan's Mahatma Gandhi Government School, Pachpahar.
4: And now he has come, which was waiting for all. The National Shikshak Puraskar 2026 ka पुरस्कार वितरण शुरू हो चुका है।
5: दिनेश कुमार पंजाब,
4: पुरस्कार विजेताओं के नाम पुकारे जा रहे हैं।
3: नाउ श्री दिनेश कुमार फ्रॉम पंजाब विल रिसीव द नेशनल टीचर्स अवार्ड 2026 फ्रॉम द ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया।
5: सुषमा तमांग सिक्किम।
4: मंच पर राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा शिक्षकों को सम्मानित किया जा रहा है। एक एक करके सब शिक्षक
3: सुषमा तमांग
4: पुकारा जा रहा है।
5: मुनमुन भट्टाचार्य जी झारखंड।
3: Munmun Bhattacharya, a teacher from Jharkhand, a really proud moment for these nation builders of India to receive the National Teachers Award 2026.
5: Shantanu Patra, West Bengal.
4: और अब पश्चिम बंगाल के शांतनु जी को ये शिक्षक पुरस्कार दिया जा रहा है। 48 शिक्षकों को आज सम्मानित किया जा रहा है।
5: रवि जायसवाल चंडीगढ़।
4: और अब चंडीगढ़ के रवि जायसवाल माननीय राष्ट्रपति से सम्मान ग्रहण करते हुए।
5: लनुन मोई मिजोरम।
3: फ्रॉम मिजोरम मिस लनुन मावी, एंड व्हाट अ प्राउड मोमेंट इट इज इंडीड फॉर दीज टीचर्स टू रिसीव द नेशनल टीचर्स अवार्ड।
5: सुनीता यादव छत्तीसगढ़।
3: राष्ट्रपति जी एंड सुनीता यादव जी फ्रॉम छत्तीसगढ़ विल बी रिसीविंग द नेशनल टीचर्स अवार्ड 2026 फ्रॉम द ऑनरेबल राष्ट्रपति जी।
5: मंजरी वी महाजन हिमाचल प्रदेश।
4: और अब हिमाचल प्रदेश की मंजरी जी महाजन माननीय राष्ट्रपति के समक्ष अपना पुरस्कार लेने के लिए बड़े उत्साह और गर्व के साथ आगे बढ़ती हुई। माननीय राष्ट्रपति
5: जय प्रकाश राव, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स।
4: और अब अंडमान निकोबार आइलैंड से आए शिक्षक जो कि दिव्यांग है, वो माननीय राष्ट्रपति की आवाज हल्के हल्के एक छड़ी के सहारे मरते हुए माननीय राष्ट्रपति उन्हें
3: And he is receiving the award. What a proud moment it is indeed for J. Prakash Rao, the teacher from Andaman and Nicobar Islands. And this is indeed a very proud moment for all the teachers who are here at the
5: Kunda Jaivan Bachao, Maharashtra.
3: And Ms. Kunda Jaivan Bachao of Maharashtra is now receiving the National Teachers Award 2026 from the Honorable President of India.
5: खुशबू कुमारी बिहार।
4: और अब बिहार की खुशबू कुमारी माननीय राष्ट्रपति से अपना ये सम्मान ग्रहण करते हुए
5: अर्चना शुक्ला मध्य प्रदेश
4: समारोह के पुरस्कार
3: फ्रॉम मध्य प्रदेश मिस अर्चना शुक्ला एंड शी रिसीव्ड दिस अवार्ड फ्रॉम द ऑनरेबल राष्ट्रपति जी फॉर अ वर्क स्पेशली ऑन इनोवेशन।
5: रेणु त्रिपाठी उत्तर प्रदेश।
3: Ms. Renu Tripathi from Uttar Pradesh is Ghaziabad and she is working for especially school dropouts, STEM and automation among
5: her students. Bhavani Bompelli, Telangana.
3: From Telangana, Ms. Bhavani Bompelli and she focuses on innovation for pre-primary students. What a proud moment it is indeed.
5: Suman Goel, Delhi.
3: To receive the award from the Honorable Rashtrapati Ji and now Ms. Suman Goel from Delhi. And she specializes on ICT and digital skills in education.
5: Umakant Nayak, Orissa.
4: राष्ट्रपति के हाथों सम्मान प्राप्त करते हुए शिक्षकों के चेहरे पर एक प्रसन्नता स्पष्ट दिखाई दे रही है। ये केवल एक पदक या प्रमाण नहीं, ये उनके पूरे जीवन की मेहनत राष्ट्रीय स्तर पर पहचान।
3: From Puducherry, Mr. Ganeshan S. is receiving the National Teachers Award 2026 from the Honorable President of India.
5: Mahadev Hanumant Shinde, Goa.
4: गोवा से महादेव हनुमंत शिंदे माननीय राष्ट्रपति से अपना सम्मान ग्रहण करते हुए
5: वांगलेमबाम गोविंद सिंह मणिपुर
3: एंड फ्रॉम द लैंड ऑफ ज्वेल्स मणिपुर इज वांगलेमबाम गोविंद सिंह
5: शिव प्रसाद अरविंद तिंगारे सैनिक स्कूल
3: फ्रॉम सैनिक स्कूल शिव प्रसाद अरविंद सिंगारे रिसीव्स द नेशनल टीचर्स अवार्ड फ्रॉम द ऑनरेबल
5: संगीता यादव सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन
4: सीबीएसई की संगीता यादव माननीय राष्ट्रपति के आगे उपस्थित होकर अपना सम्मान ग्रहण कर रही
5: है। मोहम्मद जफर आलम एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल
4: और अब श्री जफर आलम अपना पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं ये राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार माननीय
5: कोटि कोटि धन्यवाद माननीय राष्ट्रपति महोदया
3: एंड नाउ द ऑनरेबल President of India, Shrimati Draupadi Murmu, is being escorted to the dais along with the Minister for Education, Shri Prahlad Joshi, and the Ministers of State for Education, Shri Jayant Chaudhary and Dr. Shukanta Majumdar, and the Secretary, Department of School Education and Literacy, the Secretary, Department of Higher Education and the Secretary, Department of Skill Development and Entrepreneurship.
4: 24 शिक्षकों को माननीय राष्ट्रपति के हाथों सम्मानित किया गया और अब माननीय राष्ट्रपति गणमान्य व्यक्तियों के साथ अपना स्थान ग्रहण करते हुए
1: महाराष्ट्र के कैच थारो रोड स्थित
3: निवासी
1: माध्यमिक विद्यालय नरसिंह राव गित्ते को 29 वर्षों से गन्ना श्रमिकों के बच्चों को शिक्षा से जोड़ने का काम किया है। बाल रक्षक और शिक्षण अपल्यादारी जैसे अभियानों से उन्होंने बच्चों तक शिक्षा पहुंचाई। उन्होंने बच्चों को उच्च शिक्षा और बेहतर भविष्य की ओर बढ़ाया, जिसके लिए डॉक्टर कविता नरसिंह राव गित्ते को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। गुजरात के रंगपुर स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय में श्री नितिन कुमार महेंद्र कुमार पाठक ने सीमित संसाधनों वाले आदिवासी विद्यालय को डिजिटल एवं अनुभवात्मक शिक्षा के केंद्र में बदल दिया। उन्होंने 7D VR AR लैब और आर न्यूज जैसी सुविधाएं विकसित की। उनके मार्गदर्शन में विद्यार्थियों ने नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस एवं इसरो प्रशिक्षण में सफलता प्राप्त की। उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
0: लद्दाख के कारगिल स्थित शासकीय मॉडल मिडिल स्कूल में मोहम्मद मुस्तफा कमाल ने सीमित संसाधनों के बीच बच्चों के लिए सामाजिक विज्ञान को अनुभव और स्थानीय जीवन से जोड़कर रोचक बनाया। 1000 से अधिक शिक्षकों को प्रशिक्षित कर संदर्भ आधारित शिक्षा को सशक्त बनाने के लिए मोहम्मद मुस्तफा कमाल को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। केरलम के श्री सुनील कुमार केपी ने नवाचारी एवं आईसीटी सक्षम भाषा शिक्षण के माध्यम से मलयालम भाषा में पठन संचार एवं रचनात्मक अभिव्यक्ति को बढ़ावा दिया। विद्यार्थी मार्गदर्शन एवं समग्र विकास में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए श्री सुनील कुमार केपी को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
1: सुश्री याको तामे ने अरुणाचल प्रदेश के नाहरलागुन स्थित गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल जी सेक्टर में विशेषकर बालिकाओं को विद्यालय से जोड़ा और एक जर्जर विद्यालय को बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, साइंस और मैथमेटिक्स लेबोरेटरीज से सुसज्जित संस्थान में बदला। उनके मार्गदर्शन में विद्यार्थियों ने स्टेट बोर्ड में शीर्ष स्थान हासिल किए, जिसके लिए सुश्री याको तामे को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
0: आंध्र प्रदेश के श्री राजेश कोलुरी ने एआई सक्षम एफएलएन डिजिटल शिक्षा एवं ग्रामीण विद्यार्थियों के मार्गदर्शन में उल्लेखनीय योगदान दिया। राज क्लासरूम के माध्यम से डिजिटल शिक्षण को व्यापक बनाया तथा शिक्षकों की डिजिटल क्षमता वृद्धि में योगदान दिया। श्री राजेश कोलुरी को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
1: श्री गबर सिंह बिष्ट ने उत्तराखंड के मेहरा स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय मुस्या खांद में 35 वर्षों तक ग्रामीण एवं पर्वतीय क्षेत्रों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने में महत्वपूर्ण योगदान दिया तथा दूरदर्शन उत्तराखंड के शैक्षिक मॉड्यूल से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दूर दराज के विद्यार्थियों तक पहुँचाई। उनके नवाचार आईसीटी आधारित शिक्षण एवं समर्पित योगदान के लिए उन्हें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
0: असम के रंगिया स्थित पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय एनएफआर में डॉक्टर मनीषा खेत्रपाल ने समावेशी शिक्षा, बुनियादी साक्षरता और विद्यार्थियों के बेहतर भविष्य के लिए निरंतर काम किया है। मास्टर ट्रेनर के रूप में उन्होंने असम के हजारों शिक्षकों को भी प्रशिक्षित किया, जिसके लिए डॉक्टर मनीषा खेत्रपाल को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
1: पश्चिम बंगाल के बर्दवान जिले के वार्ड नंबर 30 स्थित श्री रामकृष्ण शारदा विद्यापीठ प्राइमरी स्कूल में श्री पलाश चौधरी ने सुबह की भूख के कारण बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो, इसके लिए सो का लोर पुष्टि पहल शुरू की, जिससे बच्चों की उपस्थिति और विद्यालय में नामांकन 3 गुना हुआ। उन्होंने शिक्षा को सामाजिक सशक्तिकरण से जोड़ा, जिसके लिए श्री पलाश चौधरी को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। बिहार के कुचाई कोटे स्थित मिडिल स्कूल कुचाई कोटे कन्या में सुश्री पुष्पा प्रसाद ने कम लागत वाली सामग्री, डिजिटल टूल्स और ग्रुप वर्क के जरिए विद्यार्थियों को सीखने के नए अवसर दिए। उन्होंने ड्रॉप आउट बच्चों को दोबारा शिक्षा से जोड़ा और चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स की भागीदारी बढ़ाई। उन्होंने प्लांटेशन, वाटर सेग्रीगेशन और प्लास्टिक फ्री स्कूल जैसे प्रयासों को भी बढ़ावा दिया। सुश्री पुष्पा प्रसाद को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। 18 वर्षों से शिक्षा के प्रति समर्पित सुश्री पूर्णिमा मोहनलाल पटेल ने दादरा एवं नगर हवेली के दलवाड़ा स्थित गवर्नमेंट हाई स्कूल में विज्ञान परियोजनाओं तथा शिक्षक प्रशिक्षण में योगदान देकर उन्होंने समावेशी शिक्षा, सामुदायिक सहभागिता और विद्यार्थियों के समग्र विकास को सशक्त किया। उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए सुश्री पूर्णिमा मोहनलाल पटेल को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के जगदीशपुर स्थित गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में श्री इफ्तिखार खान ने निशुल्क रविवार कला कक्षाओं के माध्यम से रचनात्मक एवं अनुभवात्मक अधिगम को बढ़ावा दिया। उन्होंने कला के माध्यम से सड़क सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण एवं सामाजिक जागरूकता को भी बढ़ावा दिया। कला शिक्षा, प्रतिभा संवर्धन एवं सामाजिक जागरूकता में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए श्री इफ्तिखार खान को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। कर्नाटक के होनेबेल स्थित गवर्नमेंट हायर प्राइमरी स्कूल समतगरु में सुश्री रत्ना कुमारी एस ने टॉय बेस्ड पेडागॉजी अबैकस मैथमेटिक्स और एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट्स के जरिए सीखने को आनंददायक और समावेशी बनाया। उनके मार्गदर्शन में ग्रामीण विद्यार्थियों ने प्रतिभा करंजी जैसे स्टेट कल्चरल प्लेटफॉर्म्स और इंस्पायर जैसे नेशनल साइंस प्लेटफॉर्म्स पर सफलता हासिल की, जिसके लिए सुश्री रत्ना कुमारी एस को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
0: जम्मू कश्मीर में डलहौरी के HSS डलहौरी में मोहम्मद अयाज रैना ने कंप्यूटर लैब से लेकर स्मार्ट बोर्ड और इंटरैक्टिव ई कंटेंट को शिक्षण का हिस्सा बनाया। शिक्षक विहीन विद्यालयों के विद्यार्थियों को ऑनलाइन बॉटनी शिक्षा की पहुंच सुनिश्चित की। विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के लिए मोहम्मद अयाज रैना को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
1: रोहतक हरियाणा के राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सांखी में श्री अनिल कौशिक ने गणित को रोचक और सभी के लिए सुलभ बनाने के लिए 40 से अधिक शिक्षण मॉडलों से सुसज्जित मैथ्स लैब, इंटरैक्टिव हरबंस पजल और वर्चुअल मैथ्स लैब विकसित की, जिसके लिए श्री अनिल कौशिक को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। त्रिपुरा के साबरूम स्थित पीएम श्री साबरूम गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में श्री रंजन देवनाथ ने स्मार्ट क्लासरूम्स, एक्सपीरियंशियल प्रोजेक्ट्स और इको क्लब एक्टिविटीज के जरिए लर्निंग बाय डूइंग को बढ़ावा दिया। उनके मार्गदर्शन में ग्रामीण आदिवासी छात्राओं ने स्टेट बोर्ड में शीर्ष स्थान और चीफ मिनिस्टर्स एक्सलेंस अवार्ड हासिल किए, जिसके लिए श्री रंजन देवनाथ को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
0: उत्तर प्रदेश के कोयलहा स्थित कंपोजिट स्कूल रसूलाबाद में सुश्री शालिनी कुशवाहा ने कला आधारित गतिविधियों, डिजिटल संसाधनों और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित टूल्स के जरिए पढ़ाई को सहज और आनंदमय बनाया, जिससे विद्यालय को निपुण विद्यालय की पहचान मिली, जिसके लिए सुश्री शालिनी कुशवाहा को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। तमिलनाडु के पुलियमपट्टी स्थित पंचायत यूनियन प्राइमरी स्कूल में श्री थंगाराज एम ने बच्चों के लिए शिक्षा को समावेशी, आनंददायक और उनके जीवन से जुड़ा बनाया है। उन्होंने ग्रामीण स्कूलों में टॉयलेट, स्मार्ट क्लासरूम, इंटरैक्टिव बोर्ड, टॉय लाइब्रेरीज और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने में योगदान दिया, जिसके लिए श्री थंगाराज एम को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। राजस्थान के जयपुर चाकसू स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक बालिका विद्यालय तुमली का बास में डॉक्टर वर्तिका गुलाटी ने मूंगफली से बीज गणित और पतंगों से ज्यामिति समझाने के साथ प्रश्नों से विज्ञान पहल के जरिए रटने की जगह विद्यार्थियों में जिज्ञासा और खोज की भावना विकसित की। डॉक्टर वर्तिका गुलाटी को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
1: श्री आर रोनल्ड मेरो ने नागालैंड के सिक्चू स्थित GHSS सिक्चू सुक्सा में समुदाय संपर्क व्यक्तिगत मार्गदर्शन के जरिए बच्चों को विद्यालय से जोड़े रखा और ड्रॉप आउट कम, ICT आधारित शिक्षण के साथ शैक्षिक भ्रमण, वाद विवाद और सांस्कृतिक गतिविधियों से उन्होंने सीखने को जीवन से जोड़ा। शिक्षा के प्रति उनके समर्पण के लिए श्री आर रोनल्ड मेरो को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। मध्य प्रदेश के सीधी जिले के कंजवार स्थित शासकीय माध्यमिक विद्यालय में श्री शैलेंद्र प्रताप सिंह ने जन भागीदारी एवं समावेशी शिक्षा के माध्यम से विद्यालय को सामुदायिक विकास का केंद्र बनाया। उनके प्रयासों से नामांकन 69 से बढ़कर 202, उपस्थिति 44% से बढ़कर 96% हुई और ड्रॉप आउट समाप्त हुए। उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
0: श्री वैभव वसंतराव कुलकर्णी ने महाराष्ट्र के लातूर स्थित पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय में खिलौनों, कला और वास्तविक जीवन की समस्याओं के माध्यम से जटिल गणितीय अवधारणाओं को सरल और रोचक बनाया। उन्होंने गुणवत्तापूर्ण गणितीय सामग्री देश भर के विद्यार्थियों तक पहुंचाई, जिसके लिए श्री वैभव वसंतराव कुलकर्णी को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
1: असम के जनजातीय क्षेत्र में श्री राजेश बर्दोलोई ने प्रथम पीढ़ी के मिशिंग जनजातीय विद्यार्थियों के लिए गतिविधि आधारित आईसीटी सक्षम एवं बहुभाषी शिक्षण को प्रभावी बनाया। उन्होंने सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों एवं दीक्षा ई कंटेंट के विकास में योगदान दिया। जनजातीय शिक्षा, बहुभाषी शिक्षण, डिजिटल सशक्तिकरण एवं सामाजिक नेतृत्व में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। सुश्री राधा राजेश ने माध्यमिक विज्ञान शिक्षा में नवाचारों एवं एआई सक्षम शिक्षण को प्रभावी बनाया। उन्होंने फील्ड आधारित अधिगम, प्रयोगात्मक गतिविधियों और जैव नैतिक चर्चाओं के माध्यम से जीव विज्ञान को अनुभवात्मक एवं जीवन केंद्रित बनाया। उनके मार्गदर्शन में विद्यार्थियों ने राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया तथा इसरो यूआरएससी नेशनल साइंस डे में 4 बार विजेता रहे। उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
2: और अब हम माननीय राष्ट्रपति महोदया आपसे विनम्र विनती करते हैं कि
6: प्लेनरी हॉल में पुरस्कार प्राप्त करने वाले शिक्षकों के उत्कृष्ट कार्यों पर आधारित लघु वृत्त चित्र दिखाया गया। इन फिल्मों के माध्यम से हम जान पाए कि देश के विभिन्न हिस्सों में शिक्षक किस प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में नए प्रयोग कर रहे हैं, कहीं तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं, कहीं स्थानीय संसाधनों के माध्यम से इस प्रक्रिया को विकसित कर रहे हैं सीखने की, कहीं खेल
3: गतिविधियों को। महाराष्ट्र The first awardee in this session is Kavita Narsingh Rao Gitte from Maharashtra. And what a proud moment it is indeed for this
5: Nitin teacher. Kumar Mahendra Kumar Pathak, Gujarat.
3: From Gujarat, Nitin Kumar Mahendra Kumar Pathak, and he is known for his innovations, 7DBR Labs, ICT and Children's Science Congress, and
5: Mohammed
3: also his
5: Mustafa
3: students
5: Kamal
3: participated Dark. In ISRO competition.
6: Dusre charan mein ab Mananiya Rashtrapati बाकी 24 शिक्षकों को पुरस्कार प्रदान कर रही हैं।
3: मोहम्मद मुस्तफा कमाल ऑफ लद्दाख, हु इज अ सोशल साइंस टीचर एंड ही हैज ट्रेन्ड 1000 टीचर्स, ही इज आल्सो अ मास्टर ट्रेनर। एंड नाउ फ्रॉम केरलम सुनील कुमार केपी, हु इज यूज्ड मलयालम आईसीटी एंड डिजिटल टूल्स। एंड द नेक्स्ट विनर इज फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश, याकुन तामे, who
5: Rajesh
3: has worked
5: Kaluri,
3: for bettering the infrastructure of the school. From Andhra Pradesh, Rajesh Koluri, who has used Raj classrooms and digital ICT tools
5: Gabar
3: for
5: Singh
3: education.
5: Bisht, Uttarakhand.
3: From Uttarakhand, Gabar Singh Bisht, who uses education and also is known for his Doordarshan education
5: Manisha
3: module.
5: Manisha Khetrapal, Kendriya Vidyalaya Sangathan.
3: From Kendriya Vidyalaya Sangathan, Manisha Khetrapal, who is also a master trainer of teachers.
5: Palash Chaudhary, West Bengal.
3: From West Bengal, Palash Chaudhary, and he has worked on education and strengthening society, especially for his
5: Pushpa
3: food
5: Prasad,
3: for education.
5: Bihar.
6: Aur ab Bihar se Pushpa Prasad apna puraskar prapt karne, Maniye Rashtrapati ke samaksh pure utsah.
5: पटेल पूर्णिमा मोहनलाल, दमन एंड दीव, दादर एंड नगर हवेली।
3: दमन दीव दादरा एंड नगर हवेली, पूर्णिमा पटेल रिसीव्स द अवार्ड फ्रॉम द ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया।
5: इफ्तिखार खान, उत्तर प्रदेश।
6: उत्तर प्रदेश से डॉक्टर इफ्तिखार खान अपना पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं। माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी।
5: रत्ना कुमारी एस, कर्नाटका।
3: फ्रॉम कर्नाटका, Ratna Kumari S, and she has used toy-based pedagogy for education
5: Mohammed
3: of Ayaz children.
5: Mohammad Ayaz Raina, Jammu and Kashmir.
6: और अब जम्मू और कश्मीर से मोहम्मद अयाज रैना अपना पुरस्कार प्राप्त करने माननीय राष्ट्रपति के समक्ष।
5: अनिल कौशिक हरियाणा।
3: अनिल कौशिक ऑफ हरियाणा, he has 40 models in his mathematics lab and is now receiving the award from the honorable राष्ट्रपति जी।
5: रंजन देवनाथ त्रिपुरा।
6: और अब त्रिपुरा से श्री रंजन देवनाथ अपना पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं। तालियों के बीच सभी उनका स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं।
5: शालिनी कुशवाहा, उत्तर प्रदेश।
6: उत्तर प्रदेश से शालिनी कुशवाहा को ये पुरस्कार दिया गया है उनके शिक्षा के क्षेत्र में अदम्य और अद्भुत कार्य के लिए।
5: थंगराज एम, तमिलनाडु।
3: फ्रॉम तमिलनाडु, Thangaraj M is receiving the award from the Honorable Rashtrapati ji, and he has worked extensively on enjoyable and relatable education.
5: Vartika Gulati, Rajasthan.
4: Rajasthan se Vartika Gulati, Maraniya Rashtrapati se, unhone namaskar kiya, jhukkar Maraniya Rashtrapati ne abhivadan swikar kiya, aur ab Maraniya Rashtrapati se wo puraskar grahan kar rahi hai. Shiksha ke kshetra mein
5: Ronald Mehru, Nagaland.

0: From Nagaland, our Ronald Meru will be receiving the award from the Honorable Rashtrapati Ji, and he has worked extensively on interactive education. Here he will receive
1: Shailendra
0: the award
1: Pratap
0: from
1: Singh,
0: the
1: Madhya Pradesh.
0: President of India. From Madhya Pradesh, Shailendra Pratap Singh will receive the award, and he has worked to say that there is no dropout from his school.
1: That was Basant Rao Kulkarni,
0: larger enrollment has been there in his school. From Maharashtra, Vaibhav Basant Rao Kulkarni, who has worked extensively on lively education, receives his award from the Honorable Rashtrapati Ji.
1: Rajesh Bajoloi, Assam.
2: Assam se Rajesh Bajoloi apna puraskar grahan kar rahe hain. In sabhi shikshakon ne apne apne kshetra mein
1: Radha Rajesh, Indian Certificate of Secondary Education.
2: Secondary Education Karnataka se is waqt uska praapt kar rahe hain Radha Rakesh.
1: Koti koti dhanyawad mananiya Rashtrapati Mahodaya.
0: The Honorable President of India, Shrimati Draupadi Murmu, the Minister for Education, Sri Prahlad Joshi, the Minister of State for Education, Sri Jayant Chaudhary, and the Minister of State for Education, Dr. Sukanto Mujumdar, and the Secretary, Department of School Education and Literacy, Sri T.K. Anil Kumar, the Secretary, Department of Higher Education, Shrimati Deepthi Gaur Mukherjee, and the Secretary, Ministry of Skill Development and Entrepreneurship, Dr. Devashish Mukherjee, have now taken their seats on the dais. And the Honorable President will also confer awards to teachers and to the institutes who have worked in higher education. And now, telephone.
3: Architecture शिक्षा को sustainable design और real world learning से जोड़ा है. ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़कर वे विद्यार्थियों को आवास स्कूल अवसंरचना की वास्तविक चुनौतियों को समझने के लिए प्रेरित करती हैं। वास्तुकला शिक्षण के लिए प्रोफेसर अवलोकिता अग्रवाल को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। तेलंगाना के हैदराबाद स्थित आईआईटी हैदराबाद में प्रोफेसर कीर्ति चंद्र साहू ने शोध शिक्षण और अकादमिक नेतृत्व के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। विज्ञान और शोध को भविष्य की मौसम संबंधी चुनौतियों से जोड़ने और विद्यार्थियों को शोध के लिए प्रेरित करने के लिए प्रोफेसर कीर्ति चंद्र साहू को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
4: राजस्थान के पिलानी स्थित बिट्स पिलानी के डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में डॉक्टर विनय चमोला ने इंटरनेट ऑफ थिंग्स और ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में नए पाठ्यक्रम और हैंड्स ऑन आईओटी टिंकरिंग लैब्स के जरिए मेट सुपरविजन और एआईओटी ब्लॉक्स जैसे वेंचर्स के जरिए विद्यार्थियों को अपने विचारों को समाधान में बदलने के लिए प्रेरित किया। तकनीकी उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए डॉक्टर विनय चमोला को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। ओडिशा के भुवनेश्वर स्थित आईआईटी भुवनेश्वर में डॉक्टर श्रीकांत गुल्लापुरी मेटलर्जी और मटेरियल साइंसेज की शिक्षा को आगे बढ़ा रहे हैं। कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग रियल लाइफ एप्लीकेशंस और एक्सपीरियंशियल लर्निंग के जरिए वे विद्यार्थियों की तकनीकी समझ को मजबूत करते हैं। शिक्षा कौशल और सामाजिक जरूरतों से जुड़ी रिसर्च को आगे बढ़ाने के लिए डॉक्टर श्रीकांत गुल्लापुरी को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। गुजरात के गांधीनगर स्थित आईआईटी गांधीनगर में विद्यार्थियों में स्वतंत्र सोच और नए समाधानों की क्षमता विकसित करने वाले शिक्षक हैं डॉक्टर मिथुन राधाकृष्ण। वे इंजीनियरिंग साइंसेज और फाइनेंस जैसे अलग अलग क्षेत्रों की अवधारणाओं को जोड़कर विद्यार्थियों को नए और अनजाने सवालों पर सोचने के लिए प्रेरित करते हैं। मौलिक सोच और समस्या समाधान का आत्मविश्वास विकसित करने के लिए डॉक्टर मिथुन राधाकृष्ण को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। मध्य प्रदेश के भोपाल स्थित IISER भोपाल में प्रोफेसर सौरभ दत्ता ने प्लांट बायोलॉजी के शिक्षण शोध और आउटरीच के जरिए विद्यार्थियों को नई सोच और शोध की दिशा दी है। वो एम्पैथेटिक मेंटोरशिप और इंक्लूसिव लर्निंग इकोसिस्टम के जरिए विद्यार्थियों को सशक्त करते हैं। शिक्षण शोध और समाज के प्रति अपने योगदान के लिए प्रोफेसर सौरभ दत्ता को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। मुंबई के आईआईटी बॉम्बे के डिपार्टमेंट ऑफ अर्थ साइंसेज में प्रोफेसर विक्रम विशाल ने भू विज्ञान और जलवायु से जुड़े जटिल विषयों को शोध प्रयोग और वास्तविक दुनिया की चुनौतियों के जरिए समझने का नया तरीका विकसित किया। भारत की पहली कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन

0: एक्सटेंशन एंड स्टोरेज फील्ड लेबोरेटरी स्थापित की। भू विज्ञान और जलवायु समाधान में शिक्षा, शोध और नवाचार को आगे बढ़ाने के लिए प्रोफेसर विक्रम विशाल को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। गुजरात के गांधीनगर स्थित नेशनल फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर जयराज सिंह सरवैया ने शिक्षा, शोध और उद्योग के बीच एक मजबूत सेतु तैयार किया है। उन्होंने फॉरेंसिक फार्मेसी, फूड फॉरेंसिक्स और मेडिकल डिवाइसेस जैसे तीन विशिष्ट क्षेत्रों में पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स को विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। शिक्षा, शोध और इनोवेशन को रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट से जोड़ने के लिए प्रोफेसर जयराज सिंह सरवैया को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। उत्तर प्रदेश के IIT कानपुर के डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री में प्रोफेसर शंकर प्रसाद रथ ने रसायन विज्ञान में शोध, शिक्षण और विद्यार्थियों के मार्गदर्शन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनके स्वयं NPTEL पाठ्यक्रम ने उच्च शिक्षा में उनकी विशेषज्ञता को व्यापक बनाया। विद्यार्थियों की प्रतिभा और करियर को संवारने के लिए प्रोफेसर शंकर प्रसाद रथ को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
1: उत्तराखंड के श्रीनगर गढ़वाल स्थित हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय में डॉक्टर मनीषा निगम ने बायोकेमिस्ट्री की पढ़ाई को प्रयोग, समस्या समाधान और वास्तविक जीवन के उदाहरणों से अधिक प्रभावी बनाया। शिक्षा, शोध और सामाजिक सरोकारों को साथ लेकर चलने के लिए डॉक्टर मनीषा निगम को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। महाराष्ट्र के वर्धा स्थित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज DMIHER में डॉक्टर अमर मोहन राव तकसांडे ने बाल चिकित्सा शिक्षा, शोध और मरीजों की देखभाल में उत्कृष्ट योगदान दिया है। उन्होंने कॉम्पिटेंसी बेस्ड मेडिकल एजुकेशन और पीडियाट्रिक एकोकार्डियोग्राफी के माध्यम से चिकित्सा प्रशिक्षण को मजबूत किया। डॉक्टर अमर तकसांडे को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। आंध्र प्रदेश के मंगलगिरी स्थित एम्स मंगलगिरी में डॉक्टर अरुण बाबू ने पीडियाट्रिक्स के शिक्षण, शोध और चिकित्सा शिक्षा में नवाचार को आगे बढ़ाया है। 400 से अधिक साइंटिफिक पब्लिकेशंस और अनेक रिसर्च प्रोजेक्ट्स के साथ चिकित्सा शिक्षा और नवाचार को सशक्त बनाने के लिए डॉक्टर अरुण बाबू को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। मणिपुर के इम्फाल स्थित मणिपुर यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ डांस एंड म्यूजिक में डॉक्टर पुखराम बम लीलावती देवी ने 15 वर्षों से अधिक समय में नृत्य, संगीत और शोध के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मणिपुर स्टेट कला अकादमी के यंग टैलेंट अवार्ड और प्रसार भारती के मणिपुरी डांस में टॉप ग्रेड से सम्मानित डॉक्टर पुखराम बम लीलावती देवी को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
0: वाराणसी की बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज में प्रोफेसर आशुतोष मोहन ने 25 वर्षों से अधिक समय में मैनेजमेंट शिक्षा, शोध और अकादमिक नेतृत्व में उल्लेखनीय योगदान दिया है। मार्केटिंग और सप्लाई चेन मैनेजमेंट में

0: सशक्त बनाने के लिए प्रोफेसर अंकुरन दत्ता को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
1: कर्नाटक के बेंगलुरु स्थित कर्नाटका संस्कृत यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर शिवानी वी ने संस्कृत के पारंपरिक अध्ययन को आधुनिक तकनीक और शोध से जोड़ने का महत्वपूर्ण कार्य किया। संस्कृत को आधुनिक, सुलभ और नई पीढ़ी के लिए प्रासंगिक बनाने के लिए प्रोफेसर शिवानी वी को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
0: छत्तीसगढ़ के रायपुर स्थित पंडित रविशंकर शुक्ला यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर राजीव चौधरी ने फिजिकल एजुकेशन के क्षेत्र में शिक्षण, शोध और विद्यार्थी कल्याण को नई दिशा दी है। डिजिटल पेडागॉजी और अवेयर इंक्लूजन अफेक्शन AIA मॉडल के जरिए उन्होंने विद्यार्थियों में केवल याद करने की बजाय क्रिटिकल थिंकिंग और रिसर्च स्किल्स को विकसित किया। शिक्षा, शोध और विद्यार्थी कल्याण को सशक्त बनाने के लिए प्रोफेसर राजीव चौधरी को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। कर्नाटक के बेंगलुरु स्थित MEI पॉलिटेक्निक में डॉक्टर विश्वनाथ एजेस पिछले 32 वर्षों से सिविल इंजीनियरिंग शिक्षा में इनोवेशन, टेक्नोलॉजी और प्रैक्टिकल लर्निंग को बढ़ावा दे रहे हैं। उन्होंने मल्टीडिसिप्लिनरी नॉलेज, डिजिटल लर्निंग और स्टूडेंट सेंट्रिक टीचिंग को बढ़ावा दिया। तकनीक आधारित और रोजगार से जुड़ी शिक्षा को मजबूत करने के लिए डॉक्टर विश्वनाथ एजेस को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। तमिलनाडु के कोयंबटूर स्थित BSG पॉलिटेक्निक कॉलेज में डॉक्टर शशि कलायस डिप्लोमा इंजीनियरिंग एजुकेशन को बेहतर बनाने के लिए इंडस्ट्री कोलैबोरेशन और आउटकम बेस्ड लर्निंग को आगे बढ़ा रही है। 110 से अधिक इंडस्ट्री अलाइंड एक्सपेरिमेंट्स और 11 इंडस्ट्री MOUs के जरिए उन्होंने विद्यार्थियों को प्रैक्टिकल लर्निंग के अवसर दिए। विद्यार्थियों के कौशल और अवसरों को बढ़ाने के लिए डॉक्टर शशि कलायस को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। तमिलनाडु के इरोड स्थित शक्ति पॉलिटेक्निक कॉलेज में डॉक्टर कन्नन रथिनम ने पॉलिटेक्निक शिक्षा में सीखने का एक व्यावहारिक मॉडल विकसित किया। उन्होंने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुरूप सैद्धांतिक अवधारणाओं को पीयर लर्निंग के माध्यम से समझने योग्य बनाया। पॉलिटेक्निक शिक्षा में नवाचार, शोध और अनुभवात्मक शिक्षण को बढ़ावा देने के लिए डॉक्टर कन्नन रत्नम को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। महाराष्ट्र के सोलापुर स्थित गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में डॉक्टर संदीपन प्रल्हाद नारोटे ने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और टेलीकम्युनिकेशंस की शिक्षा को टेक्नोलॉजी इनेबल्ड और एक्सपीरियंशियल लर्निंग से मजबूत किया है। उनकी टीचिंग लर्निंग अप्रोच से 5000 से अधिक विद्यार्थियों को लाभ मिला है। शिक्षण, शोध और संस्थागत विकास में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए डॉक्टर संदीपन प्रल्हाद नारोटे को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। केरल के ITI अरीकोड में श्री हरीश ए ने इलेक्ट्रिकल स्किल्स ट्रेनिंग को नवाचार और सामाजिक जिम्मेदारी से जोड़ा है। उनकी सबसे खास पहल कैंडेला LED बल्ब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, जिसे उन्होंने ITI विद्यार्थियों के साथ स्थापित कर स्किल लर्निंग को वास्तविक उत्पादन और एंटरप्रेन्योरशिप से जोड़ा और उद्यमिता के माध्यम से युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए श्री हरीश ए को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। हिमाचल प्रदेश के मंडी स्थित गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में फिटर ट्रेड के इंस्ट्रक्टर श्री जगमोहन ने कौशल प्रशिक्षण को गुणवत्ता, उद्योग की जरूरतों और सामाजिक जिम्मेदारी से जोड़ा है। COVID-19 के दौरान मास्टर ट्रेनर के रूप में उन्होंने ट्रेनीज को ऑक्सीजन प्लांट्स के संचालन का प्रशिक्षण देकर कौशल को एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक सेवा से भी जोड़ा। श्री जगमोहन को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। महाराष्ट्र के धाराशिव स्थित गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में श्री किरण प्रकाश झरकर ने कौशल प्रशिक्षण को पुस्तकों, डिजिटल प्लेटफॉर्म और व्यावहारिक संसाधनों के एक जुड़े हुए लर्निंग इकोसिस्टम में बदला है। उनकी पेटेंट प्राप्त स्किल बुक कनेक्टिंग ट्रेनीज टू स्किल्स और स्किल बुक मोबाइल एप्लीकेशन ने प्रैक्टिकल लर्निंग और एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड रिसोर्सेज से जोड़ा, जिसके लिए श्री किरण प्रकाश झरकर को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। पश्चिम बंगाल के कोलकाता स्थित गवर्नमेंट ITI टॉलीगंज में वेल्डर ट्रेड के इंस्ट्रक्टर श्री संदीप बनर्जी ने कौशल प्रशिक्षण को आधुनिक तकनीक और व्यावहारिक सीखने से जोड़ा है। 300 से अधिक ट्रेनीज को कॉम्पिटेंसी बेस्ड और हैंड्स ऑन ट्रेनिंग देने के साथ उन्होंने नए वेल्डर इंस्ट्रक्टर्स के लिए मास्टर ट्रेनर के रूप में भी योगदान दिया है।

0: युवाओं को सशक्त बनाने के लिए श्री संदीप बनर्जी को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। गुजरात के बिली मोरा स्थित इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में ऑटोमोबाइल ग्रुप के सुपरवाइजर इंस्ट्रक्टर श्री राजेश कुमार एम पटेल ने वाहन तकनीक के प्रशिक्षण को नवाचार और रोजगार से जोड़ा है। ट्राइसिकल ईवी विद स्टीयरिंग जनरेशन ने क्षेत्रीय स्किल कंपटीशन में तीसरा स्थान हासिल किया। ऑटोमोबाइल स्किल्स और रोजगारोन्मुख प्रशिक्षण के माध्यम से युवाओं को सशक्त बनाने के लिए श्री राजेश कुमार एम पटेल को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। राजस्थान के चौमू में स्थित गवर्नमेंट आईटीआई में रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग के सीनियर इंस्ट्रक्टर श्री हीरालाल शर्मा ने उनके विकसित किए गए स्प्लिट एसी और डीप फ्रीजर फॉल्ट सिमुलेटर्स के जरिए विद्यार्थी तकनीकी खराबियों की पहचान और ट्रबल शूटिंग का व्यवहारिक अभ्यास करते हैं, जिसके लिए श्री हीरालाल शर्मा को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
1: महाराष्ट्र के नासिक स्थित गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट त्रिम्बकेश्वर आदिवासी में फैशन डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी की क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर श्रीमती अर्चना राकेश जाधव ने आदिवासी और ग्रामीण युवाओं को फैशन और अपैरल स्किल्स के माध्यम से रोजगार और उद्यमिता से जोड़ा है। युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए श्रीमती अर्चना राकेश जाधव को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित गवर्नमेंट डिविजनल आईटीआई में COPA HIVI की ट्रेनिंग ऑफिसर श्रीमती रीना गुप्ता ने प्रैक्टिकल लर्निंग के माध्यम से वे विद्यार्थियों को कंप्यूटर ऑपरेशन और बेसिक प्रोग्रामिंग जैसे कौशलों में प्रशिक्षित करती हैं। दिव्यांग युवाओं को डिजिटल कौशल और आत्मनिर्भरता से सशक्त बनाने के लिए श्रीमती रीना गुप्ता को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। पश्चिम बंगाल के कोलकाता स्थित गवर्नमेंट आईटीआई टॉलीगंज में श्री सौमेन पंडित ने नई तकनीकों के कौशल प्रशिक्षण को प्रैक्टिकल और इंडस्ट्री ओरिएंटेड लर्निंग से जोड़ा है। उन्होंने 160 से अधिक लर्नर्स को ड्रोन टेक्नोलॉजी में प्रशिक्षित किया। नई तकनीकों और भविष्य के रोजगार के अवसरों से युवाओं को जोड़ने के लिए श्री सौमेन पंडित को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। असम के नॉर्थ ईस्ट स्किल्स सेंटर असम स्किल डेवलपमेंट मिशन में श्रीमती तुलिका कलिता ने अपने 20 वर्षों के अनुभव से युवाओं को वैश्विक हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के लिए तैयार किया है। उन्होंने 1400 से अधिक लर्नर्स को वर्कप्लेस रेडिनेस कम्युनिकेशन एटिकेट और प्रोफेशनल सर्विस स्किल्स से प्रशिक्षित किया, जिसके लिए श्रीमती तुलिका कलिता को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। पंजाब के लुधियाना स्थित नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में मशीनिस्ट ट्रेड के ट्रेनिंग ऑफिसर श्री संजय कुमार ने प्रिसिशन मशीनिंग और एडवांस्ड टेक्निकल स्किल्स के माध्यम से युवाओं को उच्च स्तरीय करियर के लिए तैयार किया है। उनके विद्यार्थी DRDO, ISRO, BAR और इंडियन रेलवेज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों तक पहुंचे हैं। श्री संजय कुमार को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। मध्य प्रदेश के इंदौर स्थित नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट विमेन में ट्रेनिंग ऑफिसर श्रीमती ज्योति बाला राठौर ने उनके मार्गदर्शन में विद्यार्थियों ने राष्ट्रीय परीक्षाओं और स्किल कॉम्पिटिशन्स में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की। कौशल और रोजगार के अवसरों के माध्यम से युवाओं को सशक्त बनाने के लिए श्रीमती ज्योति बाला राठौर को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
0: उड़ीसा के भुवनेश्वर स्थित सेंट्रल टूल रूम एंड ट्रेनिंग सेंटर में इंजीनियर ट्रेनिंग श्री प्रणब कुमार चौधरी ने कौशल विकास को बड़े स्तर पर प्रशिक्षण, गुणवत्ता और इंडस्ट्री रेडी लर्निंग से जोड़ा है। उन्होंने स्किल डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप व्यापक स्तर तक पहुंचाया। कौशल, गुणवत्ता और रोजगारोन्मुख प्रशिक्षण को व्यापक स्तर पर सशक्त बनाने के लिए श्री प्रणब कुमार चौधरी को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
2: और माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू शिक्षक दिवस 2026 के अवसर पर उच्च शिक्षा संस्थानों और पॉलिटेक्निक के शिक्षकों या संकाय सदस्यों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगी। माननीय राष्ट्रपति अब अपने स्थान से खड़े होकर पुरस्कार देने के लिए आगे आते हुए, आपको बता दें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 के लिए नामांकन राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आमंत्रित किए गए थे, जिनमें जन भागीदारी के तहत इसमें
1: प्रोफेसर अवलोकिता अग्रवाल आईआईटी रुड़की की
2: प्रोफेसर अग्रवाल अपना पुरस्कार ग्रहण करने माननीय राष्ट्रपति के सामने आ रही हैं। इन्होंने वस्तुकला और निर्मित पर्यावरण के क्षेत्र में
3: फ्रॉम आईआईटी हैदराबाद प्रोफेसर कीर्ति चंद्र साहू and he works on chemical engineering and has trained many students.
1: Dr. Vinay Chamola
2: and Professor Vinay Chamola, jinhone electrical aur electronics engineering ke kshetr mein kaam kiya hai, BSc Pilani se.
1: Dr. Srikant Golapudi, IIT Bhubaneswar.
3: From IIT Bhubaneswar, Dr. Srikant Golapudi, who works in metallurgical engineering,
1: Dr. Mithun Radhakrishna, IIT Gandhinagar.
2: जो कि केमिकल इंजीनियर है, इस क्षेत्र में इनको पुरस्कार दिया जा रहा है आईआईटी
1: प्रोफेसर सौरभ दत्ता आईआईएसईआर भोपाल
3: फ्रॉम आईआईएसईआर भोपाल प्रोफेसर सौरभ दत्ता रिसीव्स द अवार्ड फ्रॉम ऑनरेबल राष्ट्रपति
1: प्रोफेसर विक्रम विशाल आईआईटी बॉम्बे
2: पृथ्वी विज्ञान के क्षेत्र में कार्य के लिए प्रोफेसर विक्रम विशाल को पुरस्कार दिया जा रहा है, बॉम्बे महाराष्ट्र से है।
1: डॉक्टर जयराज सिंह सरवैया एनएफएसयू गांधीनगर
3: For his work in forensic sciences, Dr. Jairaj Sarvaiya of the National Forensic Science Laboratory,
1: Professor
2: Shankar Prasad Rath, IIT Kanpur. Professor Shankar Prasad Rath ko puraskar diya ja raha hai, jo IIT Kanpur, Uttar Pradesh se hai.
1: Dr. Manisha Nigam, Himvati Nandan Bahuguna Garhwal University, Uttarakhand.
3: Himvati Nandan Bahuguna University, Uttarakhand receives her award in the field of biochemistry from the
1: Dr. Amar Mohan Rao
2: Dasande, JNMC, Vardha. Dr. Amar Mohan Rao ko diya ja raha hai. Medicine ke kshetr mein baal rog ke liye unhone karya kiya hai. Vardha, Maharashtra se.
1: Dr. Arun Babu, AIMS, Mangalagiri, Andhra Pradesh.
3: From Andhra Pradesh is Mangalagiri, AIMS, Dr. Arun Babu. He has worked especially
1: Dr.
3: on pediatric treatment and innovation
1: Devi,
3: and has
1: Manipur University
3: published 400
1: Imhal.
3: Scientific publications. Dr. P. Leelavati Devi receives her award from the Honorable President for her work on
1: Professor
3: Manipuri Gans.
1: Professor Ashutosh Mohan, BHU, Varanasi.
2: Professor Ashutosh Mohan, ko, jo ki Prabandh Adhyan Sansthan, Banaras se hai, unko puraskar diya ja raha hai.
1: Professor Ankuran Datta, Guwahati University, Guwahati.
3: Dr. Anukaran Datta of the Guwahati's Public Relations
1: Professor
3: and Communication
1: Shivani
3: received
1: v, Karnataka
3: the award from
1: State
3: the
1: University,
3: Honorable
2: Sushri Shivani V. Karnataka University, Bangalore se hain. Inko Sanskrit Vishwavidyalaya se
1: Professor Rajiv Chaudhary, Pandit Ravi Shankar Shukla University, Raipur.
3: Professor Rajiv Chaudhary receives the award for his work on physical education and is from the Pandit Ravi Shankar Shukla University, Raipur,
1: Chhattisgarh.
2: Civil Engineering ke kshetr mein Dr. Vishwanath HS ko puraskrit kiya ja raha hai, Bangalore, Karnataka se.
1: Dr. Sasikala S, PST Polytechnic College, Coimbatore.
3: From Tamil Nadu's Coimbatore, Dr. Sashikala S. receives the award for a work
1: Dr.
3: in electronics
1: Kanan
3: and electrical engineering.
2: भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में डॉक्टर करण शक्ति रथिनम को पुरस्कृत किया जा रहा है, इरोड तमिलनाडु.
1: डॉक्टर संदीपन प्रहलाद नरोचे, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक सोलापुर.
3: From Maharashtra Solapur district, the Government Polytechnic, Dr. Sandeep Narote of the Electronics and Engineering Department received the award from the Honorable President of
1: India. Dr. Harish A, Government
3: ICI, Skilling and Entrepreneurship,
1: Kozhikode, Kerala.
3: Harish A of ITI Kerala receives the award from the Honorable President of India.
1: Chak Mohan, Government Industrial Training Institute, Mandi, Himachal Pradesh.
3: He specializes in fitter trade and also is a master trainer, Sri Jagmohan from IIT, Himachal Pradesh.
1: By Uddhav Rao Patil, Government Industrial Training Institute, Dharashiv, Maharashtra. Sandeep Banerjee, Government ITI, Taliganj.
3: Receives the award
1: Patel,
3: from the Honorable
1: Rajesh
3: President.
1: Bhai, Maganbhai, Government ITI, Bilimora.
2: उद्योगशीलता के क्षेत्र में

0: ये पुरस्कार प्रदान किए जा रहे हैं माननीय राष्ट्रपति
1: हीरा
0: श्रीमती
1: लाल
0: द्रौपदी
1: शर्मा,
0: मुर्मू के
1: गवर्नमेंट
0: कार्यक्रम
1: इंडस्ट्रियल
0: द्वारा.
1: ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चोमू।
2: And he has worked in the field of refrigeration, and his special
1: Archana
2: work is on
1: Rakesh
2: troubleshooting
1: Yadav,
2: for
1: Government
2: ACs.
1: Industrial Training Institute, Adivasi, Sriambikeshwar, Nasik.
2: And she works on fashion design.
1: Reena Gupta, Government Industrial Training Institute, Ujjain.
2: Dr. Gupta's work is on Divyang's digital skilling.
1: Soumen Pandit, Tollygunj Government ITI.
2: Soumen Pandit specializes in industry oriented learning and drone technology.
1: Tulika Kalita, Northeast Skill Center, Guwahati, Assam.
2: She has trained 1400 workplace readiness workers.
1: Sanjay Kumar,
0: Kaushal Vikas aur
1: TI Ludhiana.
0: Kshetra mein ye puraskar pradan kiye ja rahe hain mananiya rashtrapati.
1: Jyoti Bala Rathor, NSTIW, Indore.
2: She works on skilling and empowerment of her students from
1: Sri Pranab Kumar Chaudhary, Central Tool
2: Indore.
1: Room and Training Center, Bhubaneswar.
2: Pranab Kumar Chaudhary also specializes on skilling and entrepreneurship. And what a proud moment it is indeed
1: Koti Koti
2: to receive the award from the Honorable President of India. And the Honorable President of India has been escorted to her desk, and she is accompanied by the Minister for Education, Sri Pralhad Joshi, and the Ministers of State for Education, Sri Jayan Chaudhary and Sri Sukanta Majumdar, and the secretaries in the Department of Education, Literacy, School Education and Literacy, and Skill Development and Entrepreneurship, and the Secretary Department of Higher Education.
0: और अब समय आ गया है जब माननीय राष्ट्रपति ये पुरस्कार प्राप्त करने वाले सभी शिक्षकों को संबोधित करेंगी. राष्ट्रपति का संबोधन शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले लाखों शिक्षकों के लिए प्रेरणादायी संदेश होगा. श्रोताओं, सभी शिक्षकों ने तालियों के साथ माननीय राष्ट्रपति
2: एंड अ स्टैंडिंग ओवेशन फॉर द ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू. नाउ द ऑनरेबल प्रेसिडेंट विल एड्रेस द गैदरिंग.
3: इस समारोह में उपस्थित केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री प्रहलाद जोशी जी, राज्य मंत्री श्री जयंत चौधरी जी एवं डॉक्टर सुकांत मजूमदार जी, मंचासीन सभी सचिवगण, सभी शिक्षकगण, देवियों और स्वजनों, सभी को नमस्कार. राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित आज के सभी पुरस्कार विजेताओं को मैं हार्दिक बधाई देती हूँ. देश के द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती को शिक्षक दिवस के रूप में मनाकर हमारे देशवासी उनके प्रति एवं समस्त शिक्षक समुदाय के प्रति सम्मान व्यक्त करते हैं. जो समाज शिक्षकों का सम्मान करता है वो समाज सही अर्थ में प्रगतिशील होता है. शिक्षक के बीच आकर मेरे अंदर विद्यमान विद्यार्थी और शिक्षक दोनों ही जीवंत हो जाता है. मुझे अपने शिक्षकों का सादर स्मरण होता है. उनके स्नेह और मार्गदर्शन के बल पर ही मैं अपने जीवन यात्रा में आगे आकर आपके सामने खड़ी हूँ. साथ ही मुझे अपने विद्यार्थी भी याद आते हैं जिन्हें मैंने ओडिशा के रायरंगपुर में स्थित श्री अरबिंदो इंटीग्रल एजुकेशन सेंटर में पढ़ाया था. मैंने अपने विद्यार्थियों से भी बहुत कुछ सीखा है. उन विद्यार्थियों के प्यार को मैं अपने जीवन के बहुत बड़ी उपलब्धियां मानती हूँ. मैं भी कभी शिक्षक समुदाय की सदस्य रही हूँ, इससे मुझे विशेष सार्थकता का अनुभव होता है. देवियों और स्वजनों, सावित्रीबाई फुले आधुनिक युग में विद्यालय में पढ़ाने वाले भारत की पहली शिक्षिका के रूप में जाने जाती है। बालिकाओं की शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने क्रांतिकारी पहल की थी और 19वीं सदी में बालिका विद्यार्थियों की स्थापना की थी, विद्यालय की स्थापना की थी। आज के दिन क्रांति ज्योति स्वरूपा महान शिक्षिका सावित्री बाई फुले की स्मृति को मैं सादर नमन करती हूँ। 20वीं सदी के आरंभ में पश्चिम बंगाल के बोलपुर जिले में गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की तथा ओडिशा के पुरी जिले में प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी उत्कलमणि पंडित गोपबंधु दास ने वन विद्यालय यानी ओपन एयर स्कूल की स्थापना की थी। उन विद्यालयों की स्थापना के पीछे ये उद्दत्त विचार था कि प्रकृति की गोद में विद्यार्थियों का सहज विकास होता है। देश को बहुआयामी योगदान देने वाले यथा सर्वजनात्मक शिक्षा के प्रति विशेष रूप से समर्पित उन विभूतियों को मैं सादर नमन करती हूँ। इस सभागार में लद्दाख से लेकर अंडमान निकोबार आइलैंड तक तथा अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात तक पूरे देश में शिक्षण के श्रेष्ठ प्रतिमान स्थापित करने वाले शिक्षक उपस्थित है। यह प्रसन्नता की बात है कि पुरस्कार विजेता में गांव के स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों की संख्या अधिक है। मुझे आशा है कि इस वर्ष के पुरस्कार विजेताओं की अध्यापन एवं प्रशिक्षण पद्धतियां और उपलब्धियां उन शिक्षकों को भी शिक्षण में उत्कृष्टता के लिए प्रेरित करेगी। पुरस्कार विजेताओं के योगदान और उपलब्धियां पर केंद्रित फिल्मों को देखकर मेरा ये विश्वास और भी दृढ़ हुआ है कि निष्ठावान शिक्षक अग्रिम पंक्ति के राष्ट्र निर्माता होते हैं। आज पुरस्कृत सभी शिक्षकों के समान रूप से प्रभावशाली और अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किए हैं, लेकिन समय के सीमा के कारण मैं केवल एक उदाहरण का उल्लेख करना चाहूंगी। हम सब ने देखा कि राजस्थान के झालावाड़ जिले के एक गांव के स्कूलों में अपने शिक्षक के मार्गदर्शन में बच्चे अत्यंत आधुनिक माध्यमों के सहायता से जीव विज्ञान का अध्ययन करते हैं। इससे ये स्पष्ट होता है कि सोच के बल पर छोटे से छोटे स्थान पर प्रबुद्ध शिक्षक और जिज्ञासु विद्यार्थी उच्च स्तरीय पाठन पठन का आधुनिक उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं। मुझे ये जानकर प्रसन्नता होती है कि ये सभागार में उपस्थित शिक्षकों ने ऐसे प्रेरक प्रयासों से शिक्षण कार्यों को नए आयाम दिए हैं। शिक्षा मंत्रालय द्वारा स्कूलों, उच्च शिक्षण संस्थानों एवं पॉलिटेक्निक्स में अध्यापन करने वाले श्रेष्ठ शिक्षकों तथा कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय द्वारा चुने गए सुयोग्य प्रशिक्षकों के योगदान को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दी गई है। देश के विकास में एकेडमिक एक्सेलेंस, स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप का बहुत अधिक महत्व है। भारत को नॉलेज सुपर पावर बनाने के साथ साथ स्किल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में स्थापित करना हमारी राष्ट्रीय प्राथमिकता में से शामिल है। यहाँ उच्च शिक्षा के क्षेत्र में पुरस्कृत आचार्यगण उपस्थित है। उनके लिए तथा पूरे देश के आचार्यों के लिए उच्च शिक्षा में भारत का गौरवशाली इतिहास लक्ष्य भी प्रस्तुत करना है और कसौटी भी। हुएंगसान ने लिखा है कि नालंदा विक्रमशिला में पढ़ाने वाले आचार्यों का यश दूर दूर के देशों तक फैल चुका था। उनका चरित्र पूर्णतः निर्मल और अनिंदनीय था। आचार्यगण जानते थे कि समुद्रों और पर्वतों के को पार करके अनेक कष्ट सहन करके विदेशों के छात्र अनेक उनके पास आते थे और ज्ञान पिपासा लेकर वो अपने आप को संतुष्ट लाभ करते थे।

0: भारत के विश्वविख्यात आचार्यों की परंपरा को नोबेल पुरस्कार विजेता आचार्य सी वी रमन जैसे शिक्षकों ने आधुनिक युग में आगे बढ़ाया है। वे अपने विद्यार्थियों के साथ खूब घुल मिलकर मॉडर्न फिजिक्स के विभिन्न विषयों पर चर्चा करते थे। जो विद्यार्थी उनसे कोई अच्छा प्रश्न करते थे तो वे पुस्तकों से हटकर अपने विलक्षण अध्यापन से ऐसे जिज्ञासा जागृत करते थे कि उनके विद्यार्थी उन प्रश्नों के माध्यम से विश्व के महान वैज्ञानिकों के मूल ग्रंथों में अवगहन करने जानते थे। देवी और स्वजन, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि बच्चों की देखभाल करना पौधों को जोर से सींचने जैसे बराबर है। स्कूल एजुकेशन शिक्षा व्यवस्था का आधार है। ज्ञान और कौशल तो कभी भी प्राप्त किया जा सकता है, परंतु बचपन में ही सदाचार की शिक्षा देना अधिक प्रभावी सिद्ध होता है। आरंभिक कक्षा में बच्चों के बौद्धिक, शारीरिक और नैतिक विकास पर निष्ठापूर्वक ध्यान देकर हमारे शिक्षक अच्छे विद्यार्थियों और कर्तव्यनिष्ठा नागरिकों की भावी पीढ़ियां तैयार करते हैं। विद्यार्थियों ही शिक्षकों की पहचान होते हैं। विद्यार्थी अपने शिक्षकों द्वारा पढ़ाया गया पाठ्यक्रमों भले ही भूल जाए, लेकिन उनके व्यवहार को ये सदैव याद रखते हैं। अनेक विद्यार्थी आर्थिक दृष्टि से कमजोर परिसरों से आते हैं। कुछ अनेक परिवार में पहली पीढ़ी के विद्यार्थी होते हैं। कुछ विद्यार्थी गांव के किसी सामान्य स्कूल से शहर के बड़े स्कूल में आते हैं और थोड़ा असहज हो जाते हैं। कुछ विद्यार्थी स्वभाव से ही संकुचित होते हैं। कुछ विद्यार्थी में बहुत प्रतिभा होती है, लेकिन उनमें आत्मविश्वास की कमी होती है तथा कुछ विद्यार्थियों को चिल्ड्रेन विथ स्पेशल नीड्स की श्रेणी में रखा जाता है। ऐसे सभी विद्यार्थी जो किसी कारण से कोई भी कमी महसूस करते हैं, उनमें आत्मविश्वास जगाना और उन्हें आगे बढ़ाना शिक्षकों का विशेष दायित्व होना चाहिए। संस्कृत भाषा के शब्द उद्धार का अर्थ होता है खींचकर बाहर निकालना या नीचे से ऊपर ले जाना। विद्यार्थियों का उद्धार करने का पुनीत अवसर केवल शिक्षकों को ही उपलब्ध होता है। हमारे संविधान में निहित अवसर की समानता के आदर्श को कार्य रूप देने का सबसे प्रभावी माध्यम शिक्षा है। हमारे देश में प्राइमरी स्कूल ड्रॉप आउट रेट 12 वर्ष पहले लगभग 4.5% था। अब ये ड्रॉप आउट रेट नहीं के बराबर है। ये उपलब्धि शिक्षकों के प्रयासों से संभव हो सकी है। इस राष्ट्रीय सफलता के लिए मैं सभी शिक्षकों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। हम सब देशवासी विकसित भारत के निर्माण के लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ रहे हैं। विश्व स्तरीय शिक्षा व्यवस्था के बल पर ही विकसित भारत का निर्माण संभव है। हमारे शिक्षक शिक्षा व्यवस्था में प्राणवायु का संचार करते हैं। हमारा ये प्रयास होना चाहिए कि हमारे देश में एक भी विद्यार्थी अच्छी शिक्षा के अवसर से वंचित ना हो। मैं चाहूंगी कि हमारे शिक्षक अपने स्नेह और समर्पण से सभी विद्यार्थियों में ज्ञान, प्रेरणा, नैतिकता और संवेदनशीलता का संचार करें। इन्हीं कामनाओं के साथ मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। जय हिंद, जय भारत।
1: अपने संबोधन में शिक्षा और शिक्षा की भूमिका के महत्व को रेखांकित किया माननीय राष्ट्रपति।
2: माननीय राष्ट्रपति महोदय, आपकी अनुमति हो तो समारोह का समापन किया जाए।
1: और अब राष्ट्रगान
3: के लिए निवेदन है। राष्ट्रगीत तथा राष्ट्रगान को सम्मान देने के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं।

0: President of India doing namaskar to all the awardees and other dignitaries who are present at the plenary hall of the Vigyan Bhavan. And the Honorable President of India is now departing from the plenary hall of Vigyan Bhavan, and the Minister for Education, the Ministers of State for Education, and the Departmental Secretaries of the Department of School Education and Literacy, the Department of Higher Education, and the Department of Skill and Entrepreneurship, now escorting the Honorable Rashtrapati ji towards from the plenary hall of the Vigyan Bhavan. And as the Honorable Rashtrapati ji in her address said, that the society which respects teachers is indeed a progressive one, and she congratulated all the winners of the awards. She said that teachers from Ladakh to the Andaman and Nicobar Islands and from Arunachal Pradesh to Gujarat are all playing a pivotal role in furthering education and nurturing our students. She hailed the efforts of the Department of School Education, Higher Education and Skills and Entrepreneurship. She expressed the confidence that India will emerge as a knowledge economy and also the skill capital of the world. She mentioned about the reputation of the teachers of India's ancient Nalanda University, which spread far and wide and attracted students from all over the world. And she said that in the last 12 years, the primary school dropout rate has come down to almost nil.
1: आज के इस समारोह में हमें एक महत्वपूर्ण संदेश मिलता है, राष्ट्र निर्माण केवल बड़ी परियोजनाओं से नहीं होता, राष्ट्र निर्माण कक्षा में होता है। श्रोताओं, अब समारोह अपने समापन की ओर बढ़ रहा है। आज का ये आयोजन हमें एक बार फिर याद दिलाता है कि शिक्षक केवल भविष्य देश के नागरिक नहीं बनाते, वे भविष्य भारत का निर्माण भी करते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा सम्मानित किए गए सभी शिक्षक हमारे लिए प्रेरणा है। उनके विद्यालयों को बधाई, उनके विद्यार्थियों को बधाई, उनके परिवारों को बधाई, और भारत के प्रत्येक शिक्षक को हमारा सादर नमन। इसी भावना के साथ विज्ञान भवन नई दिल्ली से राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 का ये विशेष प्रसारण संपन्न होता है। इस प्रसारण को आप तक पहुंचाने में तकनीकी सहयोग दिया अशोक कुमार मिश्रा और बाबूलाल मीणा ने। हमारे ओबी इंचार्ज थे वीके तोमर और प्रस्तुतकर्ता प्रमोद कुमार। मैं शोएसियार खान अपने साथी कमेंटेटर कौशिक राय के साथ आपको आकाशवाणी के स्टूडियो वापस लिए चलता हूं। नमस्कार।
2: अभी आप नई दिल्ली के विज्ञान भवन से भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की गरिमामय उपस्थिति में शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित किए राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार समारोह का सजीव विवरण सुन रहे थे। विवरण दे रहे थे शोएसियार खान हिंदी में और कौशिक रॉय अंग्रेजी में।
3: You were listening to a live broadcast of the presentation ceremony of the National Award to Teachers organized by the Ministry of Education, Government of India, in the gracious presence of Honorable President of India, Srimati Draupadi Murmu, at Vigyan Bhavan, New Delhi. Our commentators were Shoaib Yar Khan in Hindi and Kaushik Roy in English.

819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी इंद्रप्रस्थ पर आपका हार्दिक स्वागत है और मैं हूं आपकी अपनी सुनिधि। और आज का हमारा सफर है हिंदी सिनेमा के उस दौर की ओर, जब फिल्में सिर्फ मनोरंजन नहीं होती थी बल्कि अपने साथ भावनाओं, रिश्तों, इंसानियत और संगीत की एक पूरी दुनिया लेकर आती थी। स्वागत है आपका कार्यक्रम एक ही फिल्म से। मैं तो आज हम बात करेंगे वर्ष 1980 की एक ऐसी फिल्म की जिसमें एक तरफ थे हिंदी सिनेमा के शोमैन राज कपूर और दूसरी तरफ संजय खान, जीनत अमान, संजीव कुमार, परवीन बॉबी और डैनी डेंजोगप्पा जैसे सितारे। तो फिल्म का नाम है अब्दुल्ला, एक ऐसी कहानी जिसमें रेगिस्तान की गर्म रेत, रिश्तों की गर्माहट, संघर्ष है, इंसानियत है और सबसे बढ़कर है एक आम इंसान का अपने आसपास की दुनिया के लिए खड़े होने का जज्बा। और जब ऐसी कहानी को संगीत मिले राहुल देव बर्मन यानी पंचम दा का और शब्द मिले आनंद बख्शी के, तो फिर संगीत की महफिल अपने आप खास हो जाती है। तो आइए आज सुनते हैं फिल्म अब्दुल्ला की कहानी, उसके सितारों की बातें और उसके सदाबहार गीत। फिल्म के संगीत की शुरुआत ही हमें एक अलग भावलोक में ले जाती है। तो दोस्तों, ये गीत है मोहम्मद रफी की आवाज में, मैंने पूछा चांद से। इस गीत की खासियत है इसकी सरलता, चांद से सवाल करने का अंदाज और जवाब की तलाश। इसे रफी साहब ने जिस खूबसूरती से आवाज दी है वह आज भी सुनने वाले को रोक नहीं पाती। संगीत दिया है आर.डी. बर्मन ने, गीत है आनंद बख्शी का और आवाज दी है मोहम्मद रफी ने। तो लीजिए सुनते हैं फिल्म अब्दुल्ला का बेहद लोकप्रिय गीत, मैंने पूछा चांद से।

0: क्या बात है, रवि साहब की आवाज में एक ऐसी मासूमियत थी कि साधारण से शब्द भी दिल की बात बन जाते थे। और इस गीत से जुड़ा एक दिलचस्प तथ्य ये भी है कि बताया जाता है कि ये गीत मूल रूप से एसडी बर्मन ने रफी साहब के साथ काफी पहले रिकॉर्ड किया था, लेकिन उस समय इसका इस्तेमाल नहीं हो सका। बाद में संजय खान ने इसे आरडी बर्मन के यहाँ सुना और फिल्म में इस्तेमाल करने की इच्छा जताई। पंचमदा ने इसमें बदलाव किए और फिर ये गीत अब्दुल्ला का हिस्सा बन गया। यानी इस गीत की कहानी भी अपने आप में एक फिल्म की कहानी है। श्रोताओं, अब्दुल्ला का निर्देशन किया था संजय खान ने। संजय खान सिर्फ इस फिल्म के निर्देशक ही नहीं थे, बल्कि फिल्म में मुख्य भूमिका में भी नजर आए। उनके साथ थी खूबसूरत और प्रतिभाशाली जीनत अमान और फिर फिल्म में मौजूद थे राज कपूर। राज कपूर का नाम आते ही हिंदी सिनेमा का एक पूरा युग आंखों के सामने आ जाता है। आवारा, श्री 420, जिस देश में गंगा बहती है, इन फिल्मों के जरिए राज कपूर ने भारतीय सिनेमा में अपनी ऐसी पहचान बनाई जिसे भुलाया नहीं जा सकता। अब्दुल्ला में भी राज कपूर का व्यक्तित्व फिल्म की महत्वपूर्ण ताकतों में से एक था। फिल्म की स्टार कास्ट काफी बड़ी थी। संजीव कुमार, परवीन बॉबी, डैनी डेंजोअप्पा, महमूद, कादर खान, नासिर हुसैन, हेलेन, ओम प्रकाश और कई अन्य कलाकार इसमें दिखाई दिए। यानी उस दौर के कई बड़े नाम एक ही फिल्म में थे। आपसे बात करते रहेंगे फिलहाल इस अंतराल के बाद।
1: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे सो इजी।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, आरबीआई कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: दोस्तों, हम बात कर रहे हैं फिल्म अब्दुल्ला की, तो अब बारी है उस गीत की जिसमें उत्सव का माहौल है, महफिल है और है जिंदा दिली। आशा भोसले की आवाज में जश्न बहारा महफिल यारा। आशा जी की आवाज में चंचलता और नजाकत का जो मेल मिलता है वो इस गीत को खास बनाता है। गीतकार आनंद बख्शी और संगीतकार आरडी बर्मन ने मिलकर इस गीत को फिल्म के रंगीन हिस्सों में एक अलग चमक दी है और इस गीत में हेलेन की मौजूदगी भी इसे और यादगार बनाती है। तो आइए महफिल सजाते हैं और सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

दोस्तों, अब्दुल्ला के संगीत की चर्चा हो और आरडी बर्मन का नाम ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। पंचमदा की सबसे बड़ी खूबियों में से एक थी कि वे कहानी और परिस्थिति के हिसाब से संगीत को अलग-अलग रंग दे सकते थे। एक तरफ रफी साहब की रोमांटिक आवाज, दूसरी तरफ किशोर कुमार की दर्द भरी पुकार और तीसरी तरफ आशा भोसले की चंचलता और फिर मन्ना डे तथा लता मंगेशकर जैसी आवाजें। फिल्म के गीत आनंद बख्शी ने लिखे थे और यही वजह है कि अब्दुल्ला का संगीत एक ही रंग का नहीं है। इसमें प्रेम है, दर्द है, दुआ है, उत्सव है और भक्ति भी है। तो आइए अब सुनते हैं एक ऐसा गीत जिसमें दर्द भी है और एक गहरी आध्यात्मिक भावना भी। किशोर कुमार की आवाज में ए खुदा हर

फिर मुलाकात हो या ना हो, कहानी सच हो या आधी अधूरी, फर्क कहाँ पड़ता है। कुछ लोग मिलते नहीं, बस भीतर कहीं ठहर जाते हैं। उनकी आवाज़ खामोशी में सुनाई देती है, उनकी याद अकेले

के साथ आपको सुनवा रहे हैं अगला गीत फिल्म ससुराल से। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी का गाया ये गीत है। शैलेंद्र ने बोल लिखे हैं और संगीतबद्ध किया है शंकर जयकिशन ने। आपको बताना है अभिनेत्री का नाम।

हमारे एक श्रोता कह रहे हैं कि अभी तक दिल ओ दिमाग तर बतर हैं आपने यादों की महफिल प्रोग्राम में सलिल चौधरी की जो गीत सुनवाए उसके खुमार में। आज की इबारत भी सुंदर गानों की तरफ इशारा कर रही है। प्रेम वो खुशबू है जो बिना चाहे भी फैल जाती है, बिना बताए सबको पता चल जाता है। किसी को दिल में बंद करके चाहे चाबी को दरिया में फेंक दो पर बंद ताला तो सबको नजर आ ही जाता है। बिना कहे कितनी कहानियां बन जाती हैं और वो अमर भी हो जाती हैं।

इस गीत से पहले हमने जो गीत आपको सुनवाया था अपने हुए पराए फिल्म से, और हमने पूछा था कि इस गीत में कौन अभिनेत्री हैं जो गुनगुना रही हैं और साथ ही कौन सा पक्षी है। तो इसका जवाब आया है कि माला सिन्हा इस गीत में गुनगुना रही हैं सखियों के साथ, और साथ ही जो पक्षी है वो है मोर, जो भी साथ में नाच रहा है। बिल्कुल सही जवाब आप लोगों ने हमसे साझा किए हैं।

एक श्रोता ने लिखा है कि इस दिल में भी कोई बसता था, मगर ना खता उनसे हुई ना हमसे हुई, फिर भी यह दिल टूट गया, जिनकी वजह से हमने अपना पूरा करियर खत्म कर दिया और आज एक गुमनाम जिंदगी जी रहे हैं। अगर इस टूटे दिल को जोड़ने वाला कोई गम भरा गीत हो तो सुनवा दीजिए। देखिए, गीत तो हम आपको सुनवा ही रहे हैं, कोई बात नहीं, आप गीत सुनिए और जिंदगी का आनंद लीजिए। श्रोता ने लिखा है कि आप बीती का मतलब, एक्चुअली हमने जो गीत सुनवाया था फिल्म का नाम था आप बीती, तो उन्होंने इसी शब्द को उठाकर हमें बताना चाहा है कि स्वयं पर बीती हुई कुछ बातें, और ऐसा तकरीबन सबके साथ हुआ होगा, कुछ अच्छी कुछ आलतू फालतू बातें जरूर हुई होगी, इसे कह रहे हैं वो आप बीती। बिल्कुल।

साथ ही एक श्रोता ने हमें जवाब लिख भेजा है, जो गीत अभी हमने आपको सुनवाया था फिल्म ससुराल से, क्या मिल गया क्या खो गया। हमने पूछा था कि कौन अभिनेत्री है इस गीत में, तो हमारी श्रोता ने लिखा है कि फिल्म ससुराल का ये गीत है और बी सरोजा देवी अभिनेत्री, साथ ही राजेंद्र कुमार अभिनेता हैं। बिल्कुल सही जवाब आपने लिख भेजा है, इसके लिए बहुत धन्यवाद। एक श्रोता लिख रहे हैं कि पुराना रेडियो खो गया है और नया फेसबुक पेज मिल गया है, क्या मिल गया और क्या खो गया, क्या बात है। और साथ ही एक श्रोता लिख रही है कि बहुत ही मस्त धुन बीच बीच में सुनवाई जा रही है, जी आप बस इस सफर का आनंद लेते जाइए। क्या बात है, आप लोगों ने बिल्कुल सही जवाब हमें लिख भेजे हैं हमारे प्रश्नों के। एक श्रोता ने लिखा है कि सच कह रहा हूं, मैंने तो अपनी धर्म पत्नी को दिल में उस दिन ही बंद कर दिया और चाबी दरिया में फेंक दी है, जब मैंने पहली बार उन्हें देखा था और पहली मुलाकात हुई थी, मेरी अंतिम सांसों तक मेरे दिल में बंद रहेगी। क्या बात है, बहुत ही सुंदर आपने बात कही है। अगर आपकी धर्मपत्नी ये बात सुन रही है तो आज उनसे ज्यादा खुशनसीब कौन होगा, है ना। हमारे एक श्रोता ने ये जो धुन हमने बजाई है उसके बारे में लिखा है कि माना जनाब ने पुकारा नहीं, पेइंग गेस्ट फिल्म की ये धुन और माउथ ऑर्गन से ये सुन रहे हैं आप, और मिलन गुप्ता, उन्होंने ये हमें लिखकर भेजी है इसकी डिटेल्स। और एक श्रोता कह रहे हैं कि अपने हुए पराए अभिनेत्री माला सिन्हा और सखियों के साथ में खूबसूरत बगीचे में काफी हंसमुख तरीके से नृत्य कर रही हैं। बिल्कुल सही आपने जवाब दिया है, बहार बनके वो मुस्कुराए, सही में सदाबहार बेहतरीन सुंदर गीत बज रहे हैं, इसके लिए वो हमें धन्यवाद भी कह रहे हैं। और आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में बने हुए हैं, इसके लिए भी हम आपको बहुत धन्यवाद दे रहे हैं। और अब जो गीत हम आप तक पहुंचा रहे हैं उस फिल्म का नाम बता दीजिए,

बिल्कुल, देश से गांव में, गांव से गली में, और गली से घर में, और घर की बात सीधे दिल में। एक श्रोता लिख रहे हैं कि जरा जल्दी जल्दी मिला करो ना जी, लता दीदी के गाए सदाबहार सुरीले गीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वो आभार व्यक्त कर रहे हैं और हम भी आपका आभार व्यक्त करते हैं, आपको देते हैं धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। एक श्रोता ने लिखा है कि यह गीत काफी समय बाद सुनने को मिल रहा है। एक श्रोता ने लिखा है कि हमें खुशी है कि आज सुरीला सफर प्रोग्राम की गीतों भरी इबारत में मनमोहक गीतों की बौछारें बरसने वाली है, हम सभी श्रोता भी इन गीतों में झूमेंगे दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक। क्या बात है। एक श्रोता लिख रही है कि कभी किसी को ढूंढते ढूंढते हम शहर, गांव और गलियों से गुजरते हैं और पता चलता है कि जिसे तलाश रहे थे वो तो चुपचाप हमारे दिल में आकर बस चुका है। फिर कहानी सच्ची हो या आधी अधूरी, दिल को उसका साथ मिल जाए तो हर बात खूबसूरत लगने लगती है। बिल्कुल सही फरमाया आपने। एक श्रोता ने लिखा है कि आदि श्रीवास्तव जी की पुण्यतिथि पर यादों की महफिल प्रोग्राम उन्हीं पर केंद्रित था, वो विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। साथ ही एक श्रोता लिख रहे हैं कि सभी को यथायोग्य सादर सप्रेम और इस तरह का अभिनंदन वो कर रहे हैं। साथ ही वो सारे कार्यक्रमों से उन्होंने पिरोकर हमें ये संदेश लिख भेजा है, सुरीला सफर तक वो अब भी हमारे साथ बने हुए हैं विविध भारती पर। और एक श्रोता लिख रहे हैं कि ये अपने होठों की बंसी बना ले मुझे, आरजू तो हमारी भी है ये, मगर डर है कि मौसम कहीं ये बदल न जाए। जी हाँ, हमें इस डर से उभरते हुए जीवन पथ पर अग्रसर होना ही पड़ेगा, तभी प्रणय के पथ का सृजन होगा और भय बिनु होए न प्रीति के रीति का मिलन होगा।

का इस कहानी के सच को समझने के लिए ही हो रहा है, जो उसे समझने और उसी में रहने के धैर्य और संयम के साथ ही साथ उपजे साहस के साथ सत्य की दिशा के पहचान की आवश्यकता है, ऐसा वो लिख रहे हैं। और साथ ही वो लिख रहे हैं कि आज अपने सुरीला सफर कार्यक्रम में फिर से शामिल होने वाले गद्य पद्यमयी इबारत में विभिन्न फिल्मों के प्रणय पर गीतों की पंक्तियां अंतरे मुखड़े के रूप में रखी गई हैं और उनमें प्रणय के प्रमुख भाव समाये हुए हैं। परदेसी आया गांव में, गली में, घर में, हाँ घर से दिल में। जी हाँ, वे लोग बड़े ही सौभाग्यशाली हैं जिनके हृदय में कोई ऐसा परदेसी इस तरह आकर समाया हुआ है। बहुतेरे तो उस पर भी शक ही नहीं, अपितु सच में ऐसा हो सकता है। ऐसे उहापोह भरे माहौल में ही जीवन गुजार देते हैं और अपने हृदय में ही अवस्थित उस परदेसी से दूरी बनाए रखते हुए गाँव, गली, घर के परदेसी तलाश में ही लगे रहते हैं।

और हमने आपसे पूछा था कि ये जो गीत हमने आपको सुनवाया, इस फिल्म का नाम क्या था? आप सभी के जवाब हमें मिल गए हैं। फिल्म का नाम प्रतिज्ञा। बिल्कुल सही जवाब आपने दिया है। और अब जो गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, फिल्म का नाम है दूर की आवाज। मोहम्मद रफी का गाया गीत है। शकील बदायूनी ने इस गीत को रचा है और संगीतबद्ध किया है रवि ने। फिल्म का नाम हमने आपको बता दिया है। अभिनेता और अभिनेत्री का नाम आप हमें बताएं।

हमारी एक श्रोता कह रही हैं कि आज की सुंदर सी इबारत बहुत से लोकप्रिय गानों से बनाई गई है। आईना चेहरा तो दिखाता है मगर मोहब्बत इंसान को उसकी असली कहानी दिखाती है। जब कोई दिल में उतर जाता है तब उसे भुलाने की कोई चाबी नहीं होती। कहानी चाहे खत्म हो जाए पर एहसास अपनी जगह बना रहता है। तो उन्होंने कई गीत भी हमें यहाँ पर सुझाए हैं। बहुत बढ़िया। ऐसे ही हमारे एक श्रोता कह रहे हैं कि दुकान पर मोबाइल रिपेयरिंग के काम की व्यस्तता की वजह से जवाब लिखने का समय नहीं मिल पाता। हमेशा की तरह बहुत सुंदर कार्यक्रम, ऐसा वो कह रहे हैं। कोई बात नहीं, आप अपना काम करते रहिए और साथ ही सुनते रहिए विविध भारती के सभी कार्यक्रम। अगला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। फकीरा फिल्म का गीत है मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में। लता मंगेशकर की आवाज और मोहम्मद रफी की आवाज में ये गीत रविंद्र जैन गीतकार और संगीतकार।

हमारे एक श्रोता लिख रही हैं कि आज की इबारत के सभी गाने बहुत अच्छे हैं और उनका पसंद का गीत भी उन्होंने साथ में लिख भेजा है। अगला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं ब्लफ मास्टर फिल्म से लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में, राजेंद्र कृष्ण के बोल, कल्याण जी आनंद जी का संगीत।

हमारे एक श्रोता हैं जो फिलिपिन मनीला से हमें मैसेज कर रहे हैं। जय हिंद, उन्होंने ये मैसेज किया है और वो सुरीला सफर सुन रहे हैं। बहुत सारे श्रोताओं ने शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाओं के संदेश भी हमें भेजे हैं। और एक श्रोता ने ये भी लिखा है कि देश से गांव में, गांव से गली में, गली से घर में और फिर दिल में विविध भारती आ गया है। क्या बात है। लीजिए अब सुनिए गैम्बलर फिल्म का ये गीत किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में।

अगला गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं और इसी गीत के साथ सुरीला सफर अब समाप्त होने की ओर है। आसपास फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार के युगल स्वरों में। और इसी गीत के साथ दीजिए आज्ञा पूजा नारायणिया को। आप सभी के संदेशों के लिए आप सभी को हम धन्यवाद देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।

श्रोताओं नमस्कार, आप सभी को शिक्षक दिवस की बहुत सारी बधाइयां शुभकामनाएं। शिक्षक केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि जीवन

0: की उस सुंदर पाठशाला का नाम है जहाँ किताबों के अक्षरों के साथ साथ जीवन के अर्थ भी समझाए जाते हैं। माँ की ममता और पिता के अनुशासन के बाद शिक्षक का मार्गदर्शन हमारे व्यक्तित्व को आकार देता है। वे हमारे भीतर छिपी संभावनाओं को पहचानते हैं।
1: In women's cricket, India to take on arch rivals Pakistan in final Group A clash of T20 Asia Cup in Dubai tonight. And now the news in detail. President Draupadi Murmu today said that a Viksit Bharat will only be possible with quality education, addressing the National Teachers Awards Ceremony 2026 in New Delhi on the occasion of Teachers' Day. The president said that a society that respects teachers is a progressive society in right terms.
2: हम सब देशवासी विकसित भारत के निर्माण के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं। विश्व स्तरीय शिक्षा व्यवस्था के बल पर ही विकसित भारत का निर्माण संभव है। हमारे शिक्षक शिक्षा व्यवस्था में प्राणवायु का संचार करते हैं। हमारा ये प्रयास होना चाहिए कि हमारे देश में एक भी विद्यार्थी अच्छी शिक्षा के अवसर से वंचित न हो।
1: President Murmu added that academic excellence, skill development and entrepreneurship plays a crucial role in the development of the nation. The president noted that establishing India as the skill capital of the world alongside becoming a knowledge power is the priority of the country. Highlighting the importance of knowledge as the greatest source of power, she said that education empowers individuals to think independently, make informed decisions and contribute meaningfully to the progress of the nation. The president said that dedicated teachers are the frontline nation builders.
2: द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती को शिक्षक दिवस के रूप में मनाकर हमारे देशवासी उनके प्रति एवं समस्त शिक्षक समुदाय के प्रति सम्मान व्यक्त करते हैं। जो समाज शिक्षकों का सम्मान करता है वो समाज सही अर्थ में प्रगतिशील होता है। शिक्षक के बीच आकर मेरे अंदर विद्यमान विद्यार्थी और शिक्षक दोनों ही जीवंत हो जाता है।
1: The president also recalled Savitribai Phule's pivotal role in advancing women's rights and education. President Murmu today conferred the National Teachers Awards. 48 selected school teachers from 27 states, 7 union territories and 6 organizations of the central government received the awards. The president also presented national awards to 21 teachers and faculties of higher education institutions and polytechnics. 12 teachers and faculties from central higher education institutions, 5 from state universities, including 3 government and 2 private colleges, and 4 from polytechnics, including 2 government and 2 private polytechnics, have been selected for the awards. Short documentaries on each awardee depicting the exemplary work done by them were showcased at the event. President Draupadi Murmu today paid tributes to teachers across the country on the occasion of Teachers' Day. Writing an article in an English daily, President Murmu described teaching as a noble responsibility that goes beyond imparting academic knowledge and plays a pivotal role in shaping individuals and the nation. She expressed gratitude to teachers for instilling knowledge, skills, values and motivation in the lives of crores of students. Prime Minister Narendra Modi has called upon teachers to go beyond textbooks and play a greater role in preserving childhood while shaping the lives of students. He made these remarks while interacting with the National Teachers Day Award winners in New Delhi yesterday. While sharing the glimpses of the interaction with teachers in a social media post, the Prime Minister emphasized that teachers must ensure that the child within every student remains alive, and for that they should also preserve the child within themselves. He stressed that bringing about real change in children requires teachers to become a part of their lives rather than limiting themselves to the syllabus.
3: मैं पूरी शिक्षा जगत से ये कहना चाहता कि हमें पहले से ज्यादा किताबों से बाहर निकल करके सिलेबस से बाहर निकल करके बच्चों की जिंदगी में घुसना पड़ेगा। बचपन मरने नहीं देना चाहिए और बचपन बनाए रखने का सबसे बड़ा काम टीचर कर सकते। टीचर का काम है उसके भीतर का बचपन बना रहे।
1: Highlighting key health and social issues, Mr. Modi expressed concern over excessive screen time among children and suggested encouraging sports, outdoor activities and creative pursuits as effective ways to reduce screen addiction.
3: एक विषय है स्क्रीन टाइम। अब ये एक प्रकार का एडिक्शन है। मेरे मन में एक विचार आता है, या तो वो बच्चा खेल कूद के अंदर बहुत रुचि लेने लग जाएगा। फिर खेल कूद मतलब वो वीडियो गेम नहीं, मैंने एक्चुअली मैदान में वो खेलना, तो धीरे धीरे वो उसमें से बाहर आ सकता। और ऐसे में क्रिएटिविटी की तरफ हम बच्चों को जितना ज्यादा जोड़ेंगे, और हमने ऐसे कुछ न कुछ कार्यक्रमों को आदत बनानी चाहिए।
1: Mr. Modi also referred to the national education policy and stressed the importance of taking children outside the classroom and connecting them with real-world skills and forms of work. The Prime Minister further underlined that Teachers' Day is about appreciating the strong contribution of teachers to our society and noted that it is also a day to pay homage to Bharat Ratna Dr. S. Radhakrishnan. Prime Minister Narendra Modi will participate in the centenary celebrations of Sri Ram College of Commerce in New Delhi this evening. Mr. Modi will also address the gathering on the occasion. Sri Ram College of Commerce, part of the University of Delhi, is one of India's premier institutions of higher education. It is a distinguished centre of learning in commerce, economics and management. Established in 1926 by eminent industrialist and philanthropist Sir Sri Ram, the college has, over the past century, nurtured generations of scholars, professionals, administrators, entrepreneurs, policymakers, and nation builders. BJP national spokesperson Dr. Sudhanshu Trivedi has termed the removal of a woman minister in Telangana as an act of injustice. Addressing a press conference in New Delhi, Dr. Trivedi questioned the silence of Congress leaders Rahul Gandhi and Mallikarjun Kharge on the issue. Referring to the paper leak in Jharkhand, he alleged that it was not merely a paper leak but a paper loot. Dr. Trivedi also said that the investigation into the Jharkhand Public Service Commission examination has revealed irregularities, including the breaking open of strong rooms and tampering with question papers. This is Akashwani giving you the news.
4: News that keeps you informed. Follow us on X at AIR News Alerts and on Public at AIR News Alerts.
1: The flood situation remains critical in 14 districts of Bihar, including the state capital Patna. Several rivers are flowing above the danger mark, while low-lying areas remain inundated. The flooding has affected normal life in several areas. Relief and rescue operations are underway in the affected districts. More from our correspondent.
5: The rising water levels of major rivers in Bihar, including Ganga, Gandak and Kosi, continue unabated. Flooding has affected 16 districts, while the situation remains serious in 14 districts, including Patna. According to Water Resources Department, the Ganga River in Patna is flowing nearly 2 meters above the danger mark. In its forecast, the department has said that a new highest flood level is likely to be recorded at Gandhi Ghat Gay site. As a result, pressure on the river's flow areas, particularly the Diyara regions, may increase. The department has directed the concerned districts to take all necessary precautions measures in view of the flood situation. Savita Parikh, Akashwani Samachar, Patna.
1: The External Affairs Ministry has said 3 more Indian nationals, including a 5-year-old child, have been rescued from the flood-hit Trishuli Bazar area of Nepal, bringing the total count of Indian evacuees to 169. Sharing broader updates on the safety of Indian nationals while briefing media in New Delhi yesterday, MEA spokesperson Randhir Jaiswal said 275 Indian nationals remain missing. The spokesperson said India has supplied around 95 tons of relief material to Nepal since the devastating flash floods hit the country on 26th of last month. The MEA spokesperson said India will continue to provide assistance to Nepal as per the requirements of the government in that country. He said, in the coming days, India is planning to send more forensic kits, Bailey bridges and other materials that are requested by the government of Nepal. Meanwhile, the death toll from the floods in Himalayan nation rose to 1,344 after rescue workers recovered more bodies from affected areas. In Maharashtra, the Dahi Handi festival is being celebrated with great enthusiasm today. The festival is associated with Sri Krishna Janmashtami. On the occasion, young participants known as Govindas form tall human pyramids to reach and break an earthen pot filled with curd, milk or butter suspended high in the air, reenacting the childhood mischief of Lord Krishna. A report.
6: Nandika, la, la, re, ya, la,
5: Mumbai and some neighboring areas, Dahi Handi is a traditional celebration associated with the birth of Lord Krishna. The festival witnesses Govindas forming multi-tiered human pyramids to break earthen pots. In view of possible injuries, the BMC has directed its hospitals to remain fully prepared and provide free treatment to injured Govindas. Meanwhile, the Maharashtra government has announced insurance cover for 1,60,000 Govindas. Benefits ranging from 1 lakh to 10 lakh will be provided in case of hospitalization, permanent, total or partial disability. Prarthana, Akashvani News, Mumbai.
1: External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar is set to address the annual high-level session of the United Nations General Assembly on 26th of this month. He will deliver India's national statement during the afternoon session of the general debate, which will be held from 22nd to 28th of this month. The Ministry of Coal has dismissed the reports claiming that the 37,500 crore rupees scheme for promotion of surface coal and lignite gasification projects has received no applications, calling such reports premature and factually incorrect. On to sports. In women's cricket, India will take on arch-rivals Pakistan in the final Group A clash of T20 Asia Cup at Dubai International Stadium tonight. The match will begin at 8 p.m. Indian Standard Time. India have already secured a place in the semi-finals after recording convincing victories over Thailand and Hong Kong in their previous two matches. The Indian team will now look to maintain its winning run and finish the group stage with a perfect record. Pakistan, meanwhile, have played just one match. They began their campaign with a win over Thailand. The team currently has 2 points in Group A and needs just one more point from its remaining two matches to qualify for the semi-finals. In badminton, Indian men's doubles pair Satvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty will take on the Malaysian duo of Noor Mohammad Azreen Ayub and Tan Wik Yong in the semi-final of the China Masters in Shenzhen today. The Indian pair defeated Denmark's Kim Astrup and Anders Karup Rasmussen 21-13, 16-21, 21-18 in the quarter-final yesterday. Housing and Urban Affairs Minister Manohar Lal today held an inter-ministerial virtual meeting with Jal Shakti Minister C.R. Patil and other senior officials to review preparations for Swachhata Hi Seva 2026. In a social media post, Mr. Lal said that as the campaign enters its 9th edition, the nation is renewing its commitment to a cleaner and healthier India. He urged citizens to come forward, participate wholeheartedly in the campaign and make Swachhata Hi Seva a true Jan Andolan. The Swachhata Hi Seva 2026 campaign will be observed from 17th of this month to the 2nd of October. The India Meteorological Department has issued orange colour warning for heavy to very heavy rainfall in East Rajasthan and West Madhya Pradesh for today. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. President Draupadi Murmu says, Viksit Bharat will only be possible with quality education, confers national awards on 48 school teachers. Prime Minister Narendra Modi urges teachers to go beyond textbooks while shaping lives of students, also calls for less screen time, more sports activities for children. Prime Minister to address centenary celebrations of Sri Ram College of Commerce in New Delhi this evening. Bihar flood situation remains critical in 14 districts, relief and rescue operations underway. India delivers 95 tons of relief material to flood-hit Nepal to send more supplies and Bailey bridges. In badminton, Indian men's doubles pair of Satvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty to face Malaysian duo in Chinese Masters semi-final in Shenzhen this evening. And in women's cricket, India to take on arch-rivals Pakistan in final Group A clash of T20 Asia Cup in Dubai tonight. And with that, we end the midday news.
6: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, विकसित भारत का सपना शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार से ही साकार होगा। उन्होंने 48 स्कूली शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षकों से पाठ्य पुस्तकों से आगे बढ़कर विद्यार्थियों के जीवन को बेहतर बनाने की अपील की। उन्होंने बच्चों का स्क्रीन समय कम करने, खेलकूद और बाहरी गतिविधियों को बढ़ावा देने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री आज शाम नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह को संबोधित करेंगे। बिहार के 14 जिलों में बाढ़ की स्थिति गंभीर, राहत और बचाव अभियान जारी। भारत ने बाढ़ प्रभावित नेपाल को 95 टन राहत सामग्री भेजी और अधिक राहत सामग्री के साथ बेली ब्रिज भेजे जाएंगे। चाइना मास्टर्स बैडमिंटन के सेमीफाइनल में आज शाम सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय जोड़ी का मुकाबला मलेशियाई जोड़ी से होगा और T20 महिला क्रिकेट एशिया कप के ग्रुप ए के अंतिम मुकाबले में आज रात भारत और पाकिस्तान होंगे आमने सामने। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के जरिए ही विकसित भारत का लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। शिक्षक दिवस के अवसर पर आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 समारोह में राष्ट्रपति ने कहा कि जो समाज अपने शिक्षकों का सम्मान करता है वो सही मायनों में प्रगतिशील समाज होता है।
2: हम सब देशवासी विकसित भारत के निर्माण के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं। विश्व स्तरीय शिक्षा व्यवस्था के बल पर ही विकसित भारत का निर्माण संभव है। हमारे शिक्षक शिक्षा व्यवस्था में प्राणवायु का संचार करते हैं। हमारा ये प्रयास होना चाहिए कि हमारे देश में एक भी विद्यार्थी अच्छी शिक्षा के अवसर से वंचित ना हो।
6: राष्ट्रपति ने कहा कि शिक्षक अग्रिम पंक्ति के राष्ट्र निर्माता हैं।
2: द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया है। हमारे देशवासी उनके प्रति एवं समस्त शिक्षक समुदाय के प्रति सम्मान व्यक्त करते हैं। जो समाज शिक्षकों का सम्मान करता है और समाज सही अर्थ में प्रगतिशील होता है। शिक्षक के बीच आकर मेरे अंदर विद्यमान विद्यार्थी और शिक्षक दोनों ही जीवंत हो जाता है।
6: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किए 27 राज्यों, 7 केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र सरकार के 6 संगठनों से चुने गए 48 स्कूल शिक्षकों को ये पुरस्कार दिए गए। उन्होंने उच्च शिक्षण संस्थानों और पॉलिटेक्निक के 21 शिक्षकों और संकाय सदस्यों को भी राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किए। इनमें केंद्रीय उच्च शिक्षण संस्थानों के 12, राज्य विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के 5 तथा पॉलिटेक्निक के 4 शिक्षक और संकाय सदस्य शामिल हैं। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में देशभर के शिक्षकों को उनकी निस्वार्थ सेवा और भारत के भविष्य को आकार देने में उनके योगदान के लिए नमन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षकों से पाठ्य पुस्तकों से आगे बढ़कर विद्यार्थियों के जीवन को बेहतर बनाने और उनके बचपन को सुरक्षित रखने में बड़ी भूमिका निभाने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित शिक्षकों के साथ बातचीत की। सोशल मीडिया पोस्ट में मुलाकात की झलकियां साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि शिक्षकों को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि हर विद्यार्थी के भीतर का बचपन जीवंत रहे। इसके लिए शिक्षकों को अपने भीतर के बच्चे को भी जीवित रखना होगा। श्री मोदी ने बच्चों में अत्यधिक स्क्रीन समय की आदत पर चिंता जताई।
3: एक विषय है स्क्रीन टाइम, अब ये एक प्रकार का एडिक्शन है। मेरे मन में एक विचार आता है, या तो वो बच्चा खेल कूद के अंदर बहुत रुचि लेने लग जाएगा, फिर खेलकूद मतलब वो वीडियो गेम नहीं, मैंने एक्चुअली मैदान में वो खेलना, तो धीरे धीरे वो उसमें से बाहर आ सकता। और ऐसे में क्रिएटिविटी की तरफ हम बच्चों को जितना ज्यादा जोड़ेंगे, और हमने ऐसे कुछ न कुछ कार्यक्रमों को आदत बनानी चाहिए।
6: प्रधानमंत्री ने नशीली दवाओं के बढ़ते खतरे पर भी चिंता व्यक्त की।
3: ड्रग्स का मामला बड़े शहरों में या यूनिवर्सिटी में रहा सा नहीं, पता ही नहीं किसी को क्या है, कोई आकर के दे देता है। क्या उस संबंध में लगातार आज के जो आप टीचर्स हैं, क्या अवेयरनेस, उसके कारण क्या भय है? इस प्रकार से मैं पूरे शिक्षा जगत से ये कहना चाहता हूँ कि हमें बहुत पहले से ज्यादा किताबों से बाहर निकल करके बच्चों की जिंदगी में घुसना पड़ेगा। बचपन मरने नहीं देना चाहिए, और बचपन बनाए रखने का सबसे बड़ा काम टीचर कर सकते।
6: प्रधानमंत्री ने स्तन कैंसर के प्रति जागरूकता का भी उल्लेख किया।
3: मैं काशी का सांसद हूँ, तो मैंने वहाँ एक अभियान लिया ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस का, और मुझे खुशी है कि इन दिनों महिलाएं सामने से आकर के अपने विषय में चेकअप करा, पहले ऐसी स्थिति नहीं थी। दूसरा एक अच्छा अनुभव आया, अभी तो एक दिन में मैक्सिमम लोगों का चेकिंग करने का ग्रीनिज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड उन्होंने रजिस्टर किया।
6: प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उल्लेख करते हुए बच्चों को कक्षा से बाहर ले जाने और उन्हें वास्तविक जीवन के कौशल तथा विभिन्न कार्यों से जोड़ने के महत्व पर जोर दिया। गृह मंत्री अमित शाह, शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शिक्षक दिवस के अवसर पर देशवासियों और शिक्षकों को शुभकामनाएं दी हैं। गृह मंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि शिक्षक पीढ़ियों से विद्यार्थियों को ज्ञान की राह दिखा रहे हैं और देश की निरंतर प्रगति में योगदान दे रहे हैं। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट पर एक वीडियो संदेश में कहा कि शिक्षक ज्ञान, कौशल और आत्मविश्वास के साथ छात्रों के भविष्य को सशक्त बनाते हैं।
7: इन शिक्षकों ने अपने अपने क्षेत्र में अलग अलग तरीकों से महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। किसी ने शिक्षण में नया प्रयोग किए है, किसी ने तकनीक का प्रभावी उपयोग किया है, किसी ने वंचित और कठिन परिस्थितियों में रह रहे बच्चों के लिए काम किया, तो किसी ने विज्ञान, खेल, कला और कौशल के माध्यम से विद्यार्थियों की प्रतिभा को आगे बढ़ाने का काम किया है।
6: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
8: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए एक्स पर @AIR News Hindi को फॉलो करें और पीबी शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
6: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। इस अवसर पर वे समारोह को संबोधित भी करेंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय का श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स देश के प्रमुख उच्च शिक्षण संस्थानों में से एक है। यहाँ वाणिज्य, अर्थशास्त्र और प्रबंधन की पढ़ाई होती है। कॉलेज की स्थापना 1926 में उद्योगपति और समाजसेवी सर श्रीराम ने की थी। नई दिल्ली के भारत मंडपम में 11 से 13 सितंबर तक ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इस कड़ी में ब्रिक्स देशों के मुख्य न्यायाधीशों का 3 दिन का मंच कल शुरू हो गया। शिखर सम्मेलन के लिए व्यापक स्तर पर तैयारियां और सुरक्षा प्रबंध किए जा रहे हैं। आज मोटर कारकेट का पूर्वाभ्यास किया जा रहा है। दिल्ली यातायात पुलिस के अनुसार पूर्वाभ्यास शाम 4 बजे तक चलेगा। इस दौरान भारत मंडपम और आसपास के क्षेत्रों में 35 से अधिक मार्गों पर यातायात नियंत्रित रहेगा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर इस महीने की 26 तारीख को संयुक्त राष्ट्र महासभा के वार्षिक उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित करेंगे। 22 से 28 सितंबर तक चलने वाले इस सत्र में वे भारत का पक्ष रखेंगे। ये उच्च स्तरीय सत्र ऐसे समय हो रहा है जब दुनिया कई भू राजनीतिक संघर्षों और बढ़ते आर्थिक दबावों का सामना कर रही है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य में व्यवधान के कारण खाद्य और ईंधन की बढ़ती कीमतें भी चिंता का विषय बनी हुई हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि नेपाल के बाढ़ प्रभावित त्रिशूली बाजार क्षेत्र से 5 वर्षीय बच्चे सहित 3 और भारतीय नागरिकों को बचा लिया गया है। इससे शरणार्थियों की कुल संख्या 169 हो गई है। एक रिपोर्ट।
9: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कल नई दिल्ली में संवाददाताओं को भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 275 भारतीय नागरिक अभी भी लापता हैं, वहीं 1907 भारतीय चीन से सुरक्षित नेपाल पहुंच चुके हैं। काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास इन शरणार्थियों को हवाई मार्ग से वापस लाने में सहायता कर रहा है। श्री जायसवाल ने कहा कि तिब्बती स्वायत्त क्षेत्र में कोई भी भारतीय यात्री फंसा हुआ नहीं है। प्रवक्ता ने बताया कि 26 अगस्त को विनाशकारी बाढ़ के बाद से भारत ने नेपाल को लगभग 95 टन राहत सामग्री भेजी है। उन्होंने कहा कि भारत नेपाल सरकार की आवश्यकताओं के अनुसार सहायता जारी रखेगा। आने वाले दिनों में भारत नेपाल सरकार के अनुरोध पर अधिक फोरेंसिक किट, बेली ब्रिज और अतिरिक्त सामग्री भेजने की योजना बना रहा है। बेली ब्रिज पूर्व निर्मित और मॉड्यूलर स्टील पुल होता है, जिसे कम समय में और बिना भारी मशीनों के आसानी से जोड़ा या स्थापित किया जा सकता है। इस बीच नेपाल में बाढ़ से मरने वालों की संख्या कर 1344 हो गई है। खोज और बचाव अभियान जारी है। लगभग 5000 लोग अभी भी लापता हैं। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
6: भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने तेलंगाना में एक महिला मंत्री को हटाए जाने को अन्यायपूर्ण बताया है। नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन में डॉक्टर त्रिवेदी ने इस मुद्दे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की चुप्पी पर सवाल उठाया। झारखंड में प्रश्न पत्र लीक का उल्लेख करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि ये सिर्फ प्रश्न पत्र लीक नहीं बल्कि प्रश्न पत्रों की लूट थी।
10: जो कुछ झारखंड में तथ्य प्रकाश में आया है उसने यह साफ किया है कि यह पेपर लीक नहीं बल्कि पेपर लूट है, और इस लूट की छूट कौन दे रहा है ये कम से कम राहुल गांधी जी को बताना चाहिए। परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि जितने भी राजनीतिक दल दिल्ली में परीक्षा के विषय को लेकर दहाड़ और चिंगाड़ रहे थे, झारखंड के मुद्दे के ऊपर तीन बंदर हो गए हैं।
6: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने यूजीसी नेट जून 2026 के अंग्रेजी

0: बिहार में बाढ़ की स्थिति में कोई सुधार नहीं है। लगातार नदियों के उफान पर रहने से नए क्षेत्रों में बाढ़ का पानी प्रवेश करने लगा है। एक रिपोर्ट।
1: बिहार में गंगा, गंडक, कोसी समेत प्रमुख नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है। नदियों में उफान से 16 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। पटना समेत 14 जिलों में हालात गंभीर बने हुए हैं। जल संसाधन विभाग के अनुसार पटना में गंगा नदी खतरे के निशान से लगभग 2 मीटर ऊपर बह रही है। विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि इसके गांधी घाट गेज स्थल पर नया उच्च जल स्तर सृजित होने की आशंका है। इसके चलते नदी के प्रवाह क्षेत्र विशेषकर दियारा क्षेत्रों में दबाव बढ़ सकता है। विभाग ने संबंधित जिलों को आपदा के मद्देनजर सभी जरूरी एहतियाती कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: इस बीच मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आज राष्ट्रीय राजधानी के अलग अलग हिस्सों में हल्की से तेज बारिश हुई। और अब बात खेलों की। चाइना मास्टर्स बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय जोड़ी आज शेंजन में मेंस डबल्स सेमीफाइनल में मलेशियाई जोड़ी नूर मोहम्मद अजरीन अयूब और टेन वी कियोंग से खेलेगी। भारतीय जोड़ी ने कल क्वार्टर फाइनल में डेनमार्क के किम एस्ट्रुप और एंडर्स स्कारूप रास्मुसेन को हराया था। एशिया कप महिला टी20 क्रिकेट के ग्रुप ए के अंतिम मुकाबले में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। मैच दुबई में रात 8 बजे से खेला जाएगा। महाराष्ट्र में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी से जुड़ा दही हांडी उत्सव आज धूमधाम से मनाया जा रहा है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: मुंबई और आसपास के जिलों में भगवान श्री कृष्ण के जन्म से जुड़ा पारंपरिक उत्सव दही हांडी हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस आयोजन में युवा प्रतिभागी मानव पिरामिड बनाकर ऊंचाई पर लटके दही, दूध या मक्खन से भरी मटकी फोड़ते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने 1,60,000 गोविंदाओं के बीमा कवरेज की व्यवस्था भी की है। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, विकसित भारत का सपना शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार से ही साकार होगा। उन्होंने 48 स्कूली शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षकों से पाठ्य पुस्तकों से आगे बढ़कर विद्यार्थियों के जीवन को बेहतर बनाने की अपील की। प्रधानमंत्री आज शाम नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह को संबोधित करेंगे। बिहार के 14 जिलों में बाढ़ की स्थिति गंभीर, राहत और बचाव अभियान जारी। भारत ने बाढ़ प्रभावित नेपाल को 95 टन राहत सामग्री भेजी और अधिक राहत सामग्री के साथ बिलीब्रिज भेजे जाएंगे। चाइना मास्टर्स बैडमिंटन के सेमीफाइनल में आज शाम सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय जोड़ी का मुकाबला मलेशियाई जोड़ी से होगा। और टी20 महिला क्रिकेट एशिया कप के ग्रुप ए के अंतिम मुकाबले में आज रात भारत और पाकिस्तान होंगे आमने सामने। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। कुछ ही पलों बाद आप सुनेंगे हमारा

जी हाँ दोस्तों, हमारे आज के कलाकार से अच्छा कौन है। जी हाँ, ये तो आपको पता चल ही जाएगा थोड़ी ही देर में कि आज के हमारे कलाकार

आवाज इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना लता मंगेशकर के स्वर में, सलिल चौधरी का संगीत था। आनंद फिल्म का गीत अब आपको सुनवा रहे हैं मुकेश की आवाज में योगेश के बोल, सलिल चौधरी की बनाई थी।

0: मेरा सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गडले
0: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी हुई थी।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी न कोई संदेह।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: टेलीविजन के जाने माने नाम जिनके लिए अभिनय एक काम नहीं समर्पण है।
6: जब मैं तैयारी करना शुरू करता हूँ वहीं से मेरे अंदर एक नया इंसान जन्म लेता है। वो एक एक्टर विनीत रैना है। जैसे ही वो मेकअप अपने ऊपर चढ़ाता है तो वो किरदार बन जाता है जो आज पूरा दिन उसको प्ले करना है। उसका विनीत रैना से कोई लेना देना नहीं।
5: कभी चॉकलेटी हीरो, कभी खूंखार विलेन, तो कभी परम दिव्य साईं।
6: साईं बाबा तक पहुंचना मेरे ख्याल से किसी के बस में नहीं है।
5: विविध भारती पर आ रहे हैं अपने अभिनय और जीवन की कहानी लेकर जाने माने अभिनेता विनीत रैना। जरूर सुनिए सेल्युलॉइड के सितारे मंगलवार 8 सितंबर शाम 4 बजे और 9 सितंबर सुबह 10 बजे देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
7: विविध भारती पर इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे। छाया फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और मुकेश ने इसे गाया है राजेंद्र।

0: वो गुजरिया होय होय होय ओ जाने सारी नगरिया
1: आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया ओ सवरिया।

0: गोरी ओ गोरी बढ़ के मुदन चीर भी टक्कर, क्या मैं करूं गोरी मुझे तुझसे है प्यार, जो न तुझे देखूं न आए करार।
1: हटो जाओ ना बनाओ, हटो जाओ हाय हाय ना बनाओ हाय हाय हाय। लटकट रंगीले आवरिया, आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया।

पहले तो बांधी निगाहों की डोर, अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़ हो गोरी, ओ नटखट ओ खटपट ओ पनघट ओ झटपट। पहले तो बांधी निगाहों की डोर, अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़, तोरे नैना ओ मीठे बहना, ओ तोरे नैना हाय हाय मीठे बहना हाय हाय। मुझको बना गए बावरिया, आके सीधी लगी दिल में जैसे कटरिया, ओ सवरिया।

0: कंवरिया
1: ओ गुजरिया
0: ओ कंवरिया
1: ओ गुजरिया
0: ओ कंवरिया।
2: हाफ टिकट इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना किशोर कुमार की आवाज में, शैलेंद्र के बोल थे, संगीत था सलिल चौधरी का।
3: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्प्रेरी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
4: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
3: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया।
4: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक, तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा
3: जी। तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
4: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे,
3: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
4: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
5: मैं और मेरी तन्हाई,
4: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपने पन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: सदाबहार नगमे कार्यक्रम आप सुन रहे हैं। अब आपको सुनवाते हैं मोहम्मद रफी और साथियों के स्वरों में अगला गीत, शैलेंद्र के

0: इस गीत के साथ ही आज का फिल्म संगीत का कार्यक्रम जय भारती यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। आइए अब सुनते हैं प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 प्रदान किए। समारोह में देश के 48 स्कूली शिक्षकों और 21 उच्च शिक्षण संस्थानों के शिक्षकों को सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति ने शिक्षा को विकसित भारत का मूल आधार बताते हुए कहा कि समर्पित शिक्षक ही सच्चे राष्ट्र निर्माता हैं।
1: द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती को शिक्षक दिवस के रूप में मनाकर हमारे देशवासी उनके प्रति एवं समस्त शिक्षक समुदाय के प्रति सम्मान व्यक्त करते हैं। जो समाज शिक्षकों का सम्मान करता है वो समाज सही अर्थ में प्रगतिशील होता है। शिक्षक के बीच आकर मेरे अंदर विद्यमान विद्यार्थी और शिक्षक दोनों ही जीवंत हो जाता है।
0: नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार समारोह में धनबाद की शिक्षिका मुनमुन भट्टाचार्य को सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों यह पुरस्कार पाने वाली वह झारखंड की एकमात्र शिक्षिका हैं। मुनमुन भट्टाचार्य ने इस उपलब्धि पर हर्ष जताते हुए इसे शिक्षा के प्रति अपना समर्पण बताया। शिक्षक दिवस पर आज राजधानी रांची सहित पूरे झारखंड में राज्य स्तरीय समारोह आयोजित कर शिक्षकों को सम्मानित किया जा रहा है। इस मौके पर कोडरमा के सुदूरवर्ती सपहा विद्यालय के शिक्षक ब्रह्मदेव शर्मा की कर्तव्य निष्ठा की राज्य भर में सराहना हो रही है, जो पिछले 19 वर्षों से रोजाना उफंती नदी पार कर बच्चों का भविष्य संवार रहे हैं।
2: जहाँ पे हमारा विद्यालय है वो काफी सुदूरवर्ती क्षेत्र और बीच जंगलों में बसा हुआ है, और जब हम विद्यालय जाते हैं तो सर लगभग 1 किलोमीटर सर लंबी नदी है, और उसी नदी को पास करते हुए बरसात सर हम लोग जाते हैं। और जिला प्रशासन से हमारा यही निवेदन रहेगा कि सर पुल पुलिया का सर आप निर्माण करवा दीजिए, चूंकि ये सिर्फ हमारा ही समस्या नहीं है, हमारे ऐसे गाँव के सभी लोग हजारों लोगों का समस्या है।
0: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शिक्षक दिवस पर राज्यवासियों को बधाई देते हुए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को नमन किया। उन्होंने कहा कि झारखंड की शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक बनाने के लिए एआई और नई तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। सरकार का लक्ष्य आधुनिक तकनीक के साथ बच्चों को अपनी संस्कृति से जोड़ना है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्य में भर्ती परीक्षाओं में कथित धांधली और छात्रों पर दर्ज एफआईआर के विरोध में भाजपा ने मोर्चा खोल दिया है। केंद्रीय राज्य मंत्री संजय सेठ ने राज्य सरकार पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाते हुए सीबीआई जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि युवाओं के भविष्य के साथ हो रहे खिलवाड़ पर सीआईडी जांच पर भरोसा नहीं है।
3: Why not CBI inquiry? क्यों बच रहे हो? क्यों इसलिए कि मुख्यमंत्री जी आपके गिर्द के सरकार के जितने साथी हैं वो बड़ी मछलियां फंसी हुई हैं, वो सारे नेट में हैं, जिन्होंने झारखंड के लाखों बच्चों का भविष्य का सौदा पैसा खाया, माफ करने लायक नहीं। इसलिए CBI जांच ही न्याय दे पाएगी और बच्चों पे मुकदमा वापस करना ही होगा।
0: मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार मतदाता सूची पुनरीक्षण की जांच के लिए संथाल परगना के 4 दिवसीय दौरे पर हैं। पहले दिन पाकुड़ के आहुत गांव में जांच के दौरान फर्जी दस्तावेजों से वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के प्रयास का खुलासा हुआ। सीईओ के निर्देश पर 4 अपात्रों और 1 CSC संचालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। हजारीबाग के मेरू कैंप में सीमा सुरक्षा बल का भव्य दीक्षांत परेड आयोजित किया गया। देश के विभिन्न राज्यों से आए 140 नव आरक्षों ने 44 सप्ताह का कड़ा बुनियादी प्रशिक्षण पूरा कर देश सेवा की शपथ ली। महानिरीक्षक धीरेन्द्र संभाजी कूटे ने जवानों को बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।
4: बुनियादी प्रशिक्षण एक भारतीय जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है तथा उसे एक अनुशासित तथा कर्तव्य निष्ठ सैनिक बनाता है। इस 44 सप्ताह के कठिन बुनियादी प्रशिक्षण के दौरान आपने विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षण प्राप्त किया है। अब आपकी तैयारी देश के विभिन्न सीमावर्ती क्षेत्रों के साथ ही।
0: कोडरमा में बेहतर पुलिसिंग और अपराध नियंत्रण के लिए आज जिला पुलिस को 14 नए आधुनिक वाहन सौंपे गए। डीसी उत्कर्ष गुप्ता और एसपी कुमार शिवाशीष ने संयुक्त रूप से इन्हें हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। और इसके साथ ही अब तक के प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
5: जाएगी।
6: मन चाहेगी,
5: मन चाहेगी।

0: कार्यक्रम शुरू करने से पहले कुछ जरूरी बातें।
1: एक व्यक्ति या परिवार की चिट्ठियाँ एक महीने में एक बार ही शामिल की जाएंगी।
0: एक चिट्ठी में केवल अपने परिवार के नाम लिखें, दूसरे शहर के, दूसरे व्यक्तियों के, अपने दोस्तों के नाम नहीं लिखें, इन्हें शामिल नहीं किया जाएगा।
1: हम अपने हर श्रोता की चिट्ठियों को शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे, पर इसमें समय लग सकता है, कृपया धैर्य बनाए रखें।
2: और हाँ, हस्तलिखित चिट्ठियों को प्राथमिकता दी जाएगी, कृपया सील ठप्पे वाले और छपे हुए पोस्टकार्ड ना भेजें।

0: अंतर्देशीय नहीं, केवल पोस्ट कार्ड भेजें। और ये चिट्ठियां आपको भेजनी कहाँ है?
1: कार्यक्रम मन चाहे गीत,
2: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
0: पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091।

मन चाहे गीत इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वाले श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं हूं आपके साथ पूजा नरानिया। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आपको सबसे पहले बताएं कि हमारे टेलीपारा बिलासपुर से एक श्रोता है रजन साहू, बेबी ईशानी साहू, छन्नूलाल श्रीवास और अनीता श्रीवास। इन्होंने हमें रक्षाबंधन के पावन पर्व पर एक बहुत ही सुंदर सी राखी बनाकर पत्र भेजा है। बहुत ही सुंदर पत्र है ये। इन शुभकामनाओं के साथ हमने ये पत्र यहाँ इस कार्यक्रम में आज आपको बताने के लिए शामिल कर लिया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस तरह पत्र भेजने के लिए, और आपको भी रक्षाबंधन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही अब हम शुरू करने जा रहे हैं कार्यक्रम का पहला गीत लेते हैं। इस गीत को गाया है लता मंगेशकर ने, आरजी बर्मन का संगीत है, मजरू सुल्तानपुरी के बोल हैं, तूने और रंगीले कैसा जादू किया, कुदरत है फिल्म का नाम। और भेजने वाले हमारे जो श्रोता हैं जिनकी ये फरमाइश है, गौतम नगर नांदेड़ से प्रभाकर जोंधले, आरती जोंधले, और ये नांदेड़ महाराष्ट्र से। इसके साथ ही जम्मन रेकवार, मूलचंद्र रेकवार, मनसुख रेकवार, लालचंद्र रेकवार और सरमन रेकवार, ग्राम गड़िम लहरा, जिला छतरपुर, मध्य प्रदेश से। साथ ही हमारे इंदौर के एक श्रोता हैं सृष्टि उपाध्याय, ये गीत सुनना चाहते हैं। आपको सुनवा रहे हैं कार्यक्रम का ये पहला गीत।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं मनचाही गीत कार्यक्रम। कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं आशियाना फिल्म से। आशा भोसले ने इस गीत को गाया है, साथ ही महेंद्र कपूर ने, योगेश के बोल हैं और इस गीत की फरमाइश की है राजा जी नगर बेंगलोर से एनआर प्रसाद, अखिला प्रसाद और सुनील प्रसाद ने, साथ ही नरोत्तम गोड़ लेक सिटी उदयपुर राजस्थान से, तिवरता छत्तीसगढ़ से अमृत लाल अग्रवाल, राजकुमारी अग्रवाल, नेहा अग्रवाल, आकाश अग्रवाल, श्रुति, विवेक और विवान अग्रवाल ने, और साथ ही एडवोकेट बारिस अली खान, मोहम्मद दानिश, शहनाज खान, समीर अहमद और सबा, ये सुनना चाहते हैं लखनऊ से ये गीत।

आशियाना फिल्म का गीत अभी आपने सुना, नीरज के बोल थे और हरी अर्जुन का संगीत। आप सुन रहे हैं विविध भारती से इस वक्त कार्यक्रम मन चाहे गीत। अगला पत्र है, किस्मत फिल्म का गीत ये सुनना चाहते हैं। काटा रोड वाशिम महाराष्ट्र से मास्टर विठल सुरेशे सुरोशे, सुषमा निधेश परिधि और मायरा सुरोशे। साथ ही फरमाइश करता है, उल्हास नगर से पुरुषोत्तम शामतकर, ज्योति और चेतन शामतकर। साथ ही रामलीला मैदान से हैं बाबा श्री शिवानंद त्रिपाठी, शशि त्रिपाठी, शिवांश, मंजू, विजय मिश्रा, गोविंदा, सोहू, अमन पीए और अभिजीत सिंह सांगा। और साथी घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया। और इसी के साथ मॉडर्न टाउन करनाल से सुधीर नूतन, माया कुमार और सुनीता शर्मा ने फरमाइश की है इस गीत की, जिसे फिल्म किस्मत से हमने लिया है और महेंद्र कपूर की आवाज में नूर देवासी का लिखा गीत, ओपी नैयर का संगीत। सुनिए आपकी पसंद का ये गीत।